श्रोताओं नमस्कार। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आज शुक्रवार है। राष्ट्रीय शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 19वीं तिथि, तदनुसार 10 जुलाई सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में इस समय प्रातःकाल के 5:57 होने को हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। हिंदी में समाचार अनुप्रसारित करेंगे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से थोड़ी ही देर में। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया है। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। श्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
1: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड जाएंगे। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड की यात्रा होगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सुरक्षित सीमा, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और जागरूक समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है। श्री शाह ने कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन को संबोधित किया। इस सम्मेलन में जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों सहित सीमावर्ती राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन सीटों पर उपचुनाव इस महीने की 24 तारीख को होंगे। तीनों नेता कल तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव कानून की जांच करने वाली संयुक्त संसदीय समिति आज और कल गोवा में व्यापक विचार विमर्श करेगी। समिति अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने से पहले राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत गोवा का दौरा कर रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में एक समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर कुवैत की यात्रा पूरी करने के बाद ओमान पहुंच गए हैं। उनके आगमन पर ओमान के विदेश मंत्रालय के महानिदेशक शेख अहमद अल मस्करी ने उनका स्वागत किया। डॉ जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान, न्यूयॉर्क और ब्रुसेल्स की 11 दिन की यात्रा पर हैं। फुटबॉल विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अमेरिका के बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल में पहले हाफ तक कोई गोल नहीं हुआ। दूसरे हाफ में किलियन एम्बापे ने 60वें मिनट में और उस्मान डेम्बले ने 66वें मिनट में गोल कर फ्रांस को जीत दिलाई। और ब्रिस्टल में चौथे T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 9 विकेट से हराया है। भारत के 159 रन के लक्ष्य को इंग्लैंड ने 37 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। 5 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड ने 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून पूरे देश में सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर आज तेज वर्षा का अनुमान है। अगले 4 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश में तेज वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त।

प्रभात की यह शांत और पावन बेला जब उगते सूर्य की कोमल किरणें धरती को नव प्रकाश से आलोकित करती है, जब प्रकृति स्वयं ध्यान मग्न प्रतीत होती है, तब मन सहज ही श्रद्धा, शांति और आत्मचिंतन की ओर उन्मुख होता है। हमारा देश केवल भौगोलिक सीमाओं का विस्तार नहीं, बल्कि संस्कृति, करुणा, एकता और सौहार्द का जीवंत स्वरूप है। आइए सबसे पहले अपनी मातृभूमि को नमन करते हुए सुनते हैं एक प्रेरक देशभक्ति गीत।

देश प्रेम के इसी पावन भाव से अब हम अपने अंतर्मन की यात्रा की ओर बढ़ते हैं। प्रातः काल की यह बेला मन को स्थिर करने, विचारों को निर्मल करने और आत्मा के प्रकाश से जुड़ने का समय है। इसी शांत भाव भूमि के साथ प्रस्तुत है हमारा दूसरा गीत।

जीवन के पथ पर संकल्प, धैर्य और सकारात्मक सोच हमारे सबसे बड़े साथी होते हैं। जब मन में विश्वास जागृत हो तो हर कठिनाई सरल प्रतीत होती है। इसे विश्वास और आत्मबल की भावना को स्वर देता हमारा अगला गीत।

जीवन का सबसे बड़ा सुख है जब हृदय में प्रेम, वाणी में मधुरता और कर्म में करुणा का भाव हो, तभी जीवन वास्तव में सार्थक बनता है। इसी मधुर अनुभूति के साथ सुनते हैं आज की चौथी प्रस्तुति।

हर नई सुबह एक नया संदेश लेकर आती है, आशा का, उत्साह का और नवचेतना का। आइए इस दिन की शुरुआत एक शुभ संकल्प के साथ करें कि हम अपने विचारों और कर्मों से चारों ओर सकारात्मकता फैलाएं। इसी मंगल भावना के साथ प्रस्तुत है ये रचना।

0: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। श्रोताओं, एक सूचना सुनिए। साइबर क्राइम रहे सावधान सजीव फोन इन कार्यक्रम के अंतर्गत साइबर क्राइम के बढ़ते खतरे और जन जागरूकता के लिए विविध भारती इंदौर FM 101.6 MHz आपके लिए लेकर आ रहा है आज सुबह 11:32 से 12 बजे तक सजीव फोन इन कार्यक्रम साइबर क्राइम रहे सावधान। ये कार्यक्रम आज सुबह 11:32 से 12 बजे तक FM 101.6 MHz विविध भारती चैनल पर प्रसारित होगा। इस सजीव फोन इन कार्यक्रम की विशेषज्ञ होंगी इंस्पेक्टर सरिता सिंह एवं सब इंस्पेक्टर निकिता सिंह, स्टेट साइबर सेल इंदौर। श्रोता साइबर अपराधों से जुड़ी अपनी जिज्ञासाओं का समाधान सीधे प्राप्त कर सकेंगे हमारे फोन नंबर पर 2710223 और 2710224। फोन नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए, 2710223 और 2710224। इंदौर का STD कोड है 0731। प्रश्न पूछने के लिए दिन यानी आज और समय सुबह 11:32 से 12 बजे विविध भारती चैनल पर। तो आप भी फोन करके साइबर क्राइम रोकने हेतु तो विशेष सावधानियां विशेषज्ञ इंस्पेक्टर सरिता सिंह एवं सब इंस्पेक्टर निकिता सिंह, स्टेट साइबर सेल इंदौर से जान सकती हैं। कार्यक्रम का समय है आज 11:32 से 12 बजे विविध भारती इंदौर 101.6 MHz पर इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं और ये कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुना जा सकता है। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से लीजिए प्रस्तुत है चिंतन।
1: एक कहावत है कि जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। सुनने में ये बात थोड़ी मजाकिया और आलस को बढ़ावा देने वाली लग सकती है, लेकिन इसके गहरे अर्थ हमें जीवन के एक अद्भुत सत्य से रूबरू कराते हैं। आज के दौर में जहां हर कोई 24 घंटे व्यस्त रहने की होड़ में है, वहां कुछ न करना अपने आप में एक बहुत बड़ी कला और साहस का काम है। व्यस्तता और सन्नाटे का अंतर यही है। अक्सर हम व्यस्त रहने को ही उत्पादकता मान लेते हैं, लेकिन व्यस्तता का अर्थ हमेशा परिणाम नहीं होता। एक कोल्हो का बैल भी दिन भर व्यस्त रहता है, पर वो कहीं पहुंचता नहीं है। इसके विपरीत कुछ न करना अक्सर उस मानसिक शांति की अवस्था को दर्शाता है, जहां इंसान बाहरी शोर को बंद करके अपने भीतर के संगीत को सुनता है। जब हाथ रुकते हैं तब अक्सर मस्तिष्क की गति तेज होती है और नए विचारों का जन्म होता है। इतिहास के पन्ने पलट कर देखें तो पता चलता है कि दुनिया के सबसे महान आविष्कारक और रचनात्मक कार्य तब हुए जब इंसान कुछ नहीं कर रहा था। आइजैक न्यूटन जब बगीचे में शांति से बैठे थे तब उन्हें गुरुत्वाकर्षण का विचार आया। अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने कई महत्वपूर्ण थ्योरीज तब सोची जब वे आराम कर रहे थे या संगीत सुन रहे थे। सृजनात्मकता को फलने फूलने के लिए खालीपन की आवश्यकता होती है। जब हम खुद को खाली छोड़ते हैं तभी प्रकृति या ईश्वर के संदेश हमारे मन में उतरते हैं। स्वयं से साक्षात्कार करना लगभग यही है। आज का इंसान मोबाइल, इंटरनेट और काम के बोझ के कारण कभी खुद के साथ अकेला नहीं रह पाता। कुछ नहीं करना हमें खुद से मिलने का मौका देता है। यह आत्ममंथन का समय होता है। जब हम कुछ नहीं करते तब हमें अपनी कमियां, अपनी खूबियों, अपने जीवन के सही लक्ष्य का आभास होता है। जो व्यक्ति खुद के साथ समय बिताकर खुद को समझ लेता है वो दुनिया में ऐसा कमाल कर जाता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। मानसिक स्वास्थ्य के लिए वरदान होता है यही समय। तनाव, अवसाद और चिंता जैसी समस्याओं का मुख्य कारण ये भी है कि हमने रुकना भुला दिया है। कुछ नहीं करना मन के लिए एक औषधि की तरह है। ये ठहराव है, ये दिमाग को फिर से जीवंत करने का माध्यम है। जैसे जमीन को उपजाऊ बनाए रखने के लिए उसे कुछ समय के लिए खाली छोड़ना पड़ता है, वैसे ही मन की उर्वरता बनाए रखने के लिए कुछ ना करना भी अनिवार्य है। जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं, इसका अर्थ काम से भागना नहीं बल्कि कार्य के बीच में ठहराव लाना है। यह हमें सिखाता है कि जीवन केवल दौड़ने का नाम नहीं है, बल्कि कभी कभी रुककर फूलों की खुशबू लेने और आसमान को निहारने का नाम भी है। असली कमाल वही लोग करते हैं जिनके पास एक शांत मन और स्थिर बुद्धि होती है, और ये शांति केवल कुछ न करने की अवस्था से ही प्राप्त की जा सकती है। जीवन में थोड़ा रुकिए, थोड़ा ठहरिए और थोड़ा कुछ न करिए। देखिए, हो सकता है कि अगला बड़ा कमाल आप ही कर दें।
0: आप सुन रही थी चिंतन, मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर, और न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। खेती की बातें, आइए इसके अंतर्गत सुनते हैं बरसाती धनिया की उन्नत खेती के बारे में जानकारी। वाचक स्वर तुलसा दरगैया।

0: किसान भाई नोनी राम राम। किसान भाई नोनी बात करांगा धनिया की उन्नत खेती का बारा में। बरसात का दिन में धनिया की कीमत 50 से 60 रुपया प्रति किलो देखने में मिले, जेका से हमका बाजार भाव अच्छो मिल जाए। तो बरसाती धनिया की खेती का लेना कई कई बात न को ध्यान रखा, ये का बारा में बात करांगा। सबसे पहले तो खेत की जो मिट्टी छे वो भुरभुरी न जल निकास वाली होनी चाहिए। खेत में 1 से 2 बार कल्टीवेटर न रोटावेटर चले न मिट्टी का तैयार करा। बरसात का मौसम में सपाट खेत पर बुआई नहीं करा, हमेशा ऊंचा बेड पर बुआई करा, न बेड की चौड़ाई लगभग 2 फीट रखा। जल भराव वाला खेत में धनिया की खेती करने से फसल खराब होने की संभावना ज्यादा रहे। बरसाती धनिया की बुआई को सही समय जुलाई से अगस्त महीनों अच्छो मानी जाए, मतलब अब इना महीना में अपन की बुआई करी सका। ज्यादा बरसात वाला क्षेत्र न जुलाई का अंतिम सप्ताह से अगस्त तक हमें की बुआई करी सकान। ढलान वाला खेत न जुलाई महीना से भी हमें की बुआई शुरू करी सकान। दोमट न हल्की मट्टी धनिया की खेती का लेना सबसे अच्छी मानी जाए। एका बेका में प्रति एकड़ किस प्रकार से खाद देवा उकी बात करा। पेपेंडोनी एका में DAP 30 से 35 किलो या SSP 70 से 80 किलो, पोटास 15 किलो, सल्फर 5 किलो, कार्बोफ्यूरान 5 किलो, कार्बेंडाजी मैंकोजे फंगीसाइड 200 से 300 ग्राम। ये सभी खाद न दवाई नख बेट का ऊपर समान रूप से मिले न हम प्रयोग करी सकान। बरसात का लेना धनिया की जो अच्छी उन्नत वेराइटी न छे उछे धरती सीड्स, किया, श्रीराम सीड्स, महक, इंडो अमेरिकन, इंडम, 30 सुपर, इंडस रोशनी, नामधारी सीड्स, भूमि। ई वेराइटी न की विशेषता रहे कि ये कम समय में तैयार हुई जाए, ने एक ही पत्ती न चौड़ी न गहरा हरा रंग की हो, न ज्यादा बरसात कभी सहन करी सकज, लगभग 30 से 35 दिन में फसल तैयार हुई जाए। अब एक बात करा बीज दर न बीज उपचार की। एक लेना बीज दर 12 से 15 किलो प्रति एकड़। बरसात का मौसम में बीज उपचार करना जरूरी है। नेको बीज उपचार हम UPL इलेक्ट्रॉन या 1 मिलीलीटर प्रति किलो बीज के हिसाब से करा। खरपतवार नियंत्रण की बात करा तो एक प्री इमरजेंट स्प्रे पेंडी मेथेलियन 30 EC से 80 ML, ऑक्सीफ्लोरोफेन 20 ML, इन दो नख 15-20 लीटर पानी में घोले न बुआई का तुरंत बाद स्प्रे करी देवा। कदी खरपतवार बाद में निकल जाओ तो सक्री पत्ती वाला खरपतवार न करे एगली हर्बिसाइड 20 मिलीलीटर प्रति 15 लीटर पानी का हिसाब से खामा छिड़काव करा। धनिया में बरसात में फफूंद रोग को भी संक्रमण हुए तो फफूंद रोग का लेना हम एक रिडोमिल गोल्ड UPL साफ ऐसी दवा न को या फंगीसाइड न को उपयोग कम करी सकान। धनिया में फंगस को नियंत्रण करने का लेना एक हम M45 से 25 ग्राम, NPK 19:19 यानी कि 40 से 50 ग्राम, सीवीट 40 मिलीलीटर का हम एकासी हम फंगस नियंत्रण भी करी सकान, कीट नियंत्रण भी करी सकान, जड़ विकास ने हरी भरल फसल भी हमारी अच्छी रहेगा। अब कभी खाद की बात करा तो एक पहलो डोज 15 दिन का बाद एक यूरिया 15 से 20 किलो, ह्यूमक एसिड 500 ग्राम से 1 किलो, सीवीट दानेदार 5 से 8 किलो, न दूसरो डोज 25 दिन बाद जिका में यूरिया 20 किलो, जिंक सल्फेट 33% यानी कि 3 किलो, मैग्नीशियम सल्फेट 5 किलो, न क्लोरपाइरीफास 200 मिलीलीटर। भाई बहनोनी बरसाती धनिया की खेती में कमाई भी अच्छी रहे, जिका में बाजार भाव अच्छो मिले, न इना समय बाजार में 50 से 60 रुपया प्रति किलो का हिसाब से हमारी धनिया बिकी हुई जाए, न जो हमारी फसल रहे धनिया की वो लगभग 30 से 40 दिन में तैयार भी हुई जाए, निका में कम लागत में हम अधिक लाभ भी प्राप्त करी सका। तो भाई बहनोनी अगर हमने अभी तक धनिया की फसल नहीं बोई है तो हम धनिया की फसल अपना खेत में लगावा न ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमावा।
1: खेती की बातें इसके अंतर्गत आप सुन रहे थे बरसाती धनिया की उन्नत खेती के बारे में जानकारी। वाचक स्वर तुलसा दरगैया। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का इंदौर केंद्र मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान के आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति।

हाथ में अपनी वीणा लिए हरिगुण गाते हुए एक बार देवर्षि नारद नारायण के समक्ष क्षीर सागर जा पहुंचे। यद्यपि शिवजी ने नारद जी को कामदेव की करतूत पर अपनी विजय का हाल भगवान पर प्रकट न करने का परामर्श दिया था, फिर भी देवर्षि ने प्रभु से कामदेव का चरित्र कह सुनाया। प्रभु से ये बात छिपी न रही कि नारद जी को कामदेव पर विजय पा लेने का अभिमान हो गया है। भक्तों का कल्याण प्रभु का गुण है, अतः अभिमान के अंकुर को नारद जी के मन में से उखाड़ फेंकने के लिए उन्होंने 400 कोस विस्तार वाले एक मायानगर की रचना की और उसे वैकुंठ से भी अधिक सुंदर बना दिया। इस मायानगरी के राजा शील निधि ने अपनी अति सुंदर कन्या विश्व मोहिनी का स्वयंवर रचा। इस अनिंद्य सुंदरी का वरण करने के लिए अगणित राजा वहां आ पहुंचे।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान का आज का प्रसंग भूपेंद्र सिंह के स्वर में। संगीत संयोजन सतीश भाटिया का था। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। कार्यक्रम विवरण में आइए सुनते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। अब से कुछ देर बाद यानी प्रादेशिक समाचारों के ठीक बाद 7:20 से आप सुनेंगे कार्यक्रम इंदौर परिक्रमा, प्रस्तुति।

मुकाम सिंह चौहान की। सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनहरे पल आप सुनते हैं सुबह 7:35 से। 8:30 से हम आपको सुनवाएंगे परिचर्चा। डॉक्टर पंकज अग्रवाल से बीपी चतुर्वेदी की बातचीत। सुबह 9:00 लोक संगीत में आप सुनेंगे विंध्यवासिनी देवी के गाए लोकगीत। सुबह 9:15 और शाम 6:30 पर सुगम संगीत में आप सुनेंगे लियाकत हुसैन को। शास्त्रीय संगीत में 9:30 पर सुनिएगा हरिराम गोस्वामी का एकल पखावज वादन, ताल होगा रुद्रताल। जिले की चिट्ठी रिले होती है आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से सुबह 10:00। 10:05 पर आप सुनते हैं श्रोताओं की पसंद के फिल्मी गीतों का लाइव फोन इन प्रोग्राम MH हॉटलाइन। दिन में 11:00 से दोपहर 3:00 तक के कार्यक्रम रिले होंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से, जिनका विवरण इस प्रकार है। 11:00 सुनिए फोन इन कार्यक्रम फोन करेगी सुनी। इस घंटे की खास खबरें आप सुनेंगे 11:58, दोपहर 12:58 और दोपहर 2:58 पर। फिल्म संगीत होगा दोपहर 12:00 संग्रहालय से। यह कार्यक्रम होता है दोपहर 12:30। दिन में 1:00 महिला कार्यक्रम में आप सुनेंगे भेंट वार्ता, मां का दूध शिशु के लिए पहला टीका, सर्वोत्तम आहार, डॉक्टर भारती द्विवेदी से प्रीति जोशी की बातचीत, मी टाइम ग्राफिक डिजाइनर बने और अपनी आर्थिक उन्नति में एक कदम और बढ़ाएं। और इसके अलावा सुनिए यह भी जानना भी है जरूरी, डोर स्टेप बैंकिंग से घर बैठे लें सेवा। 1:30 पर होगा लोक संगीत, सुगम संगीत आप सुनेंगे दोपहर 1:45 पर, फिल्म संगीत दोपहर 2:00 और दोपहर 2:30 पर। हमारी सांध्यकालीन सभा का आरंभ होता है युववाणी कार्यक्रम के साथ शाम 5:00। आज के इस कार्यक्रम में सुनेंगे आप साप्ताहिक विज्ञान और खेल गतिविधियां। शाम 5:45 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT प्रसारित करेंगे हम शाम 6:00। शाम 6:45 पर लोक संगीत में हम आपको सुनवाएंगे उषा व्यास के गाए लोकगीत। खेती गृहस्थी ये कार्यक्रम होता है शाम 7:20 पर। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे भेंट वार्ता, शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों हेतु एग्री वोल्टाइक प्रणाली, जानकारी देंगे डॉक्टर दीपक हरि रनाडे। सुर्खियों में ये कार्यक्रम रिले करेंगे हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रात्रि 8:00। 8:15 पर होगा कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। चित्रगीत सुनेंगे आप रात्रि 9:15 पर। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम पत्रों पर आधारित मन भावन प्रसारित होगा रात्रि 9:30 पर। 10:30 पर हम आपको सुनवाएंगे कल्याणी कानड़े का गायन, राग होगा बागेश्री। कार्यक्रम विवरण में आप सुन रही थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, जिन्हें हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

इदमियम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधि झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रावोचत् यद् एकविंशति शताब्द्याः भारतं विकसित भारतं भवितुम्

0: संकल्पबद्धं वर्तते। तेनोदीरितं यत् साम्प्रतं भारतं तादृशः देशः यः अधिक विकासे विश्वसिति। विगत द्वादश वर्षेषु स्वस्य तृतीयं ऑस्ट्रेलिया भ्रमणं हैट्रिक इति विज्ञापयता तेन प्रतिपादितं यत् एषः प्रवासः भारत ऑस्ट्रेलिया संबद्धानां अपूर्व गमितां सूचयति। अत्रावसरे ऑस्ट्रेलिया देशस्य प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज अपि तत्र उपस्थितः आसीत्। तेन तत्रत्यं जनसमूहं वीक्ष्य एषा सहभागिता दृढतरा इत्युक्तम्। अस्मात् पुरा उभयोः देशयोर नेतृभ्यां मेलबर्न नगरे तृतीये भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलने भागं गृहीत्वा शिष्टमंडल स्तरीया द्विपाक्षिकी वार्ता विहिता। हिंद प्रशांत क्षेत्रे शान्तिं स्थिरतां च स्थापयितुं द्वाभ्यां नेतृभ्यां रक्षा सुरक्षा सहयोग संयुक्त घोषणापत्रे हस्ताक्षरं विहितम्।
1: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
0: वार्ताहरान संबोधयन प्रधानमंत्री न्यगादीत यत् भारत ऑस्ट्रेलिया देशाभ्याम परमाणु ऊर्जा क्षेत्रे ऐतिहासिकः सहयोगः साधितः। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहः प्रत्यपादयत् यत् एकः सुरक्षितः समृद्धश्च सीमाप्रान्तः अथ जागृतः समाजः सम्भूय एव देशं सुरक्षितं विधातुं शक्नुवन्ति। गृहमन्त्रिणा ह्यः नवदेहल्याम् आरक्षक अधीक्षकाणां सम्मेलने सम्भाषणं कुर्वता प्रतिपादितं यत् वाइब्रेंट विलेजेस इत्यस्य क्रांतिकारी उपक्रमस्य अन्तर्गतं सीमा प्रान्तेभ्यः पलायनम् अपाकर्तुं प्रत्यग्रवृत्त्यवसराणां क्रियान्वयनं विधीयते। श्रीशाहः सविशेषं प्रावोचत् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः कुशल नेतृत्वे केन्द्र प्रशासनेन सीमावर्ती अवसनरचनासु वैज्ञानिक रीत्या 400% यावत् अभूतपूर्वो विकासो विहितः। देशे द्रुतगत्या प्रवर्धमानस्य सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी क्षेत्रस्य विविधासु अनियमिततासु वर्धमानां चिन्तां वीक्ष्य राष्ट्रिय महिला आयोगेन एका उच्च स्तरीया विशेषज्ञ समितिः निर्मिता। अत्रावधेयं यत् इयं समितिः महिलानां प्रजननाधिकाराणां प्रतिष्ठायाः सुरक्षायाश्च संरक्षणं करोति। तत्रैव आईवीएफ चिकित्सालयानां एआरटी केन्द्राणां अथ युग्मकोशानां नियंत्रक तंत्राणां प्रासंगिक विधानां च व्यापकं पुनरीक्षणं विधास्यति। संयुक्त राज्य अमेरिका बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र पार्श्वे वैमानिक आक्रमणं कृतवानिति ईरानेन आरोपितम्। ईरानस्य प्रशासनिक वार्ता संस्थया संसूचितं यत् एतत् आक्रमणं अमेरिका देशस्य सेना द्वारा स्व आक्रमणानि समापनस्य होरानन्तरमेव जातम्। इतः प्राग् अमेरिका देशेन ईरान देशस्य उपरि नूतनानि वायु आक्रमणानि कृतानि। यदा तु तेहरान देशः पश्चिमेशियायाम् अमेरिका सम्बद्ध देशान् लक्ष्यीकृत्य प्रक्षेपास्त्र प्रहारैः प्रत्युत्तरं दत्तवान्। ईरान देशस्य स्वास्थ्य मन्त्रालयः अवोचत् यत् अमेरिका देशेन कृतेषु दिनद्वयाक्रमणेषु न्यूनातिन्यूनं 14 जनाः मृताः। पादकन्दुक क्रीडायाम् अमेरिका देशस्य बोस्टन नगरे आयोजिते प्रथमे प्रागुपान्त्य चरणस्य द्वन्द्वे फ्रांस दलं मैरिको दलं पराभूय उपान्त्य चक्रे प्रविष्टवत्। इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया है। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के

0: प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। श्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
1: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर जा रहा है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी आज ऑस्ट्रेलिया के नेता प्रतिपक्ष एंगस टेलर से भी मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच भारत ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने तथा राजनीतिक सहयोग बढ़ाने के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होने की संभावना है। श्री मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड जाएंगे। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सुरक्षित सीमा, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और जागरूक समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है। श्री शाह कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के एक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों सहित सीमावर्ती राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार E85 ईंधन शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ये ईंधन मानक E20 पेट्रोल की तुलना में करीब 20 रूपये प्रति लीटर सस्ता होगा। हालांकि E85 केवल उन वाहनों के लिए उपलब्ध होगा जिन्हें विशेष रूप से इस ईंधन के उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। एक निजी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में श्री पुरी ने कहा कि इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से इंजन को नुकसान पहुंचने और वाहनों के प्रदर्शन पर कुल प्रभाव पड़ने संबंधी आशंकाओं को वो खारिज करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा चुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराई को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन सीटों पर उपचुनाव इस महीने की 24 तारीख को होंगे। तीनों नेता कल तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में एक समान नागरिक संहिता UCC लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव कानून की जांच करने वाली संयुक्त संसदीय समिति आज और कल गोवा में व्यापक विचार विमर्श करेगी। समिति अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने से पहले राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत गोवा का दौरा कर रही है। फुटबॉल विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अमेरिका के बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल में पहले हाफ तक कोई गोल नहीं हुआ। फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व के सेमीफाइनल में पहुंचा है। दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। ब्रिस्टल में चौथे T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 9 विकेट से हरा दिया। भारत के 159 रन के लक्ष्य को इंग्लैंड ने 37 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया। 5 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड ने 3-0 की अच्छी बढ़त बना ली है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून पूरे देश में सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर आज तेज वर्षा का अनुमान है। अगले 4 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार और मध्य महाराष्ट्र में तेज वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर और न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। श्रोताओं, एक सूचना सुनिए साइबर क्राइम रहे सावधान कार्यक्रम संबंधी। साइबर क्राइम के बढ़ते खतरे और जन जागरूकता के लिए विविध भारती इंदौर FM 101.6 मेगाहर्ट्ज आपके लिए लेकर आ रहा है।

0: अपराधों से जुड़ी अपनी जिज्ञासाओं का समाधान सीधे प्राप्त कर सकेंगे हमारे फोन नंबर पर। हमारे फोन नंबर हैं 2710223 और 2710224। इंदौर का नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए, फोन नंबर है हमारे 2710223 और 2710224। इंदौर का एसटीडी कोड है 0731। प्रश्न पूछने के लिए दिन यानी आज समय 11:32 से 12 बजे तक विविध भारती चैनल पर आप भी फोन करके साइबर क्राइम रोकने हेतु विशेष सावधानियां विशेषज्ञ इंस्पेक्टर सरिता सिंह एवं सब इंस्पेक्टर निकिता सिंह स्टेट साइबर सेल इंदौर से जान सकते हैं। आप आज सुबह 11:32 से 12 बजे तक विविध भारती 101.6 MHz पर इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं और ये कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुना जा सकता है। सूचना समाप्त हुई।
1: कितनी सुहानी है आज की ये सुबह।
2: सच कहा, इसे और सुहाना बना रही है मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
1: तो सुनते रहिए आकाशवाणी इंदौर।
3: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
4: क्या?
3: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
4: वो कैसे?
3: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
4: पर सुनेंगे कैसे?
3: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
1: तो सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।

0: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
1: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
2: आकाशवाणी इंदौर।
1: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
3: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
4: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 7:10 होने को ही थोड़ी ही देर में अगला प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले होगा।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया यात्रा के अंतिम पड़ाव पर आज नेता प्रतिपक्ष एंगस टेलर से मुलाकात करेंगे।

0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड फोरलेन परियोजना का भूमि पूजन करेंगे। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सरकार E85 ईंधन लाने की योजना बना रही है और फुटबॉल विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी ऑस्ट्रेलिया की राजकीय यात्रा अंतिम पड़ाव पर है। तीन देशों की इस यात्रा में श्री मोदी अपने अगले गंतव्य न्यूजीलैंड के लिए रवाना होने से पहले आज मेलबर्न में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री मोदी आज ऑस्ट्रेलिया के नेता प्रतिपक्ष एंगस टेलर से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों और राजनीतिक सहयोग को प्रगाढ़ करने पर व्यापक चर्चा होगी। इसके पूर्व प्रधानमंत्री ने कल ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में प्रवासी भारतीय समुदाय के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि 21वीं सदी का भारत विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत आज विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। ये वो भारत है जो कहता है ग्रो मोर अचीव मोर। हम 140 करोड़ एस्पिरेशन से भरे राष्ट्र है। हम अधीर है, बेसब्र है। हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है, लेकिन हम जल्द से जल्द दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी बनना चाहते हैं।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश के सड़क अधोसंरचना विकास में आज एक ऐतिहासिक अध्याय जुड़ने जा रहा है। उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड फोरलेन मार्ग परियोजना का उद्घाटन आज मुख्यमंत्री करेंगे। लगभग 98.73 किलोमीटर लंबी इस महत्वाकांक्षी परियोजना का निर्माण 5,017 करोड़ रूपये की लागत से मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा किया जायेगा। ये परियोजना उज्जैन, दक्षिण घटिया, नागदा, खाचरौद, आलोट और जावरा विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। दो वर्षों में पूर्ण होने वाली इस परियोजना से लगभग 35 लाख आबादी तथा 62 ग्राम प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि ग्रीनफील्ड फोरलेन मार्ग के निर्माण से उज्जैन को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से सीधा एवं तेज संपर्क मिलेगा। इसके साथ ही इंदौर, भोपाल एवं मालवा क्षेत्र की कनेक्टिविटी भी और अधिक सुदृढ़ होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल शाजापुर जिले की काला पीपल तहसील में आयोजित एक किसान समृद्धि संकल्प सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, महिला सशक्तिकरण, रोजगार सृजन और आधारभूत विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। किसान कल्याण वर्ष में किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं। प्रदेश में सिंचाई का रकबा बढ़ाकर 55 लाख हेक्टेयर से अधिक पहुंच गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाएगा और 1,000 रूपये हर साल 1 माह तक दिया जाएगा।
2: जो प्राकृतिक खेती करेगा आगे जाकर के 1 साल तक 1,000 रूपया महीना किसान को देंगे ताकि वो प्राकृतिक खेती करे। ये हमारी सरकार की योजना है। गौ माता के लिए जो 25 गाय माता की डेयरी डालेगा और 40 लाख की स्कीम बनेगी तो 10 लाख रुपया अनुदान उसमें भी देने वाले हैं।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सुरक्षित सीमा, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और जागरूक समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि जीवंत ग्राम कार्यक्रम के अंतर्गत पलायन रोकने, रोजगार सृजित करने और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का 100% कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है। श्री शाह कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के एक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार E85 ईंधन लाने की योजना बना रही है जो मानक E20 पेट्रोल से करीब 20 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। उन्होंने कहा कि E85 केवल उन वाहनों के लिए उपलब्ध होगा जो विशेष रूप से इस ईंधन के उपयोग के लिए डिजाइन किए गए हैं। पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि इसका उद्देश्य सरकार के इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि कुशल कार्यबल, मजबूत संस्थानों और नवाचार के कारण भारत वैश्विक क्षमता केंद्रों GCC के लिए सबसे पसंदीदा देशों में शामिल है। नई दिल्ली में CII राष्ट्रीय GCC बिजनेस समिट 2026 को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि देश में 2100 से अधिक GCC हैं जहां 23 लाख से अधिक लोग प्रत्यक्ष रूप से कार्यरत हैं। इन केंद्रों से हर साल लगभग $10,000 करोड़ का राजस्व प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि

इंजीनियरिंग, अनुसंधान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा, वित्त, उत्पाद तथा डिजाइन और डेटा विज्ञान को एक साथ लाकर नवाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। विदेश मंत्री डॉ सुब्रम जयशंकर कुवैत की यात्रा पूरी करने के बाद ओमान पहुंच गए हैं। उनके आगमन पर ओमान के विदेश मंत्रालय के महानिदेशक शेख अहमद अल मस्कारी ने उनका स्वागत किया। डॉ जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान, न्यूयॉर्क और ब्यूसेल्स की 11 दिन की यात्रा पर हैं। ओमान यात्रा पूरी करने के बाद वे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत के आधिकारिक अभियान की शुरुआत करेंगे। स्पेन के मैड्रिड में तीरंदाजी विश्व कप के चौथे चरण में भारत के धीरज बोम्मा देवरा और कीर्ति शर्मा रिकर्व मिश्रित स्पर्धा के कांस्य पदक मुकाबले में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्हें चीन से 3-5 से हार मिली। अब कांस्य पदक के लिए उनका मुकाबला इटली से होगा। वहीं भारत की पुरुष और महिला रिकर्व टीम क्वार्टर फाइनल में हारकर बाहर हो गई है। हालांकि भारत की महिला कंपाउंड टीम पहले ही फाइनल में पहुंचकर अपना पदक पक्का कर चुकी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर जिले में जनगणना से संबंधित हस्त पुस्तिका तैयार की जाएगी, जिसके लिए लगभग 150 सरकारी अधिकारी कर्मचारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आज से शुरू हो रहा है। वहीं इंदौर के ही किला भवन शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय में नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश मेले का शुभारंभ हो गया है। खंडवा में आगामी 2-4 अगस्त तक खंडवा गौरव दिवस में पार्श्व गायक विनोद राठौर को प्रतिष्ठित किशोर सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। धार जिले की बदनावर तहसील के ग्राम दत्तीगारा में कृषि विभाग ने अमानक बीज उपचार दवा बेचने के मामले में डीलर और कंपनी संचालक के खिलाफ पुलिस केस दर्ज कराया है। झाबुआ, थांदला और पेटलावद में उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। आगरमालवा जिला सहकारी विपणन संस्था को वर्ष 2024-25 में उत्कृष्ट कार्य पर मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ भोपाल द्वारा प्रथम पुरस्कार दिया गया है। कटनी में आवास प्लस 2026 सर्वे के तहत तैयार वोटिंग लिस्ट के फाइनल करने और उसके वेरिफिकेशन के लिए 2 दिवसीय ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। जबलपुर में राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष जयभान सिंह पवैया ने निकायों की आय बढ़ाने के लिए नवाचार साझा करने के निर्देश दिए हैं। डिंडौरी कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया गाड़ासरई के बिरासनी शिशु विद्या मंदिर का औचक निरीक्षण करने पहुंची। नीमच जिले के 105 मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों की तय मानकों के अनुरूप संचालन जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। और क्रिकेट में इंग्लैंड ने कल ब्रिस्टल में चौथे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 9 विकेट से हरा दिया। इंग्लैंड ने पहली बार भारत के खिलाफ अपनी T20 सीरीज जीती है। वहीं मौसम में प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है और भोपाल में कल भी दिनभर बादल छाए रहे और रुक रुक कर बारिश होती रही। मौसम विभाग ने ग्वालियर, गुना, सागर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, इंदौर और होशंगाबाद जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया की यात्रा के अंतिम पड़ाव पर आज नेता प्रतिपक्ष एंगस टेलर से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड 4-लेन परियोजना का भूमि पूजन करेंगे। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सरकार E85 ईंधन लाने की योजना बना रही है। और फुटबॉल विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर और न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम इंदौर परिक्रमा।
1: इंदौर परिक्रमा जय जय जय जय जय जय जय जय इंदौर परिक्रमा। इंदौर परिक्रमा।
2: नमस्कार श्रोताओं, इंदौर परिक्रमा के साथ आपका मित्र मुकाम सिंह चौहान। श्रोताओं, इंदौर में इन दिनों विभिन्न धार्मिक आयोजन संपन्न हो रहे हैं। इसी कड़ी में छत्रीबाग स्थित श्री लक्ष्मी वेंकटेश देवस्थान में ब्रह्मोत्सव एवं रथ यात्रा महोत्सव 10 जुलाई यानी आज से 16 जुलाई तक

0: आयोजित हो रहा है। इस महोत्सव में कई आयोजन होंगे जिसमें बड़ी संख्या में भक्त शामिल होंगे। आज प्रातः ध्वजारोहण के साथ श्री ब्रह्मोत्सव का शुभारंभ होगा। कल 11 जुलाई को भगवती श्री महालक्ष्मी का महाअभिषेक होगा। 12 जुलाई को भगवान श्री वेंकटेश का 108 रजत कलश से महाअभिषेक होगा। 13 जुलाई को उत्सवों का मेल वसंत उत्सव के साथ तिरुपावड़ा उत्सव मनाया जाएगा। 14 जुलाई को प्रभु वेंकटेश का कल्याण उत्सव विवाह उत्सव होगा। 15 जुलाई को पुष्प बंगले में प्रभु वेंकटेश के मनोहारी दर्शन होंगे और 16 जुलाई को रथ यात्रा निकाली जाएगी। इस संदर्भ में हमें विशेष जानकारी दे रहे हैं छत्रीबाग स्थित श्री लक्ष्मी वेंकटेश देवस्थान के स्वामी जी।
1: जय श्री नारायण। स्वामी विष्णु प्रपन्नाचार्य श्री लक्ष्मी वेंकटेश मंदिर पावन सिद्ध धाम छत्रीबाग इंदौर। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे यहाँ भगवान का वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है, जिसको हम ब्रह्मोत्सव कहते हैं, जहाँ नित्य 5 रात्र आगम के द्वारा भगवान की विशेष नाद स्वरम के साथ में पूजा आराधना संपन्न होगी। और ये महोत्सव पिछले 60 वर्ष पुराना है और इसकी विशेषता है यहाँ का पुष्प बंगला, कल्याण उत्सव और मध्य भारत की गौरवमयी रथ यात्रा। रथ यात्रा का आयोजन 16 जुलाई को संपन्न होगा। समस्त वैष्णव भागवत संपूर्ण भारतवर्ष से यहाँ पधारते हैं और भारतवर्ष के विशिष्ट जितने भी संत हैं यहाँ प्रतिदिन धर्म मंच के माध्यम से समाज के जो ज्वलंत विषय है, जैसा कि हाल ही में हमने देखा कि सबकी आस्था का केंद्र राम मंदिर का जो प्रकरण चल रहा है, या विचारों की मानसिकता का जो नैतिक स्तर गिरा है, उसकी भयावहता है, इन सब विषयों को साथ में लेते हुए जो समाज को वर्तमान में सुधार की आवश्यकता है, प्रेरणादायी बातें कही जाएगी, उपदेश दिए जाएंगे और नित्य भगवान का अति विशिष्ट उत्सव होगा। प्रत्येक सनातनी को ऐसे आयोजनों में अवश्य सम्मिलित होना चाहिए। वर्ष भर तक हम भगवान का कैंकर्य कर पाए कि नहीं कर पाए, पर जिन नगरों में महानगरों में दिव्य देश स्थित है, जैसा कि हमारे इंदौर में लक्ष्मी वेंकटेश मंदिर है, जहाँ दिव्य देश हो वहाँ के सप्त दिवसीय उत्सव में सम्मिलित होकर अपने धर्म का समर्पण प्रकट करना चाहिए। यह मंदिर अति प्राचीन है और जो भी यहाँ आया है उसके समस्त मनोरथों की पूर्ति भगवान वेंकटेश्वर करते हैं। अगर आप कभी तिरुमला नहीं गए हैं और गए हैं तो वहाँ आप लोगों को दर्शन इत्यादि में बहुत अधिक समय लगा है या ज्यादा समय रुक नहीं पाए हैं, तो एक बार यहाँ अवश्य पधारिए, आपको वैसी ही अनुभूति होगी और वैसा ही आनंद आएगा। जय श्रीमन्नारायण।

0: श्रोताओं, मध्य प्रदेश के अग्रणी विश्वविद्यालय देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के जनजातीय अध्ययन शाला के प्रथम बैच के पाठ्यक्रम पूर्णता समारोह एवं वाणिज्य अध्ययन शाला के नवनिर्मित चाणक्य सभागृह के लोकार्पण का कार्यक्रम 7 जुलाई को संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि थे माननीय उच्च शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह परमार, जिन्होंने विद्यार्थियों का आह्वान किया कि वे श्रेष्ठ नागरिक बनकर अपने गाँव, समाज और राष्ट्र का ऋण चुकाएं तथा भारतीय ज्ञान परंपरा और जनजातीय संस्कृति के संवाहक बने। इस अवसर पर माननीय सांसद श्री शंकर लालवानी, माननीय सांसद श्री गजेंद्र सिंह पटेल, विधायक श्री राकेश गोलू शुक्ला, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर राकेश सिंघाई, कुल सचिव प्रज्वल खरे एवं जनजातीय अध्ययन शाला के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर सखाराम मोझालदे सहित अनेक गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति में विद्यार्थियों को अंक सूचियां प्रदान की गई। जनजातीय अध्ययन शाला ने अल्प समय में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित करते हुए जनजातीय ज्ञान संस्कृति अनुसंधान और भारतीय ज्ञान परम्परा को विकसित किया है। इस अवसर पर विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए खरगोन के सांसद गजेंद्र सिंह पटेल,
1: तो आज से कुछ साल पहले मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल जी द्वारा मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा जनजातीय बच्चों के पुरानी परंपराएं संस्कृति जीवन पद्धति के अध्ययन के लिए पूरे देश भर में अगर अध्ययन शाला का शुरुआत की गई और शुरुआत करने वाले मंगूभाई पटेल जी थे और आज पहले सत्र के जब शुरुआत की थी आज उस देश का आज एक तरह से दीक्षांत कार्यक्रम है। ऐसे सभी बच्चों को मैं बहुत शुभकामना देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ कि आज वो दीक्षांत कार्यक्रम। और आज कुल में जब पहले देश की बात कर रहा हूँ तो मुझे लगता है कि जब हाथ में जब डिग्री आती है तो एक बच्चे की खुशी भी रहती, और सिर्फ मात्र बच्चों की खुशी नहीं रहती, वो परिवार की भी खुशी का कारण बनती है। जब एक सीढ़ी हम पार करते हैं तो ध्यान में आता कि हमने एक ऊंचाई को हमने पार किया है। और उसके जब इस जनजातीय अध्ययन शाला की शुरुआत हुई तब बड़े विश्वास के साथ में यहाँ पर जो पीढ़ी देश के जो छात्र थे उन्होंने अपने पूरी परंपराएं, पुरानी रीति रिवाज, संस्कृति की अध्ययन शाला का केंद्र बनने की जब शुरुआत हुई और कई प्रकार के लिटरेचर और अध्ययन के बाद में जो एक निष्कर्ष निकला तो मुझे लगता है कि एक पाठशाला हमने आज पूरी करी।
0: इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय द्वारा किए जा रहे इस प्रयास और मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं के संदर्भ में जानकारी दी।
2: सतत चलने वाला जो ज्ञान है वो हमारे वंशवासी समाज में आज भी विद्यमान है और एक प्रकार से भारतीय संस्कृति, सांस्कृतिक विरासत, प्रकृति, जल संरक्षण जैसे विषयों पर इस अध्ययन केंद्र में विद्यार्थी रिसर्च कर रहे हैं। और निश्चित रूप से ये देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का एक बड़ा बहुत बड़ा नवाचार है। आने वाले समय में केवल जनजाति समाज ही नहीं तो बाकी लोग भी जनजाति समाज की सांस्कृतिक जो हमारी भारत की विरासत है, हमारी विरासत है, उस विरासत से जुड़ेंगे। और दुनिया के लोग जिस प्रकार के सतत विकास की बात करते हैं वो निरंतर हमारे भारतीय समाज में, जनजाति समाज में निरंतर प्रचलन में है, चाहे उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखो तो चाहे अन्य दृष्टिकोण से देखो। आयुर्वेद जैसा विषय तो आज भी जो वनवासी समाज के वैद्य हैं, विशेषकर मंडला जिले में जो आयुर्वेद में भी जिनका वर्णन नहीं है ऐसे पौधों का उनके पास संचय है, उनका उपयोग वो दवाई में करते हैं। उनके पास जो कमी थी डॉक्यूमेंटेशन की, उस डॉक्यूमेंटेशन की कमी की पूर्ति हम करने जा रहे हैं। हमारे विद्यार्थी उस पर रिसर्च कर रहे हैं और उनका डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं। इसी प्रकार से सेज जनजाति समाज में भी जो डॉक्यूमेंट नहीं है वो डॉक्यूमेंट को हम फिर से बना करके और भारत की गौरवशाली परंपरा को, शायद आपकी जानकारी अधूरी है, लगातार एडमिशन हो रहे हैं, पोर्टल पर एडमिशन हो रहे हैं, पिछले साल से ज़्यादा पंजीयन हो चुके हैं। विश्वविद्यालयों को हमने छूट दी है कि वो या तो हमारे पोर्टल से जुड़ जाए सरकार के या अपना पोर्टल भी हो, अपना स्वयं का बना सकते हैं जैसी उनको सुविधा और बच्चों को किसी प्रकार की एडमिशन में दिक्कत नहीं, पारदर्शितापूर्ण व्यवस्था होना चाहिए।
0: देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के जनजातीय अध्ययन शाला के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर सखाराम मुझालदे ने जानकारी दी।
3: आज जनजातीय अध्ययन शाला का पहला बैच पास आउट हुआ है और ये भारतवर्ष में एक ऐतिहासिक संस्थान है जो पूरे भारतवर्ष में लगभग पहली है। उस पहली बैच से 42 बच्चे पास आउट हुए हैं। उस संबंध में आज कार्यक्रम आयोजित किया गया जो कि एक अभूतपूर्व ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा, क्योंकि ऐसा जो ज्ञाता लोग हैं इस पर्टिकुलर अनोखे क्षेत्र के, वो यही आज 42 बच्चे हैं जिन्हें हमने सर्टिफाई

0: किया है कि आपको इन पूरे क्षेत्र का नॉलेज है, ज्ञान है, और इसके बारे में आप लिखने के लिए, कहने के लिए, कमेंट करने के लिए आधिकारिक रूप से आपको एक सर्टिफाई किया गया है। आगे भी चलकर देश के कई हिस्सों में ऐसी ट्राइबल्स हैं, खासकर हम तो ये मानते हैं कि मध्य प्रदेश उनका घर है, तो मध्य प्रदेश में ही यह शुरुआत हुई है। और ये माँ अहिल्या की नगरी है और माँ अहिल्या के नाम से स्थापित विश्वविद्यालय में ये संभव भी था। और सच में भी ये बहुत खूबसूरती से गया। जब हमने पहली बार कोर्स लॉन्च किया तो पूरी सिटी फुल हुई, इवन वेटिंग लिस्ट लगी। 2 साल बाद हमने यहाँ MBA ट्राइबल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट शुरू किया है और PhD शुरू की है। पर आज जो समाज में ये जो संदेश जाने वाला है इस कार्यक्रम के माध्यम से, आप सभी के माध्यम से, ये मेरे लिए भी बहुत भावुक क्षण है, क्योंकि जब मैं इस कार्यक्रम को या पाठ्यक्रम शुरू कर रहा था, सिंगल मैन था मैं, अकेला सा था, लेकिन मैंने प्रयास किया, हिम्मत रखी और आज 4 साल देखते देखते बीत गए और आज ये कार्यक्रम माननीय मंत्री जी, माननीय सांसद जी, इन सभी की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित किया गया।
1: मेरा नाम अमृता चौहान है। जनजातीय अध्ययनशाला ये एक प्रथम है जो देश में अध्ययनशाला के रूप में विकसित हुआ है। और मैं ये बताना चाहूँगी, मैं खुद एक जनजातीय समाज से आती हूँ। हम लोगों को पहले ये पता नहीं था कि हमारी संस्कृति इतना डीपली पता नहीं था कि क्या है, लेकिन इस अध्ययनशाला में अध्ययन करने के दौरान मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, जो हमारे रीति रिवाज, जो हमारी परंपराएँ हैं, क्या हम प्रकृति को कैसे पूजा जाता है। तो यहाँ पर अध्ययन करने के दौरान मैंने बहुत सारी चीज़ें उसको विस्तृत से अध्ययन करने का मुझे मतलब सौभाग्य मिला है। इसमें हमने प्रथम वर्ष जैसे उसमें ट्राइबल लैंग्वेज एंड लिटरेचर, ट्राइबल फिलोसोफी, हमारे जो ट्राइबल लीडर्स रहे हैं उनके बारे में सीखा है, हमारे जो कस्टम्स लॉ होते हैं उसके बारे में हमने अध्ययन किया है। ऐसे बहुत सारे विषयों पे हमने अध्ययन किया है इन 4 सेमेस्टरों में। जैसे हम अभी आगे शोध कार्य में, हमारा जैसे बोला जाता है कि ट्राइबल का इतिहास मौखिक तौर पर है, ये लिखित नहीं है, तो अभी हम लोग जो स्टूडेंट हैं, जैसे हम लोग रिसर्च करके हमारा जो मूल इतिहास है उसको लिखित तौर पे करेंगे। और जैसे पॉलिसीज जो होती है RBI, नीति आयोग, ऐसी जगह पर अगर हमें जाने का मौका मिलेगा तो हम लोग भविष्य में बिल्कुल ये करेंगे।

0: के बारे में संक्षिप्त जानकारी दे रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इंदौर महानगर द्वारा संगठन के स्थापना दिवस और राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित इस ध्येय पथ व्याख्यान में भारी संख्या में लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम में करीब 1400 से अधिक छात्र छात्राएं, विभिन्न शिक्षण संस्थानों के प्राध्यापक और समाज के अनेक गणमान्य नागरिक बेहद उत्साह के साथ शामिल हुए। इस भव्य आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में प्रख्यात वैज्ञानिक देवालया सरकार उपस्थित रही। उन्होंने वहां मौजूद विशाल छात्र समूह को संबोधित करते हुए भारत की प्राचीन वैज्ञानिक परंपरा, समृद्ध ज्ञान विज्ञान और वैश्विक स्तर पर देश के नेतृत्व की गौरवशाली विरासत पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि भारत प्राचीन काल से ही विज्ञान, गणित, चिकित्सा विज्ञान और अन्य कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पूरे विश्व का मार्गदर्शक रहा है। आज के समय में यह बेहद आवश्यक हो गया है कि हम सब मिलकर विकसित भारत 2047 के बड़े संकल्प को साकार करने के लिए आगे आएं और देश को पुनः उसी गौरवशाली स्थान पर पहुंचाने का हर संभव प्रयास करें। देश को फिटनेस का संदेश देने के उद्देश्य से इंदौर के युवा धावक कार्तिक जोशी ने कारगिल से कन्याकुमारी तक 4200 मीटर की लंबी दौड़ सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। कार्तिक ने कारगिल से कन्याकुमारी तक की यात्रा का लक्ष्य 55 दिनों में पूरा करने का रखा था, लेकिन उन्हें इसमें 2 माह का समय लगा। कश्मीर घाटी की बर्फ से जमी वादियों से लेकर केरल की गर्मी और महाराष्ट्र की बारिश के बीच उन्होंने यह दौड़ पूरी की। बुधवार को कार्तिक दौड़ते हुए कन्याकुमारी पहुंचे तो वहां खेल संगठनों ने उनका भव्य स्वागत किया। आपको जानकारी दें कि 24 वर्षीय कार्तिक पिछले 9 वर्षों से दौड़ रहे हैं और अब तक 75,000 किलोमीटर से अधिक की दौड़ पूरी कर चुके हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित SGSITS ने तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाया है। नए शैक्षणिक सत्र से संस्थान पहली बार हिंदी माध्यम से बीटेक सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने जा रहा है। इस कोर्स की सबसे खास बात यह है कि छात्रों को पूरे 4 साल तक लगातार पढ़ाई करने की बाध्यता नहीं होगी। नई शिक्षा नीति के तहत तैयार इस पाठ्यक्रम में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट की सुविधा भी दी गई है, जिससे छात्र बीच में पढ़ाई छोड़ने पर भी योग्यता के अनुसार रोजगार हासिल कर सकेंगे और बाद में दोबारा पढ़ाई पूरी कर सकेंगे। युवा निर्देशक रिंकू शर्मा द्वारा निर्देशित फिल्म हमारी रामलीला को दर्शकों और समीक्षकों के बीच काफी लोकप्रियता मिल रही है। यह फिल्म मुख्य रूप से उन कलाकारों के कड़े संघर्ष और अटूट मेहनत पर आधारित है, जिनकी बदौलत आज भी देश के गांवों, कस्बों और छोटे छोटे शहरों में रामलीला की समृद्ध परंपरा जीवित बनी हुई है। फिल्म में बेहद खूबसूरती से दिखाया गया है कि तमाम विपरीत परिस्थितियों, आर्थिक तंगहाली और नाम शोहरत की चाह के बिना भी ये कलाकार किस तरह इस सांस्कृतिक विरासत को सहजने में जुटे हुए हैं। जनकपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कार मिलने के साथ साथ कई वैश्विक मंचों पर इस फिल्म को सराहा गया है। यह फिल्म रामलीला को केवल मनोरंजन न मानकर सामूहिक ज्ञान और सांस्कृतिक शिक्षा का एक गतिशील माध्यम मानती है। आज के इंदौर परिक्रमा का ये अंक अब यहीं तक। अगले सप्ताह इसी दिन हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुकाम सिंह चौहान को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: इंदौर परिक्रमा। इंदौर परिक्रमा।
2: क्या बात है, क्या बात है, इंदौर की क्या बात है।
1: इंदौर परिक्रमा।
3: आप सुन रही थी इंदौर परिक्रमा, प्रस्तुति मुकाम सिंह चौहान की। आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से आइए सुनते हैं सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनहरे पल।

स्वागत है सभी श्रोताओं का सदाबहार फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम सुनहरे पल में। कार्यक्रम का पहला नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में हसरत जयपुरी का लिखा गीत किशोर कुमार की आवाज में। फिल्म का नाम है

0: तीनों कॉलेज में।
1: डोंट वरी,
0: फीस तो देखो।
2: क्या हाल है, क्या हुआ?
1: फीस की टेंशन।
2: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
3: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा, और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई।
4: आरबीआई कहता है
5: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।

0: देश, तुम्हारे पापा की तबीयत कैसी है?
1: डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, ब्लड भी चढ़ाना पड़ेगा शायद, लेकिन मुझे डर है कि हॉस्पिटल का ब्लड सेफ है या
2: अगर लाइसेंस हॉस्पिटल या लाइसेंस ब्लड बैंक है तो सेफ ही होगा, क्योंकि ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड स्टोर करने की अथॉरिटी सिर्फ लाइसेंस ब्लड बैंक और लाइसेंस हॉस्पिटल के पास ही है। और ये भी सुनिश्चित कर लेना कि ब्लड HIV टेस्टेड है या नहीं, क्योंकि असुरक्षित ब्लड ट्रांसफ्यूजन से HIV/AIDS जैसे कई बीमारियों की संक्रमण का भी डर रहता है।
1: अच्छा, अब तो मैं लाइसेंस्ड ब्लड बैंक या हॉस्पिटल से ही ब्लड लूंगा।
3: हाँ, और इस बारे में और जानकारी चाहिए हो तो 1097 पर कॉल कर लेना।
4: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
5: सुनहरे पल कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी का लिखा मोहम्मद रफी की आवाज में सच्चा झूठा फिल्म का गीत। इंदिवर का लिखा हुआ ये गीत है और संगीत कल्याण जी आनंद जी का।
6: यूं ही तुम मुझसे बात

लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाज में अब हम आपको सुनवा रहे हैं त्रिशूल फिल्म का नगमा। गीतकार साहिर लुधियानवी और संगीतकार खय्याम।

0: गीत के बोल आनंद बख्शी के और धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।
1: तो हम तुम मिलेंगे, हम तुम मिलेंगे तो, हम तुम मिलेंगे तो सब लोग देखेंगे, सब लोग देखेंगे तो, देखेंगे तो।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनहरी पल, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 8 बजने को है, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात, रिले करेंगे दिल्ली केंद्र से।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूजीलैंड की दो दिन की यात्रा पर ऑकलैंड पहुंचेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सुरक्षित सीमाएं, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और सतर्क समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद में सुपुर्द खाक किया गया। अमरीकी और इसराइली हमलों में उनकी मृत्यु के 4 महीने बाद हुआ अंतिम संस्कार। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। और पुरुष टी20 क्रिकेट में इंग्लैंड ने चौथे अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारत को 9 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई है। ऑस्ट्रेलिया के साथ यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ है। दोनों देशों ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में 3री ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। श्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
0: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
2: बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में चिप से लेकर जहाजों तक के विनिर्माण का तंत्र विकसित किया जा रहा है।
0: आज चिप से लेकर शिप तक मैन्युफैक्चरिंग का भारत में एक नया इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। भारत के बड़े सपनों, बड़ी एस्पिरेशंस की नींव है। पीपल फर्स्ट, यानी नागरिक देवो भव का मंत्र, ये आज के भारत की गवर्नेंस का मूल मंत्र बन गया है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ आज मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का दौरा किया। दोनों नेताओं के बीच हुई चर्चा क्रिकेट सहयोग, खेल अवसंरचना, आईपीएल बीबीएल साझेदारी और 2032 में ब्रिस्बेन ओलंपिक और भारत की 2036 में ओलंपिक के लिए बोली सहित प्रमुख वैश्विक खेल आयोजनों से पहले सहयोग पर केन्द्रित थे। ऑस्ट्रेलिया यात्रा के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के नेता प्रतिपक्ष एंगस टेलर से मुलाकात की। उन्होंने श्री टेलर से भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रगाढ़ होते संबंधों और भविष्य में आने वाले अवसरों पर सार्थक चर्चा की। एक रिपोर्ट।
3: यह बैठक इस बात का स्पष्ट संकेत देती है कि ऑस्ट्रेलिया की संसद में भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों को दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों का व्यापक और मजबूत समर्थन प्राप्त है। रणनीतिक साझेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए नेता प्रतिपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्यूजीलैंड का सच्चा मित्र बताया। दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि यह सहयोग राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा तथा स्थिरता बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिखर वार्ता के प्रमुख निष्कर्षों के अनुरूप श्री टेलर ने शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए भारत को ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम के निर्यात का समर्थन किया। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
2: श्री मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड जाएंगे। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए ऑकलैंड पूरी तरह तैयार है। यहां बसे भारतीय समुदाय के साथ साथ स्थानीय न्यूजीलैंड वासी भी पारंपरिक माओरी अभिवादन किया ओरा मोदी कहकर उनका स्वागत करने को उत्सुक हैं। महिलाएं, युवा, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, शिक्षाविद और विभिन्न सामुदायिक संगठनों के सदस्य इस यात्रा को भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों में एक नए अध्याय

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी सम्मेलन में उपस्थित रहे।
4: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है, जीवंत ग्राम कार्यक्रम के अंतर्गत पलायन रोकने, रोजगार सृजित करने और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का शत प्रतिशत कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है। भारत म्यांमार सीमा पर 31,000 करोड़ रुपए की लागत से बाड़ लगा रही है। सम्मेलन का उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति का आकलन करके प्रवर्तन में सुधार के उपायों की पहचान कर देश के सीमा सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना था। अक्षित के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार E85 ईंधन शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ये ईंधन मानक E20 पेट्रोल की तुलना में करीब 20 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। हालांकि E85 केवल उन वाहनों के लिए उपलब्ध होगा जिन्हें विशेष रूप से इस ईंधन के उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। एक निजी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में श्री पुरी ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से इंजन को नुकसान पहुंचने और वाहन के प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने संबंधी शंकाओं को भी खारिज किया। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता UCC का मसौदा तैयार करने के उद्देश्य से 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल महाराष्ट्र विधानसभा में इसकी घोषणा की। एक रिपोर्ट।
5: सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता वाली ये समिति अगले 6 महीने में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी। इसके आधार पर सरकार आगामी शीतकालीन सत्र में नागपुर में विधानसभा और विधान परिषद में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है। न्यायमूर्ति रंजना देसाई इससे पहले उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की भी अध्यक्ष रह चुकी हैं। उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना था। इसके बाद गुजरात ने अपना UCC कानून पारित किया, जबकि असम इस वर्ष ऐसा करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। मुंबई से संगीता गोडबोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
3: भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराई को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन सीटों पर उपचुनाव इस महीने की 24 तारीख को होंगे। तीनों नेता कल तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद स्थित इमाम रजा दरगाह में अंतिम विदाई दी गई। हजारों समर्थक उनके अंतिम दर्शन के लिए एकत्रित हुए। ईरानी मीडिया ने बताया कि उनके सबसे बड़े बेटे सैयद मुस्तफा खामनेई ने अंतिम संस्कार की रस्में पूरी की। इस वर्ष 28 फरवरी को अमरीका इसराइल के हमलों में आयतुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई थी। और अब खेल खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
6: फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अमेरिका के बोस्टन

0: खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में पहले हाफ में कोई गोल नहीं हुआ। दूसरे हाफ में किलियन एम्बापे ने 60वें मिनट और उस्मान डेम्बेले ने 66वें मिनट में गोल कर फ्रांस को जीत दिलाई। फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। विंबलडन टेनिस में महिला सिंगल्स का फाइनल चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा और कैरोलिना मुचोवा के बीच खेला जाएगा। लिंडा नोस्कोवा ने सेमीफाइनल में यूक्रेन की मार्टा कोत्स्युक को हराकर पहली बार विंबलडन और ग्रैंड स्लैम फाइनल में जगह बनाई है। वहीं कैरोलिना मुचोवा ने अमेरिका की कोको गॉफ को हराकर खिताबी मुकाबले में प्रवेश किया।
1: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद फरहत। भारत द्वारा ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम खरीदने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, भारत को ऑस्ट्रेलिया करेगा यूरेनियम की आपूर्ति, गगनयान मिशन में भी देगा साथ। जनसत्ता के शब्द हैं, भारत ऑस्ट्रेलिया में रक्षा करार, व्यापार सौदे पर तेजी से काम। अंतरिक्ष में भेजा दुनिया का पहला कमर्शियल परमाणु संचालित सैटेलाइट, सफल लॉन्चिंग, अंतरिक्ष में ऊर्जा के लिए सूरज पर नहीं रहेंगे निर्भर, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। आसमान बरसा, एनसीआर थमा, तीन साल बाद दिल्ली में एक दिन में हुई सबसे ज्यादा बारिश। नवभारत टाइम्स ने कल बारिश से बेहाल लोगों की अलग अलग तस्वीरें प्रकाशित की हैं। पत्र लिखता है, सड़कों और अंडरपास में भरा पानी, कई जगह लगा जाम। दैनिक भास्कर ने बीजापुर के इंद्रावती टाइगर रिजर्व के खुलने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, पहली बार बीजापुर के जंगल में सफारी, 40 साल जिन नक्सलियों ने आने से रोका था, वहीं पर्यटकों को घुमाएंगे, प्रशिक्षण देकर नक्सलियों को गाइड बनाने की है तैयारी। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पन्ने पर पश्चिम एशिया पर फिर से अस्थिरता के बादल मंडराने पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, आक्रामक ट्रंप से अस्थिर दुनिया। पत्र लिखता है, जब तक व्यापक बातचीत के जरिए हॉर्मुज जलमार्ग का विवाद नहीं सुलझाया जाएगा, तब तक अमेरिका और ईरान दुनिया के अन्य देशों की परेशानी बढ़ाते रहेंगे।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूजीलैंड की दो दिन की यात्रा पर ऑकलैंड पहुंचेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सुरक्षित सीमाएं, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और सतर्क समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद में सुपुर्दे खाक किया गया। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। पुरुष टी20 क्रिकेट में इंग्लैंड ने चौथे अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारत को 9 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 3-0 की अजय बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: कहाँ आपका जन्म हुआ, शिक्षा कहाँ हुई और किस तरह से चीजें आगे बढ़ी?
1: मैं मालवा में ही पैदा हुआ हूँ। महू के अंदर मेरी पैदाइश हुई है, रेड क्रॉस सोसाइटी में।
0: जी
1: वहाँ से सबसे पहले मैंने महू में ही अपनी शिक्षा प्राइमरी लेवल के ऊपर शुरू करी, पर मेरे पिताजी चूंकि सरकारी सर्विस में थे, सरकारी नौकरी में थे, हर साल उनका ट्रांसफर हो जाता था। तो धीरे धीरे डेली कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ जब मैं 3.5 साल का था। उसके बाद मैंने 5वीं पास करी पिपरिया से,
0: जी
1: 8वीं पास करी गीदम बस्तर से। एंड फिर फादर ने सोचा कि हर साल ट्रांसफर हो जाता, हर साल स्कूल बदलना एक बड़ा टीडियस जॉब है, तो मुझे अपने मामा जी के पास महू में ही उन्होंने छोड़ दिया
0: जी
1: और मैंने अपनी 11वीं राजेश्वर विद्यालय महू से पास करी। उसके बाद होलकर साइंस कॉलेज में आया, फर्स्ट ईयर में एडमिशन हुआ, मेरा इंजीनियरिंग में नहीं हो पाया था। खैर मैंने BSc सेकेंड ईयर करी। उसके बाद मेरा BSc फर्स्ट ईयर मैंने होलकर से करी, BSc सेकेंड ईयर मैंने मंडला से करी। देन मेरा एडमिशन रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ। मैंने अपनी इंजीनियरिंग करने के बाद पश्चात, ये आप गलत कर रहे हैं, और इंदौर से मैंने GSITS से मास्टर्स करी
0: जी
1: और उसके बाद आई स्टार्टेड माई प्रोफेशनल एज अ सिविल कंसल्टेंट।
0: जी
1: मैं सिविल कंसल्टेंसी में अपना कार्य करना शुरू किया। कार्य करते करते हम लोग एक फैक्ट्री बना रहे थे और फैक्ट्री नहीं चल पा रही थी,
0: अच्छा
1: तो एक पंडित जी आए, उन्होंने
0: हाँ
1: पूछा साहब ये फैक्ट्री बिल्कुल नहीं चलेगी। हमने कहा क्यों नहीं चलेगी भाई फैक्ट्री? तो उन्होंने कहा ये जो मशीन लगी है गलत लगी है, आप कुबेर में से रॉ मटेरियल डाल रहे हैं और यम के स्थान पर फिनिश प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, तो ये फैक्ट्री नहीं चल सकती।
0: अच्छा
1: दैट वॉज अ वेरी एस्टोनिशिंग फॉर मी कि मैंने कहा ऐसे कैसे, इससे क्या संबंध है? बोला आप मशीन घुमा दीजिए फैक्ट्री चलने चल लग जाएगी।
0: अच्छा
1: मैंने मेरे क्लाइंट से बोला ये सब कोरी बकवास है, इससे सब कुछ नहीं हो सकता।
0: हाँ
1: पर
0: हाँ
1: मेरे क्लाइंट ने मुझे फोर्स किया कि नहीं ये एक काम करो तुम मशीन घुमा दो।
0: हाँ
1: तो
0: हाँ
1: 26 जनवरी 1986 को मैंने वो मशीन रोटेट करी 180 डिग्री से।
0: जी
1: उसमें रॉ मटेरियल दक्षिण की दिशा से डालना शुरू करा, जिसको कि यम का स्थान बोलते हैं, और फिनिश प्रोडक्ट कुबेर का स्थान मतलब सेंटर नॉर्थ की तरफ निकालना शुरू करा और
0: जी
1: फैक्ट्री चलने लग गई 3 महीने में, प्रॉफिट पे आ गई।
0: जी
1: दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट फॉर मी।
0: अच्छा
1: इसमें एक चीज जरूर मैं बताना चाहूंगा कि बचपन से हमारे फादर ने
0: जी
1: मुझे खेल के लिए बहुत प्रोत्साहित करा।
0: अच्छा
1: हमेशा फील्ड पे हम लोगों को रोज 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे खेलना होता था। पहले तो बचपन में मैं बैडमिंटन क्रिकेट बहुत खेले, हम लोग 2-2 घंटे बैडमिंटन खेला करते थे।
0: अच्छा
1: मैं कॉलेज टीम में भी रहा बैडमिंटन की, यूनिवर्सिटी टीम भी मैंने यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंट किया। कॉलेज के जमाने में फिर मुझे ब्रिज का शौक लग गया
0: अरे
1: तो ब्रिज
0: वाह
1: खेलने लग गया। तो मुझे हमेशा ऐसा महसूस होता, आज भी महसूस होता है कि स्पोर्ट्स जो है ब्रेन का एक तरह से यूरिया है।
0: बिल्कुल
1: अगर
0: बिल्कुल
1: स्पोर्ट्स नहीं हो तो हमारी ग्रोथ में कहीं ना कहीं उन्नति नहीं हो पाती है।
0: बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप।
1: तो स्पोर्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट और उसने मुझे बहुत फायदा दिया। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट हुआ 76 में
0: जी
1: मंडला के अंदर महर्षि महेश योगी के कुछ लोग आए, उन्होंने मेरे से बोला कि आपको मेडिटेशन सिखाते हैं। अब यंग थे तो हमने कहा चलो हम भी मेडिटेशन सीख लेते। तो
0: अच्छा
1: उन्होंने ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन सिखाया
0: हाँ
1: जिसको 76 से रेगुलर प्रैक्टिस करना शुरू करी।
0: जी
1: फिर मैं जब इंजीनियरिंग में था तो 81 में फिर मेरे पास महर्षि महेश योगी के लोग आए, उन्होंने कहा साहब आपको मेडिटेशन सिखाते हैं। तो मैंने उनको बताया नहीं कि मुझे आता है,
0: हाँ
1: क्योंकि
0: हाँ
1: क्यूरियोसिटी थी कि ये मंत्र दे रहे हैं वो अलग देते हैं कि अलग एक ही मंत्र होता है। खैर एनीवे उनसे भी सीख लिया मैंने, बट दैट मेडिटेशन हेल्प्स मी अलॉट। उसने मेरे जीवन में काफी सहायता करी है चीजों को कनेक्ट करने में। इंजीनियरिंग हो गई, उसके बाद वास्तु का अध्ययन शुरू करा 86 से,
0: अच्छा
1: 90 तक प्रैक्टिस भी करता रहा सिविल की और साथ में वास्तु का अध्ययन करना शुरू करा। 1991 से मैंने प्रोफेशनल प्रैक्टिस चालू करी।
0: जी
1: अब मेरे को हमेशा एक चीज लगती थी कि इसमें इतनी सारी चीजें कही गई है हमारे शास्त्रों में, इसका हम प्रूव कैसे करें?
0: हाँ ये बहुत आवश्यक था।
1: वो मैं अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था। तो मुझे मालूम पड़ा कि पौंडीचेरी में डॉक्टर प्रभात पोद्दार जी हैं, उन्होंने
0: जी
1: काफी वर्क किया है, तो मैं उनसे मिलने पौंडीचेरी गया।
0: जी
1: पौंडीचेरी में अनफॉर्चुनेटली वो नहीं थे, उनसे मुलाकात नहीं हुई, मैंने
0: हाँ
1: उनको
0: हाँ
1: एड्रेस दिया।
0: जी
1: उससे पहले एक और चीज हुई, मेरी जो वाइफ है वो जैन है, तो
0: अच्छा
1: जब भी ससुराल में जाता था तो मुझे वहां से ये बताया जाता था कि भाई जैन शास्त्रों में बहुत ज्यादा वास्तु के बारे में बताया गया,
0: अच्छा
1: और 86-87 में कभी कोई किताबें नहीं मिलती थी। तो मेरे को एक बार अहमदाबाद जाने का मौका मिला, उन्होंने बोला अहमदाबाद में एक लाइब्रेरी है, कोबा के अंदर जैन समाज की एक लाइब्रेरी है।
0: अच्छा
1: तो मैं वहां गया और मेरे को फर्स्ट टाइम 88 के अंदर 264 किताबें वास्तु विज्ञान के ऊपर उस लाइब्रेरी में मिली,
0: अच्छा
1: और मैं उसको लेके आया, फिर उनका काफी अध्ययन करा, डिटेल में अध्ययन करा। 90 अगस्त से मैंने अपनी प्रोफेशनल

0: प्रैक्टिस वास्तु विज्ञान के अंदर शुरू करी।
1: जी
0: एक और बड़ा इंसिडेंट हुआ मेरे संग, 94 में इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स नागपुर ने एक लेक्चर वास्तु विज्ञान के ऊपर, वास्तुशास्त्र पे एक कॉन्फ्रेंस रखी थी और मैं वहां पे स्पीकर था
1: जी।
0: हमने लेक्चर दे दिया, सब कुछ हुआ, बड़ा अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। शाम को एक सज्जन मिले, बोले मेरे पिताजी के पास बहुत सारी किताबें हैं, उसमें शायद वास्तु की किताबें भी आपको मिल जाए।
1: अच्छा।
0: तो मैंने कहा भाई अगर मिलती है तो मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ, मैं चलता हूँ। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम लोग रफली 9:30 बजे हम गए, तो एक 20 फीट बाय 20 फीट का कमरा था।
1: अच्छा।
0: उसमें सेंटर के अंदर एक हीप बना हुआ था जिसके अंदर किताबें भरी पड़ी थी, जैसे बोरों से लाके किताबें वहां डाल दी गई हों। और हर किताब पे मैं सोचता हूँ कम से कम 2 से 3 mm धूल चढ़ी हुई थी।
1: ओहो।
0: उसने ले जाके कमरे पे दिखाया कि भाई ये किताबें आप, इसमें आपको देखना तो देख लीजिए। और जो कि आपने कल लेक्चर में बहुत सारी चीजें बोली थी, तो आई एम वेरी इंटरेस्टेड कि आपके कोई इंटरेस्ट की बात मिल जाए।
1: अच्छा।
0: खैर आई एंटर्ड दैट रूम, शाम को 6 बजे वो धूल, 1 mm की धूल मेरे शरीर पे थी और मेरे से 8 किताबें मेरे हाथ में थी।
1: अच्छा।
0: वो एक जो इतना अच्छा खजाना मिला, मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी करी कि साहब आपकी जो ये कलेक्शन है इज अ वंडरफुल कलेक्शन और हमारे को इसको प्रिक्योर किया जाना चाहिए और इसमें जो भी हेल्प मैं कर सकता हूँ मैं करने को तैयार हूँ। तो एक ये वाक्य भी मेरे संग हुआ, बहुत अच्छा था, वहां मेरे को काफी नॉलेज मिला। ऐसे ही लेकर एंटीना एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उस इंस्ट्रूमेंट की ट्रेनिंग यहाँ पे नहीं हो पा रही थी।
1: अच्छा।
0: वो इंस्ट्रूमेंट जो है पेरिस के अंदर डॉक्टर रेने निकेशियन ने वो बनाते हैं, और मैं उनसे कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहा था कि सर मेरे को ये ट्रेनिंग के लिए आना चाहता हूँ। मैं अपने टूर से लौटा, 94 की बात है, 30 अगस्त या 29 अगस्त की बात थी
1: जी।
0: मैं अपने टूर से नागपुर से लौट के इंदौर आया।
1: हाँ।
0: और मुझे फैक्स मिला,
1: हाँ।
0: उस जमाने में फैक्स चलता था, तो फैक्स मिला कि आप 15 सितंबर को आप इस ट्रेनिंग में आप आ जाए, फ्रांस आ जाए, 15 से 20।
1: अच्छा।
0: आपकी ट्रेनिंग रहेगी।
1: हाँ।
0: अब वीजा करवाना, टिकट करवाना, उस जमाने में पैसे भी नहीं हुआ करते थे, सच बात ये भी थी। खैर एनीवे हमने कोशिश करी, फिर मुझे मालूम पड़ा कि साहब उस समय रोज फ्लाइट नहीं थी पेरिस की।
1: अच्छा।
0: तो फ्लाइट जो थी वो या तो 12 तारीख को थी जो हम 13 को पहुंच सकते थे,
1: हाँ।
0: और नहीं तो 15 को थी 16 को पहुंच रहे थे।
1: अच्छा।
0: तो मैंने कहा एक दिन की ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी तो वो नहीं कर सकता।
1: हाँ।
0: खैर एनीवे मैंने 12 तारीख की फ्लाइट लेकर के मैं 13 तारीख के सुबह सुबह पेरिस पहुंच गया।
1: अच्छा।
0: पेरिस पहुंचने में भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक्य हुआ। मैं एयरपोर्ट पे था, थोड़ा पहली बार फॉरेन में अकेले जा रहे हो तो डर तो लगता ही है मन में,
1: बिल्कुल
0: डर था मन में। तो एक लेडी थी, ओल्ड लेडी थी, उसने आके मेरे से बोला, एक मुस्लिम लेडी थी बेचारी, तो उसने बोला कि भैया ये फॉर्म भर दो, इमिग्रेशन का फॉर्म था। तो मैंने कहा लाइए इंडिया में बॉम्बे एयरपोर्ट के ऊपर इमिग्रेशन की कार्रवाई करनी थी। उस लेडी ने मेरे से पूछा कि मेरे को इमिग्रेशन का फॉर्म भर दीजिए। तो मैंने उनका फॉर्म भर दिया, बोले मैं भी पेरिस जा रही हूँ। मैंने पूछा कहाँ जा रही है, तो पेरिस फॉर्म में लिखना ही था। तो मैंने कहा आप एक काम करो, मैं भी इसी फ्लाइट से जा रहा हूँ, आप बैठो, जब मैं जाऊंगा तो मैं आपको साथ ले चलूंगा। तो मैं उनको ले जाके उनकी सीट पे बैठा दिया।
1: अच्छा।
0: और मैं अपने बैठ गया और हम लोग पेरिस पहुंच गए।
1: हाँ।
0: अच्छा उसके बाद मैं भी भूल भाल गया सुबह जब पेरिस में उतरे।
1: हाँ।
0: अब नई कंट्री, नई जगह, और
1: कहाँ जाना है,
0: कहाँ जाना है। अच्छा सबसे बड़ी बात, पेरिस में कोई अंग्रेजी नहीं बोलता।
1: हाँ।
0: अब फ्रेंच अपने को आती नहीं,
1: बिल्कुल।
0: तो वो एक दिक्कत की बात थी, मेंटल टेंशन भी था। मैं बाहर आया, सोच ही रहा था, पर ईश्वर का आशीर्वाद देखिए, वो लेडी अपने बेटे के साथ मेरे पास आई, उसका बेटा उन्हें लेने आया था।
1: अच्छा।
0: तो उसने बोला कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है, ऐसा ऐसा है। और उसने मेरी जो हेल्प करी, शायद वो 3 मिनट भगवान ने जो मुझे दिए उसकी हेल्प करने के लिए मुझे भेजा था, जो उन्होंने मेरे को हेल्प कर दी। तो अगर हमें किसी को हेल्प करने के मौका मिलता है तो मुझे लगता है कि हमेशा मुझे करनी चाहिए। और इसलिए नहीं कि मुझे उसका फायदा मिलेगा, पर ईश्वर वही का वही आपको रिजल्ट दे देता है। मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है हमेशा, नॉट ओनली दिस इंसिडेंट, मेनी टाइम्स आई हैव फाउंड दिस। तो और एक बार वो हमारे को मेट्रो तक ले गए, उन्होंने मेट्रो में छोड़ा, उन्होंने समझाया यहां से आप इस जगह उतरिएगा, एक वहां का मेट्रो सिस्टम समझा दिया। खैर इतनी भी गाइडेंस अगर आपको एक फॉरेन कंट्री में मिल जाए तो देन यू कैन विन द वर्ल्ड।
1: तो पेरिस पहुंचने के बाद वहां के कुछ अनुभव हमारे श्रोताओं को बताएं।
0: एक जैसा मैंने बताया मन में एक डर था मेरे।
1: हाँ।
0: खैर मैंने वहां पे डॉक्टर रेने निकेशियन को फोन किया, 13 तारीख की करीबन 11 बजे होगी उस समय।
1: हाँ।
0: कि सर मैं ऐसा ऐसा है और मेरे को फ्लाइट नहीं मिल रही थी 15 को पहुंचने की।
1: हाँ।
0: तो मैं 2 रोज पहले आ गया हूँ, पर आई फाउंड पीपल आर वेरी गुड इन फॉरेन कंट्रीज, पीपल आर वेरी हेल्पिंग, इवन इन इंडिया आई फाउंड पीपल आर वेरी हेल्पिंग, वेरी काइंड, वेरी गुड पीपल ओवर हियर। तो उन्होंने बोला एक काम करो आप अभी आ जाइए।
1: अच्छा।
0: तो आई रीच द इंस्टीट्यूट एट अराउंड 12:30 or 1।
1: हाँ।
0: और उन्होंने कहा जो आपकी ट्रेनिंग है फर्स्ट लेवल की,
1: हाँ।
0: क्योंकि क्या है वो फ्रेंच में थी हमारी जो 1500

0: को थी, वो फ्रेंच में थी, और उन्होंने एक लेडी थी जो विडेड नैश, उसको टर्की से बुला के रखा था, शी वॉज डूइंग ट्रांसलेशन फॉर मी इन इंग्लिश।
1: अच्छा
0: तो मतलब आप देखिए उनका कितनी दूर का उनका सोच था, मुझे सब आइडिया नहीं था। तो
1: हाँ
0: डॉक्टर रेने ने मुझे 1.5 दिन की ट्रेनिंग दी और उसमें फर्स्ट लेवल मुझे पूरा करवाया और
1: अच्छा
0: सेकेंड लेवल के कुछ ग्लिम्सेज मुझे समझा दिए।
1: अच्छा
0: उसका फायदा मुझे ये हुआ, जब मैं ट्रेनिंग में बैठा तो जो चीजें मुझे समझाई गई मेरी बड़ी थॉरो हो गई
1: अच्छा
0: और बहुत अच्छे से समझ में आया। और विडेड नैश एवरीथिंग शी वॉज ट्रांसलेटिंग इन इंग्लिश फॉर मी।
1: हाँ
0: एक तो मतलब लोगों की दूरदर्शिता, हेल्पिंग नेचर, इट वॉज रियली वंडरफुल।
1: तो उस प्रशिक्षण में आप अकेले ही थे या और भी कोई लोग थे?
0: हम लोग 46 लोग थे, 46 लोग थे,
1: अच्छा
0: और सबसे इम्पोर्टेंट बात थी 46 में 45 डॉक्टर्स थे और मैं
1: हाँ
0: अकेला इंजीनियर था उनके बीच में।
1: अच्छा
0: तो
1: अच्छा
0: उन्होंने पूछा भी आप क्यों ले रहे हैं
1: हाँ
0: ये
1: हाँ
0: ट्रेनिंग, तो मैंने कहा वास्तु विज्ञान में जब तक हम ह्यूमन बॉडी के बारे में नहीं जानेंगे तो हम उसको एनवायरमेंट को कैसे उसके लिए हार्मोनियस बना पाएंगे।
1: जी बिल्कुल
0: तो ह्यूमन बॉडी जानना हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट हो गया एनवायरमेंट को ठीक करने के लिए, तभी
1: हाँ
0: वास्तु के सही कोरिलेशन मिल सकते थे हमें कि
1: जी
0: वास्तु विज्ञान का क्या असर होगा।
1: जी तो वो जो यंत्र है उससे कौन कौन सी चीज़ें जांची जा सकती हैं?
0: ये यंत्र जो वहां पे यूज कर रहे थे बॉडी की एनर्जी मेजरमेंट के लिए यूज कर रहे थे, पर यही यंत्र पर्यावरण की लगभग 180 तरह की एनर्जी भी इससे मेजर करी जाती है।
1: अच्छा
0: और पर्यावरण की वो ऊर्जाएं, अगर पॉजिटिव नेगेटिव जो डेफिनेशन दी गई है वो ये है, जो ह्यूमन बॉडी के लिए हेल्दी हैं, हेल्पफुल हैं, हम उनको पॉजिटिव ऊर्जाएं बोलते हैं, और
1: हाँ
0: जो ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल है उनको नेगेटिव ऊर्जाएं बोलते हैं।
1: अच्छा
0: तो उससे ये नापा जा सकता था इस पर्यावरण में कौन सी ऊर्जा कितने क्वांटिटी की नेगेटिव या पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव है तो देन हम लोग ये ढूंढते थे कि हम किस तरह से उस नेगेटिव ऊर्जाओं को वापस से हम पॉजिटिव कर पाए।
1: अच्छा फिर
0: तो
1: भारत आपका आना हुआ वहां से?
0: हाँ, मैं उसके बाद ये ट्रेनिंग लेकर के वापस इंडिया आया एंड दैट बिकम अ वेरी गुड फॉर मी।
1: हाँ
0: और 94 की बात है, 95 में वी स्टार्टेड डूइंग रिसर्च ऑल्सो इन दिस। और हमने इंदौर के अंदर करीबन शुरू में 18 इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट ऐसा
1: हाँ
0: लेके एक छोटा सा ग्रुप बनाया
1: अच्छा
0: और इन ग्रुप में डिस्कशन शुरू करा संडे संडे कि संडे अपन बैठेंगे शाम को एक कप चाय पे और अपन डिस्कस करेंगे। बीच में हमारे अगर देखें तो हमारे जो पुराण है, वेद है, इनमें वास्तु विज्ञान के बारे में बहुत बताया गया है। तो हमें ऋग्वेद पढ़ना था,
1: अच्छा
0: ऋग्वेद पढ़ना एक के बूते की बात नहीं थी, तो उसके
1: जी
0: 8 वॉल्यूम है, मतलब टोटल 8 किताबें हैं। तो हम लोगों ने 8 जने सेलेक्ट करे हमें
1: हाँ
0: और हर एक से ये रिक्वेस्ट करी कि एक एक चैप्टर हर एक आदमी पढ़ेगा और हर संडे को आके जो चैप्टर आपने पढ़ा वो एक्सप्लेन करेगा,
1: अच्छा
0: हम गलत सलत जो भी हो जैसा भी हमारा समझ में आप एक्सप्लेन करिए।
1: जी
0: तो हमारे को वो पढ़ने में जो 3 साल लगने थे वो शायद हमने 8 महीने में कंप्लीट कर डाले।
1: यानी इतना वक्त लगना ये बताता है कि आपने उसको बड़े ध्यान से और बड़ी गहराई से और उनके निष्कर्ष निकालते हुए ग्रंथ को पढ़ा, ऋग्वेद को।
0: वो तो बहुत जरूरी था,
1: हाँ
0: सिर्फ पढ़ना मोटो नहीं था उसको,
1: हाँ
0: समझना मोटो था कि क्या कहना चाह रहे हैं हमारे
1: हाँ
0: पूर्वज, हमें क्या
1: हाँ
0: कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, वो
1: हाँ
0: एक बहुत इंपॉर्टेंट था।
1: पंकज जी, वो जो आपने अध्ययन किया, तो भारतीय समाज में अधिकांश लोगों ने वेदों को नहीं पढ़ा है, मतलब आम जनता की अगर हम बात करें, किस तरह के आपके अनुभव रहे और उनमें ऐसी क्या चीजें थी, हमारे श्रोताओं को बताएं आप।
0: इसमें बहुत सारी चीजें निकल करके आई। हमारे जो वैदिक काल में उन्होंने पर्यावरण का अध्ययन हजारों हजारों साल किया, उसके बाद उन्होंने कुछ नियम बनाए, वो नियम एक कॉमन आदमी तक इजीली पहुंच जाएं, इसलिए उनको उन्होंने
1: लिपिबद्ध किया,
0: हमारे
1: लिपिबद्ध किया उनको।
0: लिपिबद्ध कर दिया,
1: हाँ
0: बट उसका मिसयूज ना हो जाए तो
1: हाँ
0: उसको कोडिंग भी कर दी उन्होंने। मतलब
1: अच्छा
0: आज आप पढ़ेंगे तो एकदम से आपको क्लियरिटी नहीं आएगी कि क्या कहना चाहता है,
1: अच्छा
0: बट आप उस सब्जेक्ट में जब डेप्थ में जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहा है। एक और एग्जाम्पल लेता हूं मैं आपको, हमारे संग डॉक्टर ओझा भी जुड़े हुए हैं इस रिसर्च के अंदर। उन्होंने डीकोड करने के लिए, वेद के जो श्लोक है उनको डीकोड करने के लिए पूरा सिस्टम किस तरह से डीकोड किया जाता है
1: अच्छा
0: वो बनाया, उसको निकाल लिया था।
1: हाँ हाँ
0: और हमने ये देखा कि उस समय पृथ्वी का जो डायमीटर है, जो आज से आप ये सोचिए जब वेद लिखे गए 4,000, 5,000, 10,000 साल जो भी, अब ये कहना तो बहुत मुश्किल है, अलग अलग जगह अलग अलग चीजें आती है, तो उस समय जो डायमीटर बताया
1: हाँ हाँ
0: और आज जो साइंटिस्ट डायमीटर बता रहे हैं
1: हाँ हाँ
0: उसमें 1.5 मीटर का फर्क है, सिर्फ 1.5 मीटर का फर्क है पृथ्वी के डायमीटर में।
1: तो ये अनुमान जो है बहुत लगभग सही है।
0: 110% हमारे वेद जो बताया गया, हमारे वैदिक
1: हाँ
0: काल
1: हाँ
0: में जो
1: हाँ
0: लिखा गया है
1: जी
0: वो 110। अब जैसे पाई की वैल्यू
1: हाँ
0: 3.14

0: 22/7 जो हम पाई
1: हाँ
0: की वैल्यू बोलते हैं,
1: हाँ
0: थ्री
1: तीन
0: पॉइंट वन
1: दशमलव एक
0: फोर
1: चार जो है
0: एक
1: जी
0: चार सात उसको उस जमाने में वैदिक काल में जो श्लोक के फॉर्म में लिखी गई पाई,
1: जी
0: उसको अगर डिकोड करें आज जो आ रही है पाई की वैल्यू में, आठवीं डिजिट में जाके फर्क आता है।
1: अरे
0: साठ
1: वाह
0: डिजिट तक तो 3.147 के आगे 60 डिजिट तक सेम है,
1: जी जी
0: आठवीं
1: जी
0: डिजिट में फर्क आता है।
1: हाँ हाँ
0: तो आप सोचिए हमारे जो पूर्वज थे कितने इंटेलिजेंट थे,
1: बिल्कुल
0: उन्होंने हमारे ग्रहों की स्थिति, हमारे मतलब प्लेनेटरी मोशन की बात कर रहा हूं मैं,
1: आर्यभट्ट साहब ने जो दिया था।
0: आर्यभट्ट साहब ने दिया,
1: हाँ हाँ
0: साइंटिफिक रिसर्च जो उन्होंने करी हुई थी
1: जी
0: वो बहुत ही मजबूत बहुत ही अच्छी करी गई। उसके बाद मुझे मालूम पड़ा कि एक अमेरिका के अंदर फ्लोरिडा में एक इंस्टीट्यूट है,
1: हाँ
0: एक्चुअली हमारी पृथ्वी दो भागों में बटी हुई है,
1: हाँ
0: एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक सदर्न हेमिस्फीयर,
1: जी बिल्कुल
0: तो उस पर रिसर्च करने के लिए उन्होंने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अमेरिका में एक इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश करा, इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी एंड इकोलॉजी।
1: हाँ
0: इसका मतलब इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट ऑन ह्यूमन सिस्टम और इफेक्ट ऑफ बिल्डिंग ऑन ह्यूमन सिस्टम, और जो बाहर प्लांटेशन है उसका हमारे ऊपर मकान के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है।
1: जी
0: और एक सदर्न हेमिस्फीयर में उन्होंने ऑकलैंड में इस्टेब्लिश किया, तो मेरे पास चॉइस थी, मैं बड़ा कंफ्यूज था कि मैं किस इंस्टीट्यूट से जाके ट्रेनिंग लूं।
1: हाँ
0: हमारे दोस्त हैं डॉक्टर नानेरिया, उन्होंने मेरे जीवन में बड़ी हेल्प करी है,
1: अच्छा
0: उन्होंने बहुत सिखाया भी है, मतलब उनके घर के इंटरनेट से डाटा हम लोग ढूंढा करते थे कि हम क्या करें वास्तु में, हम क्या कर सकते हैं, और फिर ही टोल्ड मी कि नहीं अपने को यूएसए से ये ट्रेनिंग लेनी है।
1: अच्छा
0: तो मैं फिर अमेरिका गया, फ्लोरिडा के एक छोटा सा गांव है कह लीजिए या छोटा कस्बा कह लीजिए,
1: हाँ
0: टेम्पा,
1: अच्छा
0: सॉरी टेम्पा नहीं, क्लियर वाटर, क्लियर वाटर के अंदर इंस्टीट्यूट था। मैं वहां जाकर के तीन लेवल पे अलग अलग ट्रेनिंग होती है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, वो लेने गया, बट दैट हेल्प्स मी अलॉट। फिर मुझे ये लगा उस ट्रेनिंग के बाद 97 की बात है कि मैं इतनी खर्चा कर रहा हूं, इतनी चीजें सीख करके आ रहा हूं, अगर ये सब मेरे साथ हैं तो कोई फायदा नहीं है, क्यों नहीं हम इसको सब लोगों में बांटे,
1: जी हाँ लोगों तक पहुंचाएं उसको।
0: लोगों तक पहुंचाए। पहला मोटो था तो जो कंसल्टेंट काम कर रहे हैं उनकी जानकारी बढ़नी चाहिए,
1: बिल्कुल
0: आखिर ऐसा क्यों।
1: हाँ।
0: इसका भी एक इंसिडेंट हुआ था, मैं गया था एक मसूरी एक प्रोजेक्ट करने, तो मसूरी प्रोजेक्ट कर रहा था, जिस होटल में रुका था उसी होटल की मुझे वास्तु करनी थी,
1: हाँ
0: और वहां जो उनका जीएम था उसने बताया साहब वो सामने जो सज्जन बैठे हैं वो भी वास्तु कंसल्टेंट हैं।
1: अच्छा
0: तो मैं उनके बड़ा क्यूरियस था, मैं उनके पास मिलने गया,
1: हाँ
0: हमने 1.5 घंटे बात करी आपस में, पर उन्होंने एक बार, मैंने उनको 4 बार बोला कि मैं वास्तु कंसल्टेंट हूं, पर उन्होंने एक बार भी नहीं बोला मैं वास्तु कंसल्टेंट हूं, तो बड़े हेजिटेट कर रहे थे अपने आप को बताने में।
1: हाँ
0: तो
1: हाँ
0: मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हम लोगों को आपस में मिलना चाहिए और हमें शर्माने की इसमें कोई बात नहीं है। तो इन 1998 में हमने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी वास्तु पनोरमा,
1: अच्छा
0: और उसमें हिंदुस्तान के जितने वास्तु कंसल्टेंट थे
1: हाँ
0: कोशिश करके मैक्सिमम लोगों को बुलाया गया,
1: हाँ
0: और उसमें जो वर्ल्ड वाइड इस कार्य पर रिसर्च हो रही है उसको उसमें दिखाया गया। उसके बाद लोग जुड़ते चले गए, कारवा बनता चला गया। तो
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: फिर 2001 में क्या हो रहा था कि पर्यावरण की बहुत सारी चीजें अभी भी हम लोगों से छुपी हुई थी,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: वो समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटेशन हम कर रहे थे
1: हाँ
0: 94 से ऑनवर्ड हम रेगुलर इंस्ट्रूमेंटेशन कर रहे थे, पर कुछ चीजें थी शरीर पे जो प्रभाव डाल रही हैं उसको हम कैसे देख सकते हैं।
1: अच्छा
0: तो मालूम पड़ा कि कर्लिन फोटोग्राफी होती है, ऑल दो मैंने पहला कैमरा 93 में कनाडा से मंगाया था, ये
1: अच्छा
0: कर्लिन फोटोग्राफी
1: क्या
0: का,
1: विशेषता है इस कैमरे की।
0: ये हमारे शरीर के चारों तरफ एक ओरा होता है,
1: हाँ
0: ये ओरा की फोटोग्राफी करता है।
1: अच्छा
0: तो ओरा अपने को कंप्यूटर स्क्रीन पे देखने लगता है कि आपके ओरा में क्या है और कहाँ पे नेगेटिव पैचेस है और कहाँ पॉजिटिव पैचेस है,
1: अच्छा
0: तो वो ओरा फोटोग्राफी कहलाती है।
1: हाँ
0: तो
1: हाँ
0: उसकी ट्रेनिंग लेने में फिर रशिया गया,
1: अच्छा
0: सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी है, उनके वाइस चांसलर डॉक्टर करतको हैं, उन्होंने ये ऑर्गेनाइज करी थी और उन्होंने काफी इस पे काम किया हुआ था, और उन्होंने काफी डेवलप्ड स्टेज पे इस कैमरे को बनाया, जिसको उन्होंने नाम दिया था जीडीवी, गेज डिस्चार्ज विजुलाइजेशन। उसकी ट्रेनिंग ली, वो इंस्ट्रूमेंट लेकर के मैं खरीद के यहाँ आया, उससे काफी माइक्रो लेवल पे वी कैन फाइंड आउट कि
1: हाँ
0: पर्यावरण में आपके, मानिए फॉर एग्जाम्पल साउथ ईस्ट कॉर्नर में कोई प्रॉब्लम है तो
1: हाँ
0: हमारे शरीर के पाओ के किस पोर्शन में प्रॉब्लम आएगी, यहां तक, या इसको वाइस वर्सा कह लेते हैं कि हमारे अगर साउथ पाओ के पर्टिकुलर पोर्शन में प्रॉब्लम है तो हमें यह मालूम पड़ जाता था कि घर के साउथ ईस्ट को हमें बैलेंस करना है, उसकी ऊर्जा संतुलन करनी पड़ेगी।
1: जी
0: तो यहां पर वो ट्रेनिंग लेकर के आए, पर
1: हाँ हाँ
0: इन सब ट्रेनिंग को धीरे धीरे अपने जो कॉन्फ्रेंसेस करना चालू करी 4 साल के अंतराल में, हर 4 साल के वास्तु पनोरमा में 2000 में करी, 2004 में करी, 2008 में करी, 12 में करी, तो उसमें अलग अलग एक्सपर्ट्स बुला करके आज ये सबसे अच्छी बात है कि हिंदुस्तान के कम से कम 300 से 400 वास्तु कंसल्टेंट मैं सोचता हूँ,

0: जो कि काफी कुछ टेक्निकल जानते हैं।
1: हाँ
0: मोर देन 35 वास्तु कंसल्टेंट ऐसे हैं जो कि टेक्निकली बहुत अच्छे साउंड हैं अक्रॉस द इंडिया।
1: पंकज जी, इस सारे कार्यकाल में और आपकी वास्तु विशेषज्ञता को ध्यान में रखते हुए, आपकी संरचना इंजीनियर की विशेषज्ञता को ध्यान रखते, कोई ऐसा वाकया बताएं जो बड़ा रोचक हो और वास्तु से जुड़ा हुआ हो, इस तरह का कोई ध्यान आ रहा हो आपको?
0: मैं एक प्रोजेक्ट देखने गया था,
1: हाँ
0: बहुत पुरानी बात है वो भी।
1: हाँ
0: वो उसमें पहले एक्चुअली एक वास्तु कंसल्टेंट गए थे, ये भी 97-98 की बात होगी।
1: हाँ
0: और उन्होंने कहा है वास्तु से ये ख़राब है और इसको आपको तोड़ दीजिए,
1: हाँ
0: और वो उनको तकलीफ़ हो रही थी, तो उन्होंने बोला एक सेकेंड ओपिनियन ले ले,
1: हाँ
0: मुझे
1: हाँ
0: देखने बुलाया।
1: हाँ
0: बींग एन स्ट्रक्चरल इंजीनियर मैंने कहा अगर आपने ये कॉलम हटा दिया तो ये
1: हाँ
0: जो आपकी 4 मंजिल की बिल्डिंग ऊपर से नीचे आ जाएगी बिल्कुल,
1: हाँ
0: आप
1: हाँ
0: हटाओगे कैसे?
1: हाँ हाँ
0: मैं आपसे एग्री कर रहा हूं कि यहां पर ये गलत बना हुआ है,
1: हाँ
0: पर देर इज सॉल्यूशंस।
1: हाँ
0: अगर ये गलत बना हुआ है, आपकी आज बिल्डिंग 30 फीट बाय 80 फीट की है,
1: हाँ
0: मैं उस बिल्डिंग को 20 फीट और बढ़ा देता हूं, तो जो ये नॉर्थ ईस्ट के अंदर ये सब पोर्शन आ रहा है वो सेंट्र ईस्ट में हो जाएगा। तो दैट वॉज मोर कंफर्टेबल, मैं उस बिल्डिंग को तोड़ करके अलग कर दूं और
1: हाँ
0: बिल्डिंग पूरी गिरा दूं मैं नीचे,
1: हाँ
0: कल
1: हाँ
0: को किसी तरह का एक्सीडेंट हो जाए।
1: जी
0: और ही वॉज सो हैप्पी क्योंकि उनके पास लैंड तो बहुत थी,
1: हाँ
0: उन्होंने 20 फीट की एक एडिशनल स्ट्रिप खड़ी कर दी, 20 बाय 50 का, 1000 फुट एडिशनल कंस्ट्रक्शन कर दिया और
1: हाँ
0: उसकी पूरी वास्तु संरचना बदल गई।
1: हाँ
0: और आज भी ही इज माई क्लाइंट एंड ही इज एंजॉइंग द लाइफ।
1: जी, तो इस तरह के काफ़ी वाकये जो हैं होते हैं, आवश्यक नहीं कि तोड़फोड़ की जाए, और उसको हम कुछ सुधारात्मक कार्य कर सकते हैं उसमें।
0: बिल्कुल, इनको हमारे को आज के युग में 90% तोड़ने की आवश्यकता नहीं रह गई,
1: जी
0: सिर्फ 10% कुछ जगह पे है, अदरवाइज हम उनको सुधार सकते हैं, ऊर्जा संतुलन कर सकते हैं,
1: जी
0: विच विल बी हेल्पफुल इन अ लॉन्ग टर्म।
1: जी। इसके अलावा सोलर एनर्जी है, इसमें भी आपका काफ़ी दखल है, और पर्यावरण से वो भी जुड़ी हुई चीज़ है, क्योंकि पर्यावरण की एक ऐसी चीज़ है सोलर एनर्जी जहाँ कम से कम नुकसान होने वाला है, उसके भी कुछ अनुभव हमें बताएं।
0: देखिए पर्यावरण में 5 चीजें, हवा, ऊर्जा मतलब सोलर एनर्जी की आप बात कर रहे हैं,
1: हाँ
0: पेड़ों, वृक्ष,
1: जी
0: वृक्षों के वृक्ष इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ,
1: हाँ हाँ हाँ
0: एंड पृथ्वी तत्व है ही, जल तत्व है ही,
1: जी
0: है ना, जल तत्व हम कैसे रख रहे हैं। तो सोलर ऊर्जा का उपयोग दो तरीके से हम कर सकते हैं, एक तो डायरेक्ट सोलर एनर्जी घर में आए, मतलब अगर आपके जिस घर में सन की रोशनी दिन में आप ये मान के चलिए 6 से 8 घंटे रहती है, धूप रहती है, अंदर घर में आती प्रवेश करती है, वो घर हेल्दी होगा।
1: हाँ अच्छा
0: जिस घर में सूर्य की रोशनी अंदर नहीं प्रवेश करती है या 15 मिनट के लिए आती है तो घर हेल्दी नहीं होगा।
1: जी
0: सूर्य की रोशनी बैक्टीरिया को खत्म कर सकती है। आप जिस सोलर एनर्जी की बात कर रहे हैं, सोलर
1: हाँ
0: ऊर्जा जिसमें कि हम पावर जनरेशन की हम बात कर रहे हैं,
1: हाँ हाँ
0: उसमें
1: हाँ
0: भी मैंने कार्य किया हुआ है,
1: हाँ हाँ
0: नॉट डायरेक्टली फ्रॉम द वास्तु एंगल बट सोलर ऊर्जा के ऊपर काम किया। इसमें फोटो सेल लगाते हैं, फोटो सेल वोल्टिक सेल्स को यूज करते हैं
1: जी
0: और धूप की रोशनी जब उस पर पड़ती है तो बहुत छोटा सा डीसी करंट पैदा होता है। इस
1: हाँ
0: तरह से हम अलग अलग सेल से डीसी करंट को कलेक्ट करते हैं
1: हाँ हाँ
0: और अपने इन्वर्टर पे लाते हैं और उसको
1: जी
0: एसी करंट में कन्वर्ट कर लेते हैं और सीधा ट्रांसमिशन लाइन पे हम डाल देते हैं।
1: जी
0: इसको हम काफी कुछ प्योर करंट बोलते हैं,
1: जी
0: विच इज नॉट हार्मफुल फॉर द ह्यूमन सिस्टम।
1: हाँ हाँ
0: पर देखिए इलेक्ट्रिसिटी तो हार्मफुल है ही, पर उस सूर्य की रोशनी से
1: जी
0: बनने वाली ऊर्जा
1: जी
0: कंपैरेटिवली कम हार्मफुल है बनस्पत की न्यूक्लियर एनर्जी जो बनती है।
1: जी
0: न्यूक्लियर से अगर आप ऊर्जा बनाते हैं तो उस तरह की ऊर्जाओं में कई तरह की प्रॉब्लम आ सकती है
1: जी
0: जीवन में,
1: जी पंकज जी, ये सारी बातें आपके व्यवसाय
0: कि
1: और
0: न्यूक्लियर एनर्जी जो बनती है,
1: जी
0: न्यूक्लियर से अगर आप ऊर्जा बनाते हैं तो उस तरह की ऊर्जाओं में कई तरह की प्रॉब्लम आ सकती है
1: जी
0: जीवन में।
1: जी पंकज जी, ये सारी बातें आपके व्यवसाय और कार्यशैली से जुड़ी थीं। अब कुछ अपने व्यक्तिगत जो है बातों को हम लेना चाहते हैं, कि कब आपकी शादी हुई, आपकी जो धर्मपत्नी हैं वो कहाँ से हैं, उनका भी क्या प्रोफेशन है, ये भी हमारे श्रोताओं को बताएं।
0: मेरा विवाह 1984 में हुआ। मेरी पत्नी जो है शी इज एन आर्किटेक्ट, पहले वो MSET में थी पर पिताजी ने बाद में ट्रांसफर करवा लिया VRC नागपुर में,
1: अच्छा
0: रीजनल इंजीनियर का नागपुर से उसने अपनी आर्किटेक्चर का पूरा किया। उसके बाद और मैं तो कहता हूँ जब से शादी हुई तो मेरा भाग्य खुल गया
1: जी
0: क्योंकि पत्नी
1: हाँ
0: जब आती है घर में तो बहुत
1: हाँ
0: सारी चीज़ें लेके आती है और उन्होंने मेरे कदम कदम पे साथ दिया।
1: जी
0: और

0: साथ में आई विल अप्रिशिएट कि अगर मैंने उनसे जीवन में कभी भी कुछ कहा, स्पेशली कभी कोई मेहमान भी आया, रात को 1 बजे मेहमान है, मैंने कहा नहीं भी खाना बना करके उनको खिलाना है,
1: अच्छा
0: मुंह पे शिकन नहीं आई, दैट आई

0: लड़ाई करी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
1: उन्होंने बराबर आपका साथ दिया,
0: बराबर साथ दिया, कदम से कदम मिला करके।
1: हाँ,
0: अगर मैं कई बार गलत रहा हूँ
1: हाँ,
0: तो उन्होंने मुझे गाइड भी करा है।
1: अच्छा,
0: मतलब उसने पत्नी का रोल अपनी जगह निभाया है।
1: हाँ,
0: और कई बार वो माँ बन करके भी गाइड कर लेती है
1: जी,
0: कि भाई ये देखिए ये आप गलत कर रहे हैं और ये इसको इस तरह से किया जाना चाहिए
1: जी, बिल्कुल।
0: और आई टेक इट वेरी सीरियसली एंड आई इम्प्लीमेंट इट।
1: वो आपके व्यवसाय में भी काफी हाथ बटाती हैं।
0: हाँ, वो तो मैंने कहा ना, वो तो बिल्कुल अर्धांगनी, पूर्ण तरह से अर्धांगनी है।
1: हाँ, हाँ.
0: व्यवसाय में शी रेगुलरली कम्स टू द ऑफिस। और पहले तो शी वॉज प्रैक्टिसिंग एन आर्किटेक्ट ओनली
1: जी,
0: बट धीरे धीरे वास्तु विज्ञान पे जो हम लोग काम कर रहे थे, वास्तु इज सच अ बिग सब्जेक्ट, एक जना कुछ भी नहीं कर सकता
1: जी,
0: वी नीड अ टीम। और टीम का शी वॉज एक इम्पॉर्टेंट मेंबर थे
1: जी।
0: इन्होंने बिल्डिंग मटेरियल पे जो भी उनके रेडिएशंस किस तरह से मनुष्य के जीवन पे प्रभाव डालते हैं उसके ऊपर कार्य किया है।
1: अच्छा,
0: देन मैं एक बात कहने में मेरे को शायद प्रैक्टिकली फील्ड का अनुभव ज्यादा होगा।
1: हाँ,
0: पर थ्योरेटिकली अनुभव की बात करें तो उन्होंने इतनी किताबें पढ़ी, इतनी रिसर्च करी है कि शी गॉट ए वाइड एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ वास्तु साइंसेस, अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर के वास्तु के ऊपर तो अध्ययन उन्होंने बहुत किया। उन्हें पेंटिंग का बहुत शौक है।
1: अच्छा।
0: और वो 3D म्यूरल्स बनाती हैं।
1: बहुत अच्छा,
0: तो मतलब इमेजिनेशन पावर भी उनका स्ट्रांग हो गया।
1: हाँ हाँ,
0: क्योंकि देखिए आप क्या करते हैं बैकग्राउंड में, उसका इम्पैक्ट कहाँ कैसे पड़ने वाला है।
1: हाँ,
0: आप जब पेंटिंग करते हैं, म्यूरल्स बनाते हैं।
1: हाँ,
0: जब हम घर बनाने वाले थे अपना, तो उन्होंने पहले से प्लान कर लिया था घर में फलानी जगह ये पेंटिंग लगानी है तो मैं खुद पेंटिंग बनाऊंगी। तो उन्होंने अपनी 5-6-8 पेंटिंग्स जो बनाई हैं आज घर में वही लगी हैं
1: जी।
0: हमें बाजार से कोई भी पेंटिंग खरीद के लाके नहीं लगाई है।
1: अच्छा,
0: तो पेंटिंग का बड़ा शौक रहा उन्हें। बाकी तो जीवन का आनंद है, माताजी पिताजी का आशीर्वाद है, आज भी हम उनके साथ ही रहते हैं
1: जी,
0: तो उनका आशीर्वाद बना ही हुआ है।
1: बिल्कुल,
0: और ईश्वर की कृपा से बच्चे भी दोनों बहुत अच्छे हैं।
1: हाँ हाँ
0: उनका भी साथ हमारे को मिलता रहता है।
1: जी,
0: आज के युग को देखते हुए इतने अच्छे बच्चे मिलना मुश्किल है
1: जी। पंकज जी, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आगे भी आपके व्यवसाय तरक्की करेगा और लोगों का भी आप भला करते रहेंगे, समाज का भी भला करते रहेंगे। आपसे बहुत सारी बातें की हमारे इस अंतरंग बातचीत के क्रम में, आपकी अंतरंग बातें जानने का हमारे श्रोताओं को मौका मिला। आप आकाशवाणी के स्टूडियो जाए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद साहब, नमस्कार।
1: श्रोताओं को मौका मिला, आप आकाशवाणी के स्टूडियो जाए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद साहब, नमस्कार, थैंक यू।
2: अंतरंग बातचीत के क्रम में आप सुन रही थी डॉक्टर पंकज अग्रवाल से ब्रह्म प्रकाश चतुर्वेदी की बातचीत। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का इंदौर केंद्र मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर। इसके अलावा आप हमारे केंद्र को सुन रही हैं प्रसार भारती न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर। सुबह के 9 बजे हैं, वक्त है लोक संगीत का। लोक संगीत में आज हम आपको सुनवा रहे हैं विंध्यवासिनी देवी के स्वर में गाए भोजपुरी लोकगीत।

आप सुन रहे हैं विंध्यवासिनी देवी के स्वर में गाए भोजपुरी लोकगीत। इनके ही स्वर में अब हम आपको सुनवाते हैं ये विवाह गीत।

श्रोताओं, लोक संगीत में आप सुन रहे हैं विंध्यवासिनी देवी के स्वर में गाए भोजपुरी लोकगीत। इनके ही स्वर में आखिर में हम आपको सुनवाते हैं ये श्रृंगार गीत।

0: लोक संगीत में भी आप सुन रही थी विंध्यवासिनी देवी के स्वर में गाए भोजपुरी लोकगीत।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का इंदौर केंद्र मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर। इसके अलावा आप हमारे केंद्र को सुन रहे हैं प्रसार भारती न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर। वक्त है सुगम संगीत का। सुगम संगीत में आज के हमारे कलाकार हैं लियाकत हुसैन। इनके स्वर में आइए सुनते हैं गजलें। पहले सुनिए मुनीर नियाजी की लिखी ये गजल।

श्रोताओं, सुगम संगीत में आप सुन रहे हैं लियाकत हुसैन के स्वर में गाई गजलें, और अब इनके ही स्वर में हम आपको सुनवाते हैं हसरत जयपुरी की लिखी ये रचना।

सुगम संगीत में अभी आप सुन रही थी लियाकत हुसैन के स्वर में गाई गजलें। हम आपको बता दें, इनके ही स्वर में गाई कुछ और गजलें आप सुन सकते हैं आज शाम 6:30 पर। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। शास्त्रीय संगीत में आइए सुनते हैं हरि राय गोस्वामी जी महाराज का एकल पखावज वादन, ताल है रुद्रताल।

धागे तरकट तक तक न धागे तिट धटता तरकट तक तक न टकरान धागे तक धेता आंधा न टकरान धागे तक धेता आंधा न टकरान धागे तक धेता आंधा धागे तरकट तक तक न धागे तिट धटता तरकट तक तक न टकरान धागे तक धेता आंधा न टकरान धागे तक धेता आंधा न टकरान धागे तक धेता आंधा धागे तरकट तक तक न धागे तिट धटता तरकट तक तक न टकरान धागे तक धेता आंधा न टकरान धागे तक धेता आंधा।

Then I get the nana.

शास्त्रीय संगीत में अभी आप सुन रहे थे हरिराय गोस्वामी जी महाराज का एकल पखावज वादन, ताल था रुद्रताल। इसी के साथ आज का शास्त्रीय संगीत अब संपन्न होता है। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 10 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में अगला प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित होगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए देवास जिले की चिट्ठी, आलेख नितिन गुप्ता का और वाचक स्वर अभिषेक कटियार का।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है देवास जिले की चिट्ठी, आलेख नितिन गुप्ता का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। मालवा की पहचान उसकी ठंडी हवाओं और सामान्य मौसम से रही है, लेकिन इस बार देवास के निवासियों ने बीता पखवाड़ा झुलसाती गर्मी, आंधी और तूफान के बीच आसमान की तरफ टकटकी लगाए ही बिताया था। लेकिन आखिरकार मानसून की आमद ने अब लोगों के चेहरों पर मुस्कान बिखेर दी है। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में बारिश का रुख अलग अलग रहा है। अब तक देवास में कुल 303 मिलीमीटर, वहीं टोंक खुर्द में 433, सोनकक्ष और हाट पिपलिया में 476 और 482 तथा बागली में 435 और उदयनगर में 445 तथा खातेगांव में सबसे अधिक 762 मिलीमीटर औसत बारिश रिकॉर्ड की गई है। इस वर्ष जिले में लगभग 4,20,000 हेक्टेयर भूमि पर खरीफ फसलों की बोवनी का लक्ष्य रखा गया है। भारी बारिश की संभावनाओं को देखते हुए जिला प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। खातेगांव, कन्नौद और बागली जैसे क्षेत्रों में हर साल नर्मदा, क्षिप्रा, बागदी और काली सिंध तथा लोदरी जैसी नदियों में उफान आने से बाढ़ की स्थिति निर्मित होती है। इस आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रभावित इलाकों में बाकायदा कंट्रोल रूम स्थापित कर बचाव दलों को तैनात कर दिया गया है। श्रोताओं, आने वाले वर्षों में मालवा क्षेत्र में संभावित पेयजल संकट को भांपते हुए देवास जिले में एक अनूठा अमृत संचय अभियान चलाया जा रहा है। वर्षा जल को सहेजने के इस अभियान के तहत घरों की छतों पर रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए जा रहे हैं, ताकि बारिश का पानी पाइप के जरिए सीधे धरती के गर्भ में उतारा जा सके। ये अभियान हमारे कल को सुरक्षित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। स्वास्थ्य के मोर्चे की अगर बात करें तो इन दिनों जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 31 जुलाई 2026 तक डेंगू निरोधक माह मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत लोगों को जागरूक करने के लिए स्वास्थ्यकर्मी घर घर जाकर समझा रहे हैं कि डेंगू के मच्छर घरों के अंडरग्राउंड वाटर टैंक और टायरों के जमा पानी में ज्यादा पनपते हैं, इसलिए इनकी नियमित सफाई बेहद जरूरी है। वहीं दूसरी ओर पशुपालकों की समृद्धि के लिए पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तीसरे चरण

विभागीय अमला उन पशुपालकों के घर घर पहुंच रहा है जिनके पास 3 से 4 गोवंश या भैंस वंश हैं। अधिकारी उन्हें नस्ल सुधार, पशु पोषण, टीकाकरण और सॉर्टेड सीमेन जैसी आधुनिक तकनीकों के प्रति जागरूक कर रहे हैं। जिले में पल्स पोलियो अभियान भी पूरी तरह सफलता के साथ संचालित किया जा रहा है, जिसमें अब तक 1800 बूथों के माध्यम से 1,84,645 बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की पिलाई गई है। ग्रामीण विकास को नई गति देने के लिए केंद्र सरकार की नई योजना विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण का शुभारंभ देवास की ग्राम पंचायत अगेरा में बीते दिनों एक भव्य जन सम्मेलन के माध्यम से किया गया, जहां ग्रामीणों को उनके अधिकारों और योजना के तकनीकी पहलुओं की जानकारी दी गई। इसी प्रकार खेत बचाओ अभियान के तहत पालनगर और नागदा ग्राम पंचायतों में कृषक संगोष्ठियों का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती अपनाने, संतुलित उर्वरक उपयोग और कीट व्याधियों से फसलों को बचाने के गुर सिखाए गए। सामाजिक सरोकारों की अगर बात करें तो देवास जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा श्रवण एवं वाक बाधित भाई बहनों के लिए प्रदेशव्यापी आउटरीच कार्यक्रम के तहत अनुगूंज कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उन्हें उनके कानूनी अधिकारों और शासकीय कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विशेषज्ञों द्वारा सांकेतिक भाषा व अन्य माध्यमों से जागरूक किया गया। पिछले दिनों उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत एवं कला अकादमी द्वारा आयोजित 2 दिवसीय पंडित कुमार गंधर्व स्मृति संगीत समारोह में सुरों की अनूठी महफिल सजी। समारोह में पुणे की सानिया पाटणकर, इंदौर की पूर्वी निमगांवकर, दिल्ली के अविनाश कुमार के शास्त्रीय गायन और अतुल उपाध्याय व पंडित विवेक सोनार की वायलिन बांसुरी की जुगलबंदी ने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। चलते चलते आपको बता दें कि देवास में समान नागरिक संहिता के संबंध में गठित उच्च स्तरीय समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक भी सम्पन्न हुई। वहीं ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में देवास प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना के तहत एक मिसाल बन रहा है। जिले के 3,756 घरों की छतों पर सौर ऊर्जा पैनल जगमगा रहे हैं, जिससे उपभोक्ताओं की बिजली खपत में कुल 10 लाख यूनिट की कमी आई है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत 42 किसानों को सोलर प्लांट लगाने के लिए PPA जारी किए गए हैं, जिससे आने वाले समय में 73.5 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होगा। तो श्रोताओं, ये थी देवास जिले की हलचल समेटे आज की जिले की चिट्ठी। अगले अंक में किसी और जिले की जानकारियों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे देवास जिले की चिट्ठी। आलेख नितिन गुप्ता का था और वाचक स्वर था अभिषेक कटियार का। यह आकाशवाणी भोपाल है।
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर और न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर हम आकाशवाणी के इंदौर मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर और न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है श्रोताओं के पसंद के फरमाइशी फिल्मी गीतों का लाइव फोन इन प्रोग्राम MH हॉटलाइन।
2: हेलो MH हॉटलाइन।
1: स्वागत है सभी श्रोताओं का MH हॉटलाइन प्रोग्राम में। स्वीकारें आपके रेडियो दोस्त योगेंद्र पांडे का नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले हम आपको बता दें हमारे वे श्रोता जिनकी फरमाइश पहले कुछ कार्यक्रमों में पूरी हो चुकी है वह कम से कम 2 महीने के बाद ही पुनः कॉल करें क्योंकि इस कार्यक्रम की

0: हेलो एमएच हॉटलाइन।
1: हेलो सर, नमस्कार।
0: नमस्कार
1: जी। ग्राम हीरापुर, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ सर, और आज आपसे हमारी पहली बार बात हो रही है सर।
0: जी भगवान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। और सबसे पहले अपनी पसंद का गीत बताएं।
1: सर फिल्म का नाम है खुद्दार और गाने के बोल है तुम सा कोई प्यारा मासूम नहीं है।
0: बिल्कुल, तो बताइए भगवान जी क्या करते हैं आप?
1: सर हम खेती किसानी करते

0: हेलो एमएच हॉटलाइन।
1: हेलो, हाँ नमस्कार
0: नमस्कार।
1: हाँ, राजाराम नगर देवास से राजू अग्रवाल बोलता हूँ सर।
0: राजू अग्रवाल जी, सबसे पहले अपनी पसंद का गीत बताइए।
1: गीत है साहब ये, आज असद भोपाली जो महान गीतकार है उनका जन्मदिन है, तो फ्री लव पिक्चर का गीत है, आंखों ने मोहब्बत में बड़ा काम किया है, और मयंक कपूर जी की आवाज में, और आज ही परवीन सुल्ताना जी का भी जन्मदिन है, उनको भी हम शुभकामना देते हैं, उनको भोपाली असद भोपाली साहब को नमन करते हैं सभी श्रोताओं की ओर से।
0: और साथ में हम आपसे एक निवेदन और करेंगे, आप हमारे नियमित श्रोता हैं, आपको जानकारी भी है, जब भी फोन पे बात करते हैं तो रेडियो सेट को थोड़ा सा दूर रखना है, क्योंकि उसमें जो है, हाँ जी
1: बंद कर दिया, दो ही रेडियो बंद है साहब।
0: और आपकी पसंद का गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं, सुनिए आपके रेडियो सेट पर।
1: धन्यवाद।

0: हेलो एम एच हॉटलाइन।
1: नमस्कार योगेंद्र जी।
0: नमस्कार जी,
1: मैं विवेक व्यास बोल रहा हूँ, डॉक्टर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी डोंगरगांव मऊ से।
0: व्यास जी, थोड़ा सा नेटवर्क की समस्या आ रही है आपके उधर, आवाज कट कट के आ रही है। आपकी पसंद का गीत बताएं।
1: आप मुझे आज सर, ये आसन गोपाल जी का जन्मदिन है
0: जी जी,
1: तो इनकी याद में मुझे सुनना है। पारसमणि है फिल्म का नाम और गाने के बोल है, वो जब याद आए बहुत याद आए।
0: बिल्कुल, ये गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं, सुनिए
1: जी। धन्यवाद।

0: हेलो एम एच हॉटलाइन
1: जी योगेन जी नमस्कार।
0: नमस्कार
1: जी मैं अरविंद अग्रवाल।
0: हाँ अरविंद जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: जी श्रीनगर जिला महोबा।
0: श्रीनगर जिला महोबा। सबसे पहले अपनी पसंद का गीत बताएं।
1: जी फिल्म का नाम रहेगा ईश्वर।
0: हाँ जी
1: गीत है आगे सुख तो पीछे दुख है, पीछे दुख तो
0: बिल्कुल। बताइए अरविंद जी क्या करते हैं आप?
1: जी मेरी किराने की दुकान है।
0: बिल्कुल। और रेडियो नियमित मतलब किराने की दुकान में चलता होगा।
1: जी
0: अच्छा, कौन से केंद्र के कार्यक्रम ज़्यादा सुनते हैं आप?
1: इससे भी ये फोन इन लाइव आता है।
0: अच्छा, लाइव फोन इन का शौक है आपको।
1: जी
0: तो अभी लाइव फोन इन जो है वो आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से चल रहा है, तो अभी आपका फोन भी लग गया और पसंद का गीत भी बजने वाला है।
1: जी इसमें तो लग जाता है।
0: हम आपकी पसंद का गीत आप तक पहुंचा रहे हैं, सुनिए।
1: धन्यवाद।
2: तार सब तक, मंदिर सब तक।

0: चलती पाहम रेना।
1: कश्मीर से आपने क्या बताया, कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: कश्मीर सोनमर्ग।
1: अच्छा, आपका शुभ नाम बताइए।
0: लतीफ अहमद रीना।
1: लतीफ जी।
0: हाँ जी।
1: लतीफ जी, अभी पूरे देश में तो मानसून का प्रभाव है, तो कश्मीर में अभी मौसम का कैसा है, हालात है या कैसा मौसम है, थोड़ा सा बताएंगे?
0: सर यहाँ पे ऐसा गर्मी नहीं है, लगभग 2 महीने ऐसा गर्मी रहेगा, 40 से 45 डिग्री इतना गर्मी रहता है यहाँ पे। कभी
1: अच्छा,
0: कभी बारिश, कभी मौसम ठीक रहता है।
1: कभी बारिश होती, कभी मौसम ठीक रहता है।
0: हाँ,
1: अपनी
0: यहाँ
1: पसंद
0: पे
1: का
0: अभी
1: गीत बताएं।
0: बरसात का सीजन चलता है। भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए आते हैं बहुत पर्यटक यहाँ पे यात्रा।
1: बिल्कुल, हम आपसे बात करेंगे, सबसे पहले अपनी पसंद का गीत बताइए।
0: मुझे गाना सुनाए पता ना होगा, तू मुझे कबूल मैं तुझे कबूल।
1: खुदा गवाह फिल्म का तू मुझे कबूल।
0: हाँ,
1: जी बताइए। अब
0: अब यहाँ अमरनाथ का सीजन चलता है,
1: हम आपसे अनुरोध
0: लोग
1: करेंगे कि
0: ज्यादा।
1: आपका जो रेडियो सेट है उसको से थोड़ा या तो दूर हो जाएं या उसको बंद कर दें, ताकि हम आपकी आवाज़ सही तरीके से सुन पाएंगे। लतीफ
0: यहाँ
1: जी,
0: पे आज अमरनाथ सीजन
1: लतीफ जी, आवाज़
0: चल रहे
1: आपकी
0: हैं।
1: कम आ रही है।
0: हाँ सर,
1: जी बताइए।
0: यहाँ पे अमरनाथ चल रहे हैं ना अभी, ये बहुत सारे यात्रा दर्शन करने के लिए आते हैं हमारे
1: अमरनाथ के
0: जाने
1: लिए।
0: माने।
1: हाँ,
0: हाँ, यहाँ पे हाँ
1: तो वो जो जत्था है वो वहां से अभी निकल गया आपके उधर से?
0: वो तो निकल चुका है, सुबह
1: अच्छा,
0: 6 बजे 6 बजे निकलते हैं
1: सुबह 6 बजे
0: से। सुबह
1: प्रतिदिन या एक कितनी संख्या में निकलता है?
0: निकलता है 6 बजे से लेके कभी वो पहुंचता है गुफा तक लगभग 11.5-12 बजे दिन में।
1: और बताइए लतीफ जी, आप क्या करते हैं?
0: बस मैं अपनी खेती बाड़ी करता हूँ और कुछ
1: जी,
0: नहीं।
1: आपकी आवाज़ कम आ रही, फिर से बताएं।
0: खेती बाड़ी करता हूँ सर।
1: खेती करते हैं, तो अभी कौन सी खेती
0: हाँ,
1: आपने वहाँ पर करी हुई है इस समय?
0: यहाँ मक्का और दाल।
1: बिल्कुल, हम आपका गीत जो है वो तैयार है और हम पहुँचा रहे हैं आप तक, सुनिए।
0: और मेरे साथ लोकेंद्र वर्मा,
1: जी
0: लोकेंद्र वर्मा नाना खेड़ बच्चे जन। हाँ,
1: जी जी बिल्कुल,
0: वो मेरे साथ। हाँ
1: आपके मित्र हैं, तो
0: हाँ
1: आप सुनिए और उनको भी अपनी पसंद का गीत सुनवाइए, हम आप तक पहुंचा रहे हैं
0: ठीक
1: गीत।
0: है।

0: ग्राम सुराना जिला रतलाम से बोल रहा हूँ, शेख हैदर खान।
1: हैदर खान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में, और अपनी पसंद का पहले गीत बताएं।
0: एक सपेरा एक लुटेरा फिल्मों का गीत है रफ्ती साहब की आवाज में, हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के।
1: तो मतलब जुदाई होनी क्यों, मैं तो बोलता हूँ हमेशा साथ बना रहे।
0: रफ्ती साहब की पुण्यतिथि भी आ रही है
1: जी जी,
0: मतलब 20-21 दिन बाद।
1: हाँ हाँ,
0: तो ये गाना क्या है, बहुत तो कम बजता है रेडियो पे, उषा खन्ना का संगीत है इसमें। सावंत कुमार के गीत है, तो मैंने कहा चलो आज यही सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल, और 21 दिन पहले से आपने याद कर लिया। क्या बात है। बिल्कुल, उंगलियों पर तारीख है।
0: हाँ, तारीख तो सर बहुत पुराने सोचता है, 1980 में जब मतलब रफी साहब की डेथ हुई थी।
1: जी जी,
0: जब भी से याद है रफी साहब की पुण्यतिथि याद कर लेते हैं हर साल।
1: बिल्कुल,
0: हाँ 46वीं पुण्यतिथि है उनकी।
1: बहुत समय हो गया।
0: हाँ,
1: तो आपकी पसंद का गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं, सुनिए।
0: ओके, थैंक यू, है ना।

0: हेलो एम एच हॉटलाइन।
1: जी सर,
0: हाँ जी,
1: जी सर,
0: अपना परिचय बताएं।
1: एमपी सागर से बोल रहा है सर, अपन मध्य प्रदेश।
0: हाँ जी,
1: जी सर,
0: आपका शुभ नाम?
1: हमारा शुभ नाम है

0: अनंतराम अहिरवार, ग्राम सेवन पोस्ट।
1: अनंतराम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका MH हॉटलाइन प्रोग्राम में। और सबसे पहले अपनी पसंद का गीत बताएं।
0: मोहरा फिल्म का गाना सुनना था।
1: मोहरा फिल्म का कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
0: टिप टिप बरसा पानी, पानी में आग लगाई।
1: और ये गीत ऐसा है कि जब जब बारिश होगी, और ये गीत जरूर मतलब रेडियो पे तो बजता ही है, रेडियो गीत भी इसको बोल सकते हैं, और साथ में ये गीत कभी भी सुनते हैं तो पुराना जैसा लगता ही नहीं है जब से सुनते आए हैं। और गीत के जो गाया है उदित नारायण ने और अलका याग्निक ने, वो निभाया भी बहुत अच्छे से है उसको।
0: हाँ सर।
1: अनंत राम जी, क्या करते हैं आप?
0: सर हम इंदौर में जॉब करते हैं।
1: अच्छा, इंदौर में क्या कार्य होता है आपका?
0: अपन दवाई फैक्ट्री में काम करते हैं सर।
1: हाँ जी, तो क्या समय रहता है ऑफिस जाने का?
0: अपना 9 से 5 है सर।
1: 9 से 5, तो आप मार्केटिंग करते हैं या फिर शॉप पे रहते हैं?
0: नहीं नहीं नहीं सर, अपन इंजेक्शन मशीन है ना, अपन इंजेक्शन भरते हैं। पूरा मेडिकोज का काम कर लेते सर।
1: जी जी, तो आपका गीत जो है, आपकी पसंद का गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं,

0: हेलो एम एच हॉटलाइन।
1: हाँ नमस्कार सर, मैं राजकोमी चौराहे से महेश रायकवार बोल रहे हैं। सर
0: महेश रायकवार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। और सबसे पहले अपनी पसंद का गीत बताइए।
1: सर धन्यवाद आपको। सर सरगम फिल्म का गाना सुना दीजिए।
0: कौन सा गीत बोल बताएं?
1: डपली वाले डपली वाला।
0: बिल्कुल बताइए महेश जी, क्या करते हैं आप?
1: मैं सर अपने गुजराती गेस्ट हाउस में हूँ। सर
0: जी
1: गुजराती गेस्ट हाउस है सर अपना।
0: गेस्ट हाउस
1: जी जी।
0: तो उसमें आप कुछ कार्य देखते हैं या अपना खुद
1: जी
0: का?
1: जी मैंने काम करता हूँ सर।
0: अच्छा
1: सर्विस करता हूँ।
0: और इसके अलावा परिवार में कौन?

0: कौन है आपके?
1: परिवार में सर मैं हूँ, मेरी मिसेज है, एक बहू है, दो पोतियां हैं।
0: और रेडियो आप आकाशवाणी इंदौर ही सुनते हैं या इसके अलावा भी सुनते हैं?
1: सर आकाशवाणी और अपने विजय भारती दोनों सुनता हूँ सर।
0: दोनों
1: जी
0: सुनते हैं। और इसमें अभी जो कार्यक्रम प्रसारित होते हैं, इसमें कौन सा कार्यक्रम आपको बहुत पसंद आता है?
1: आपका ये सर वो मन भावन प्रोग्राम है ना सर?
0: हाँ जी, हाँ जी, पत्रों वाला।
1: जी जी जी जी
0: जी,
1: हाँ
0: अगर फरमाइशी कार्यक्रम को कुछ देर के लिए या कुछ थोड़ी देर के लिए ऐसा बोल दे कि इसको छोड़ के अगर बताना है, तो कौन सा वो कार्यक्रम होगा जो आपको अच्छा लगेगा?
1: सर, अबे फिर वो वीर भारती से तो फिर वो अपना सखी सहेली है सर। हाँ जी
0: और आकाशवाणी इंदौर का?
1: आकाशवाणी का अपना यही मन भावन सुनता हूँ सर, वो अपना युवाणी वगैरह।
0: हाँ जी,
1: जी
0: वो हम आपकी पसंद का गीत आप तक पहुंचा रहे हैं, सुनिए।
1: धन्यवाद सर।

0: श्रोताओं, आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से इस समय प्रसारित हो रहा है श्रोताओं की पसंद के फरमाइशी फिल्मी गीतों का सजीव फोन इन कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन। और इस कार्यक्रम से आप भी जुड़कर अपनी पसंद का गीत सुन सकते हैं इन नंबरों पर फोन करके। हमारे फोन नंबर है 2710223 और 2710224। इंदौर का एसटीडी कोड है 0731। लेते हैं अभी अगला फोन कॉल। हेलो एमएच हॉटलाइन।
1: जी भैया नमस्कार।
0: नमस्कार
1: जी, हम योगेश जांगरे बोल रहे हैं बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
0: योगेश जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आपका जो

0: फोन है आकाशवाणी में, इंदौर में पहली बार लगा है या इसके पहले भी बात हुई?
1: नहीं भैया, मेरा तो इंदौर से पुराना नाता है, लगभग 8-10 साल से जुड़ा हुआ हूँ आपसे। हो सकता है कि थोड़ा सा शुरुआती बात हो रहा
0: जी
1: होगा।
0: जी
1: जी,
0: तो अभी आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: फिल्म अंदाज से सुनना है भैया,
0: हाँ हाँ
1: आएगा मजा अब बरसात का।
0: बिल्कुल, और
1: और
0: बरसात चल भी रही
1: जी
0: है, तो बरसात में
1: जी
0: जब आनंद तो वैसे भी आता ही है जब बरसात में भीगते हैं या बरसात चल रही होती है, बट साथ में
1: जी
0: गीत आ जाए बारिश का तो और भी आनंद बढ़ जाता है, दोगुना हो जाता है।
1: मैं तो कार्यक्रम ही सुन रहा था भैया, तो हमारे एक मित्र श्रीपाल गोयल जी ने कहा कि इंदौर लगाओ, और उनके कहते ही 2-3 बार में फोन कनेक्ट हो गया।
0: बिल्कुल, और कहते हैं ना कि जो एक बार सोचो या एक बार प्रयास करो तो वो पूरा होता है, तो अब फोन भी लग गया और अब आपकी फरमाइश का गीत भी आने वाला है।
1: जी।
0: क्या करते हैं योगेश जी आप?
1: हमारा खेती बाड़ी का मूल काम है भैया, अभी तो धान लगाने का काम कर रहे हैं, बारिश थोड़ा सा ज्यादा हो गया था तो थोड़ा सा 2-3 दिन बाधित हुआ था काम। जी
0: लेकिन चूंकि आप धान के कटोरे वाली जगह पे हैं तो यहाँ तो
1: हाँ,
0: कोई समस्या आने वाली नहीं है, छत्तीसगढ़ जो है धान का कटोरा कहा जाता है, तो
1: अब
0: अच्छी फसल हो
1: ये
0: हमारी यही
1: बात
0: कामना
1: सही
0: है।
1: है भैया, लेकिन
0: जी
1: कई कई बार होता यह है कि जैसे बारिश एकाएक 4-5 दिनों तक हो जाए ना, तो उससे थोड़ा सा काम में बाधा होता है।
0: बिल्कुल, और हम तो यही
1: बाकी
0: कामना करेंगे कि आपकी फसल अच्छी हो और उसके
1: जी
0: साथ साथ में खुशियों के साथ साथ आपकी पसंद का गीत भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, तो आनंद लीजिए।
1: जी जी बहुत

हेलो एम एच हॉटलाइन, हेलो एम एच हॉटलाइन, लगता है हमारे श्रोता से संपर्क टूट गया है और जैसे ही संपर्क होता है हम फिर से उन्हें जोड़ेंगे और उनकी पसंद का गीत भी लेंगे। तब तक आप कीजिए थोड़ा सा इंतज़ार।

0: हेलो एमएच हॉटलाइन।
1: एमएच हॉटलाइन,
0: हाँ जी
1: पांडे जी, नर्मदे हर।
0: नर्मदे हर, और आपकी आवाज़ से ही हम पहचान सकते हैं, कवर कॉलोनी बढ़वा से प्रवीण जी शिमाली बात कर रहे हैं।
1: बिल्कुल पांडे जी, ठीक पहचाना आपने।
0: कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है सर। और मैं एक सर एक निवेदन करना चाहता हूँ एमएच हॉटलाइन के माध्यम से।
0: जी जी,
1: जिन श्रोताओं के फोन लग चुके हैं, और मैंने देखा है मैंने कि कतिपय श्रोता डेली फोन लगाते हैं
0: जी जी,
1: और जबकि आपके यहाँ से निर्देशित किया जाता है कि 2 महीने में कॉल किया करें, तो उसका पालन नहीं करते हैं
0: जी।
1: तो मेरा इस कार्यक्रम के माध्यम से पुनः सभी से निवेदन है कि वो इसका पालन करें, 1-2 महीने में करने के बाद कॉल करें तो सभी श्रोताओं को मौका मिलेगा।
0: बिल्कुल, और हमारी ओर से हम सभी श्रोताओं से बिल्कुल यही बात बार बार दोहराते हैं और अभी भी कहना चाहेंगे, कम से कम 2 माह का इंतज़ार करें। इसमें कोई बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है, इस कार्यक्रम की रोचकता आप लोगों के फ़ोन कॉल से ही है
1: सर।
0: जी, इस कार्यक्रम की जो रोचकता है वो आप लोगों के फ़ोन कॉल से ही है, और नए श्रोता इस कार्यक्रम से जब जुड़ते हैं और उनके नए अनुभव हमारे साथ जुड़ते हैं तो इस कार्यक्रम में 4 चांद लगते हैं, और वही अगर बार बार रिपीटेड
1: जी। अब वो क्या डेली की डेली वही रिपीटेशन होते हैं तो वो सुन सुन के बोर हो जाते हैं।
0: बिल्कुल, और बताइए कैसी चल रही है माँ नर्मदा की सेवा?
1: बढ़िया चल रही सर
0: जी।
1: अभी पानी सब बिल्कुल स्थिर है, और बिल्कुल पानी अभी गिर भी रहा हो तो नर्मदा जी का जल स्तर भी अच्छा है
0: जी जी।
1: हम तो हमारा जैसा मौका मिलता है हम नर्मदा जी जाते हैं और आप देखते हो।
0: तो इस सीजन में अभी माँ नर्मदा का भी रौद्र रूप देखने में कितनी बार मिला बारिश के सीजन में?
1: अभी तो वैसे सर हर साल ही होता है
0: जी,
1: हर साल ही होता है रुद्र। तो आसपास के जो आश्रम भी बने हुए हैं वहाँ भी हम सतर्कता रखते हैं कि कोई किसी प्रकार की जनहानि नहीं हो
0: जी,
1: तो सभी को पहले सूचित कर दिया जाता है। वैसी सूचना वहाँ से आती है ऊपर से, सबको सूचित कर दिया जाता है कि घाटों पे भी सबको बोल दिया जाएगा आपकी दुकान है, नाव है, आप अपने स्थल पे ऊपर ले जाए उसको
0: जी जी। आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे
1: पांडे जी? मुझे मौसम के अनुरूप गाना सुनना था, फिल्म आक्रमण।

0: श्रोताओं, बहुत ज्यादा समय नहीं है, इस कार्यक्रम का आखिरी फोन कॉल हम लेते हैं। हेलो एमएच हॉटलाइन। हाँ जी
1: मैं बाग से बोल रही हूँ।
0: जी बताइए, आपका शुभ नाम बताइए।
1: हीरो पड़ियार।
0: आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज?
1: संतोषी माता का।
0: संतोषी माता का कौन सा? मैं तो आरती, कौन सा सुनना चाहेंगे?
1: हाँ वो आरती आती वो।
0: जी जी, क्या करते हैं आप?
1: मैं सही में हम फुटबॉल पे रोड पे है, यहाँ पे दुकान वगैरह कहीं भी छोटी मोटी लगा के दी रहे हैं।
0: जी, और साथ में रेडियो भी सुनते हैं?
1: हाँ साथ में रेडियो भी सुनते हैं।
0: तो आज शुक्रवार की वजह से आज आप गीत भी संतोषी माता का सुनना चाह रहे हैं?
1: हाँ
0: जी, तो सुनिए अपनी पसंद का गीत और आनंद लीजिए।
1: ठीक है।

0: जय मां संतोषी फिल्म के इस गीत के साथ ही एमएच हॉटलाइन कार्यक्रम से आपके रेडियो दोस्त योगेंद्र पांडे को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: हेलो एमएच हॉटलाइन।

0: अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं की पसंद की फरमाइशी फिल्मी गीतों का सजीव फोन इन कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 11 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में अगला प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से होगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: भोपाल है, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फोन इन कार्यक्रम, फोन करें गीत सुने। ये बादल, ये बिजली, ये बारिश का मौसम, ये रिमझिम फुहारे, ये बूंदों की छमछम, ये सिसकी सी भरती बोझिल हवाएं, ये शाखों के पत्तों पे ठहरी सी शबनम। बारिश के इस सुहावने मौसम में स्वागत है आपका कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में। हमसे जुड़ने के लिए हमें कॉल करें। हमारा फोन नंबर है 2660902 और भोपाल का एसटीडी कोड है 0755। आपके फोन्स का हमें है इंतजार। आइए मिलते हैं हमारे पहले श्रोता से। नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किनसे हमारी बात हो रही है?
2: सुनील कुमार खरे।
1: सुनील जी, कहाँ से बात हो रही है आपसे हमारी?
2: इंदौर से।
1: इंदौर से क्या करते हैं सुनील जी?
2: मैं टीचर था।
1: अच्छा, तो रिटायर हो गए हैं आप?
2: हाँ हाँ।
1: तो ये दूसरी पारी आपकी कैसी चल रही है?
2: ठीक चल रही है, बढ़िया, मौज मस्ती।
1: चलिए, बहुत अच्छा लगा सुन के कि आप अपनी दूसरी पारी में एंजॉय कर रहे हैं। आपके परिवार में कौन कौन?

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: राहुल ध्रुवे बात कर रहा था।
0: राहुल जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: मध्य प्रदेश सिवनी।
0: सिवनी से? राहुल जी, बारिश का मौसम चल रहा है।
1: अभी मतलब बारिश हो रही है, अभी दो या तीन दिन पहले काफी तेज हुई थी, अभी तो कम हो रही है, कभी धूप भी निकल जाती है।
0: जी, क्या करते हैं आप राहुल जी?
1: मैं भी पर जॉब करता हूँ।
0: जॉब करते हैं, तो अभी ऑफिस में हैं या घर में हैं?
1: अभी मेरा मतलब जो टाइमिंग है वो 1 बजे से जाने का।
0: अच्छा, आज क्या सुनना चाहते हैं आप?
1: जाने अनजाने का रहेगा इसमें, पिया पिया ओ पिया पिया तू चांद है पूनम का।
0: जाने तमन्ना का गीत है ये, पिया पिया ओ पिया।
1: हाँ, उदित नारायण की आवाज है ना?
0: जी जी।
1: मैम आज किससे बात हो पा रही है?
0: मैं आकांक्षा बोल रही हूँ।
1: मैम दोस्त का नाम ले सकता हूँ?
0: हाँ जी बिल्कुल, लीजिए।
1: मध्य प्रदेश सागर से रहेंगे नितिन कटारे और शिमला से रहेंगे राकेश जी।
0: जी, तो लीजिए, सुनिए अपनी पसंद पर अपने दोस्तों के साथ ये गीत। नमस्कार।

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार दीदी आपको, और धन्यवाद भी आपको। मैं बाबू यादव बोल रहा हूँ सारनाथ वाराणसी से।
0: बाबू यादव जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है दीदी, और आप कैसी हैं?
0: हम भी बहुत बढ़िया हैं। क्या कर रहे हैं इस समय आप बाबू यादव जी?
1: दीदी मैं दुकान पर हूँ इस समय, और मौसम बहुत बढ़िया बना हुआ है। बरसात हो, अभी साफ सुबह बारिश हुई थी
0: जी,
1: तो मौसम बढ़िया हुआ है।
0: तो मतलब एक साथ दोनों काम कर रहे हैं आप, दुकान भी संभाल रहे हैं और फोन इन प्रोग्राम में आपने कॉल भी लगा लिया।
1: हाँ दीदी, टाइम मिल गया था तो हमने कहा फोन लगा लें आपको।
0: देखिए, अपनी पसंद की जो बात होती है ना, उसके लिए इंसान वक्त निकाल ही लेता है।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, टाइम निकालना पड़ता है
0: जी, निकालना पड़ता है और निकल जाता है। और देखिए, आपने इतने शिद्दत से याद किया और फोन लगाया कि आपका फोन लग गया
1: जी।
0: जी, आज क्या सुनना चाहते हैं आप?
1: दीदी देखिए, मौसम बढ़िया है तो हमको एक गाना सुनवा दीजिए।
0: जी बताइए।
1: जुर्माना का है वो गाना, है ना, सावन के झूले पड़े हैं तुम चले आओ, है लता जी ने गाया हुआ है, और बहुत खूबसूरत मौसम के हिसाब से
0: जी। और सावन का महीना आने ही वाला है।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और दीदी अगर इजाजत है तो दो लाइनें भी कहना चाहूँगा।
0: जी बिल्कुल।
1: कि जिसने भी छुआ वो स्वर्ण हुआ, सब कहे मुझे मैं पारस हूँ, मेरा नाम शमशान मगर मैं जिंदा शहर बनारस हूँ।
0: वाह
1: दीदी, ये कुमार विश्वास जी ने हमारे शहर के बारे में कहा था।
0: अच्छा, तो आपको हाँ, कविताओं का शौक है?
1: जी जी जी, कविताओं और शेर व शायरी का शौक रखते हैं।
0: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो लीजिए सुनिए बाबू यादव जी अपनी पसंद पर फिल्म जुर्माना का ये खूबसूरत गीत।
1: नमस्कार दीदी आपको।
0: नमस्ते।

0: हेलो, कार्यक्रम फोन करें, गीत सुने।
1: हेलो,
0: हेलो, नमस्कार।
1: नमस्कार मैम, क्या हाल चाल है?
0: सब बढ़िया। कार्यक्रम फोन करें, गीत सुने में आपका स्वागत है। किन से हमारी बात हो रही है?
1: बढ़िया है, चकाचक।
0: बात हमारी किन से हो रही है?
1: मनोज गुप्ता बागली।
0: मनोज गुप्ता जी, कैसे हैं आप?
1: हाँ बढ़िया है।
0: क्या कर रहे हैं इस समय मनोज जी?
1: दुकान में बैठा था मैम, फिर
0: अच्छा,
1: फोन ट्राई करा तो फोन लग गया।
0: बहुत बढ़िया। दुकान के साथ साथ आपने फोन मिलाया और आपका फोन लग गया, ये बहुत अच्छी बात है।
1: आप गाना सुना दीजिए मेरे को, फिल्म सुहाग का, अमिताभ बच्चन वाली।
0: फिल्म सुहाग का कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: कोई भी अच्छा सा सुना दीजिए।
0: ठीक है, तो लीजिए, सुनिए अपनी पसंद पर फिल्म सुहाग का ये गीत।
1: ठीक
0: नमस्कार।
1: है मैम, थैंक यू।

0: नमस्ते, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
1: जी नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, कौन बोल रहा है?
1: जी मैं इंदौर से बोल रही हूँ, जीनत परवीन। जी
0: जीनत जी, कैसी हैं आप?
1: अच्छी हूँ मैम,
0: क्या कर रही हैं?
1: बस पेपर पढ़ रही थी और फोन ट्राई कर रही थी।
0: कैसा है मौसम वहाँ इंदौर में जीनत जी?
1: मौसम बादल हो रहे हैं, बारिश का इंतजार है, कल भी चले गए यहाँ से बादल तो।
0: अच्छा, तो बारिश नहीं हुई?
1: जी बारिश तो नहीं हुई।
0: बस पहुंच ही रही होगी आप तक, तो लुत्फ उठाइए इस खूबसूरत मौसम का और बताइए आज क्या सुनना चाहती हैं आप।
1: विजय पिक्चर है ना,
0: जी
1: बादल पे चल के आ, सावन में ढल के आ, सांसों से मेरी पिघल के आ, वो वाला।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया गुनगुनाया आपने ये गीत। परिवार में कौन कौन है जीनत जी?
1: परिवार में तीन बच्चे हैं, 21 साल के, 16 साल के और 13 साल के बेटे हैं तीनों।
0: पढ़ाई चल रही है तीनों की?
1: एक तो पापा के साथ जाते हैं जॉब पे और दो पढ़ाई।
0: दो पढ़ाई कर रहे हैं। तो
1: जी
0: आपका आपका समय कैसे निकलता है दिन में?
1: समय काम निकाल के रेडियो तो चलता ही रहता है दिन भर, और थोड़ी देर अपने रेस्ट करती हूँ और गाने सुनती रहती हूँ। मम्मी का नाम लेना चाहूंगी, बहनों का,
0: जी
1: मंदसौर में रहती।
0: जी बोलिए।
1: जी नूर भी है, अंजुम बाजी, गजाला, शम्मी, शाइस्ता, बुशरा, रुखसाना, रोशन, ये बहनें हैं जी, ये भी सुनती हैं।
0: बढ़िया, तो ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए अपने मनपसंद गीत। कार्यक्रम
1: जी
0: फोन करें गीत सुने में। आपने
1: जी
0: हमसे बात
1: शुक्रिया मैम।
0: की, धन्यवाद।

0: कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आपका स्वागत है। किनसे बात हो रही है हमारी?
1: मैडम जी, मैं गोपाल ओझा बोल रहा हूँ, ग्राम ककवासा, जिला गुना से।
0: गोपाल जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है, बारिश हो रही है, अभी तो 8 दिन हुआ बारिश होते बंदी।
0: अच्छा, तो बारिश में परेशानी हो रही है या अच्छा लग रहा है?
1: परेशानी है क्योंकि मक्का लगा रखी है अभी तो, क्योंकि बारिश अभी हो रही है हमारे इधर।
0: परिवार में कौन कौन है आपके गोपाल जी?
1: परिवार में मम्मी पापा है, भाई बहन सभी है, यही रहते हैं, मम्मी पापा के साथ ही रहते
0: जी, संयुक्त तो परिवार है
1: जी। भोपाल का मौसम कैसा है?
0: भोपाल का भी बहुत बढ़िया मौसम है
1: जी। आपके कार्यक्रम सुनते हैं?
0: आपके पसंदीदा कार्यक्रम कौन कौन से हैं? क्या सुनना पसंद करते हैं आप
1: जी? समाचार वगैरह, फिल्म संगीत, हेलो फरमाइश सभी सुनते हैं।
0: अच्छा, मतलब रेडियो आपका चलता रहता है?
1: चलता रहता है हमारा तो रेडियो, तो मान लीजिए विविध भारती से भी जुड़ते हैं, विविध भारती कार्यक्रम भी सुनते हैं।
0: देखिए, ये रेडियो एक ऐसा माध्यम है ना, जिसमें जुड़ने से कोई परेशानी नहीं होती है, हमारा काम नहीं रुकता है।

0: काम के साथ साथ हम अपना मनोरंजन भी करते रहते हैं, जानकारियां भी हमें मिलती रहती हैं। तो आज आप क्या सुनना चाहते हैं गोपाल जी?
1: वाला सुनवा दीजिए, राजा
0: सारे
1: कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, जितना रन का यानी की आवाज में ना।
0: तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद पर फिल्म राजा हिंदुस्तानी का ये गीत। नमस्ते।

0: जोकर।
1: फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्ते।
2: जी मैडम नमस्ते।
1: नमस्ते, किन से बात हो रही है हमारी?
2: नीरज उपाध्याय अनूपपुर से।
1: नीरज उपाध्याय जी अनूपपुर से।
2: जी
1: कैसे हैं नीरज जी?
2: बढ़िया मैम, बारिश का आनंद ले रहे हैं। मानसून सक्रिय हो चुका हमारे अनूपपुर में, बारिश हो रही है हमारे यहाँ।
1: जी क्या करते हैं नीरज जी?
2: मैम हो गया ये प्राइवेट कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड हूँ।
1: बहुत बढ़िया, सुरक्षा का कार्य आप करते हैं।
2: गोल माइंस का क्षेत्र है अपना
1: जी, तो इसमें तो शिफ्ट होती होंगी नीरज जी, शिफ्ट वाइज होता होगा आपका काम?
2: हाँ तीनों शिफ्ट रहती है, नाइट में रहती है।
1: अच्छा, तो मैनेज हो जाता है बढ़िया से?
2: हाँ मैम हो गया, मैनेज करना पड़ता है
1: जी।
2: क्या है, बच्चे को भी सुबह स्कूल जाना पड़ता है तो उनको भी उस हिसाब से मैनेज करना पड़ता है इस समय। उसके हिसाब से अपना ड्यूटी भी करना पड़ता है
1: जी। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा नीरज जी। अब अपनी पसंद बताइए, आज आप क्या सुनना चाहते हैं?
2: मैम किशोर कुमार की आवाज़ पे गाना है रिमझिम गिरे सावन, सुलग जाए बाल, वही मैडम सुना दीजिए गाना
1: जी। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद पर ये गीत। नमस्ते।
2: नमस्ते।

0: हेलो।
1: कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आपका स्वागत है। कौन बोल रहा है?
0: नमस्ते मैम, मैं नंदिनी तिवारी बात कर रही हूँ सागर से।
1: नमस्ते नंदिनी जी, कैसी हैं आप?
0: हम अच्छे हैं मैम, आप कैसी हैं?
1: हम भी बहुत बढ़िया हैं। क्या कर रही हैं इस समय नंदिनी जी?
0: इस समय मैं बस बैठी थी और कॉल ट्राई कर रही थी। मैंने सोचा बस आपसे बात कर ली जाए थोड़ी सी, क्योंकि
1: बहुत अच्छा, और आपका कॉल लग भी गया। नंदिनी जी, परिवार में कौन कौन है आपके?
0: हमारी मम्मी है, पापा है, दो भाई हैं।
1: समय कैसे निकालती हैं आप अपना दिन का?
0: दिन का समय देखो, जैसे कि हम जैसे अब ये है लाइव प्रोग्राम आता है वो सुन लेते हैं, और क्रिकेट देखती हूँ और मूवीज वगैरह भी देखती हूँ मैं।
1: अच्छा, मूवीज का शौक है आपको,
0: जी
1: खेल का भी शौक है,
0: जी
1: देखना पसंद है या खेलती भी हैं?
0: खेलते भी हैं और मम्मी लोग के साथ भी थोड़ा बैठते हैं, बातें करते हैं, और उनके साथ भी ऐसे कोई गेम मतलब रहती है तो उनके साथ भी बैठ के खेलते रहते हैं।
1: घर के कामकाज में मदद करती हैं?
0: जी, तो वैसे काम रहता है खाने का तो खाना भी बनाते हैं।
1: तो
0: जी,
1: आज क्या सुनना चाहती हैं नंदिनी जी?
0: आज मूवी का नाम है हम तुम्हारे हैं सनम,
1: हम तुम्हारे हैं सनम मूवी का कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आप?
0: टाइटल
1: टाइटल सॉन्ग।
0: जी, और डेडिकेट आपको करूंगी और कविता मैम को करूंगी और रानू दीदी को। जी,
1: इस फिल्म में कौन कौन से कलाकार हैं जानती हैं?
0: शाहरुख खान है, सलमान खान है, माधुरी दीक्षित है।
1: ये इसने प्रूव कर दिया कि आपको फिल्मों का शौक है। ठीक है
0: जी,
1: नंदिनी
0: अब
1: जी,
0: मूवी
1: आपसे बात
0: देखते
1: करके
0: हैं।
1: बहुत अच्छा लगा। लीजिए सुनिए अपनी पसंद पर फिल्म हम तुम्हारे हैं सनम का ये गीत।
0: ओके मैम, नमस्ते, बाय।
1: नमस्ते।

0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। ये आकाशवाणी भोपाल है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के

प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीस के साथ आज मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड एमसीजी का दौरा किया। यह दौरा भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों में खेल कूटनीति की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न से न्यूजीलैंड पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है। करीब 4 दशक के लंबे अंतराल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। गृह विभाग द्वारा पद्म पुरस्कार वर्ष 2027 के लिए विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण एवं उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों के नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक योग्य व्यक्ति अपना नामांकन जिला कलेक्टर के माध्यम से 15 जुलाई तक ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। वहीं राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल का उपयोग भी किया जा सकता है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि E85 ईंधन E20 पेट्रोल से करीब 20 रुपये प्रति लीटर सस्ता होगा। E85 ईंधन केवल उन वाहनों के लिए उपलब्ध होगा जो विशेष रूप से इस ईंधन के उपयोग के लिए ही डिजाइन किए गए हैं। और हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर दोपहर 3:30 बजे से मेजबान इंग्लैंड के साथ टेस्ट मैच खेलेगी। ये लॉर्ड्स में खेला जाने वाला पहला महिला टेस्ट मैच भी होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। दिन के 12 बजे हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम आपकी फरमाइश में मैं अनुराधा अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूं। कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवा रहे हैं नाराज फिल्म का बहुत ही प्यारा सा गीत, जिसे एक आवाज दी है कुमार सानू ने। बोल हैं कतील शिफाई के और संगीत से सजाया है अनु मलिक ने। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं अकोला से आशा संतानी, श्यामली संतानी, नैन्सी संतानी, संतानी साखिया, और पंजाब से भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, ट्विंसी खेड़ा, शालिनी खेड़ा, आरबी खेड़ा, लाडी खेड़ा, जीवन सिंह बोक और पूरा खेड़ा परिवार। तो आइए सुनते हैं हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद का ये गीत।

लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू और महाराष्ट्र से अभिजीत गहाणकर, सरिता गहाणकर, सिद्धांत गहाणकर, प्रिंस एकांश गहाणकर, सुखी शैलेश गहाणकर, नागपुर से वैशाली, श्वेता सुमित और कौमी धोनी गहाणकर। हमारे इन सभी श्रोताओं ने फरमाइश की है फिल्म मोहरा के इस गीत को सुनने की, जिसे आवाज़ दी है पंकज उधास और साधना सरगम ने। इंदिवर के बोल हैं और संगीत विजू शाह का।

कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अगला गीत अनु मलिक के संगीत से सजा हुआ। बोल है फैज़ अनवर की, फिल्म का नाम है इम्तिहान और खूबसूरत आवाज़ें कुमार सानू और बेला की। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं छत्तीसगढ़ भाटापारा धनतरेगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, जावेंद्र कुमार वर्मा, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मितेश ठाकुर, तारणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रियांश ठाकुर। और इसी गीत को सुनने के लिए ख्वाहिशमंद हैं गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोतले और आरती जोतले। तो सुने हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद का ये गीत।

कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं सलामी फिल्म का गीत आशा भोसले और कुमार सानू की आवाज में। बोल हैं मदन पाल के और श संगीत से सजाया है नदीम श्रवण ने। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं अयूब खान, इरम गुड़िया, शुएब खान, नावेद खान, जीशान वारसी बरेली से और करुला मुरादाबाद से, नेपाल वाले सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका रॉबिन, और एक और पत्र हमें मिला है औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश का।

0: सलामी फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब यहीं पर समाप्त होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है।
1: इस समय आप है हमारे साथ।
2: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।
3: तीनों कॉलेज में
4: डोंट वरी,
3: फीस तो देखो।
5: क्या हाल है, क्या हुआ?
4: फीस की टेंशन।
5: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
6: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए का, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई।
7: आरबीआई कहता है
8: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
9: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
10: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
3: क्या
2: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है?
3: वो कैसे?
2: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
3: पर सुनेंगे कैसे?
2: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
1: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

0: क्या बात है सखी, बड़ी खुश नजर आ रही हो।
1: खुशी की तो बात है, हमारा पसंदीदा कार्यक्रम महिला सभा अब मंगलवार के साथ साथ गुरुवार और शुक्रवार को भी होगा।
0: अरे वाह, ये तो वाकई खुशी की बात है। समय क्या रहेगा?
1: वही दोपहर 1 बजे।
0: तो सुनना ना भूले कार्यक्रम महिला सभा।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। दिन के 12:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक हंसना मना है का नवा भाग।

0: बड़े विलंब से पहुंचा करते थे, हमेशा देर से आया करते थे, और हमेशा देर से आने के कारण उनका उनके ऑफिस में ऐसा रिकॉर्ड बन गया था कि ये साहब हमेशा देर से आते हैं। उनका कार्यालय का समय सुबह 10 बजे से प्रारंभ होता था और उसके बाद शाम को 5 बजे उनकी छुट्टी का समय हुआ करता था, लेकिन वो हमेशा 10 की जगह कभी 10:30 तो कभी 11 तो कभी 11:30 तो कभी 12:15 तो कभी 12-12 बजे तक लगातार ऑफिस पहुंचा करते थे। और छुट्टी होने का समय 5 बजे ठीक एक्यूरेट हुआ करता था, बिल्कुल ठीक समय 5 बजे ऑफिस छूटने का समय, इसके लिए वो उनकी अगर रिपोर्ट देखी जाती तो वो कभी ऑफिस से 4 बजे ही निकल जाते थे, कभी 3:30 बजे ही गायब, कभी 3 बजे ही ऑफिस से वापस। तो ये देख के बहुत लगातार काफ़ी दिनों से विलंब से आने के कारण और देर से आने के कारण उनके बॉस ने, उनके जो बड़े साहब हैं, उन्होंने उन्हें तलब किया और उसे अपने पास बुलाया और बोला, रामलाल आज आप दफ्तर लेट आए थे। जी हाँ साहब, थोड़ा लेट हो गया था, वो क्या कि थोड़ा सा वो लेट हो गया था साहब, बहुत सारी समस्याएं हैं। हाँ हाँ ठीक है, और मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे रिकॉर्ड के हिसाब से तुम कल भी लेट आए थे। हाँ साहब, वो लेट हो गया था, क्या कि वो लगातार मैं लेट आ जरूर हो रहा हूँ, लेकिन क्या कि मैं कभी कभी लेट हो जाता हूँ, परिवार बाल बच्चों में फंस जाता हूँ साहब। और मैं देख रहा हूँ कि तुम लगातार 15 दिन से रोज लेट आते हो, तुम्हारा 10 बजे ऑफिस का टाइम है, कभी 11 आते हो, कभी 11:30, कभी 12:15, 12-12 बजे तक ऑफिस आए आप, और जाने का समय 5 बजे, तो कभी 4 बजे, कभी 3 बजे, कभी 2:30-2:30 बजे तक गए हो, दोनों टाइम लेट होते हो। बोले साहब, क्या है कि दोनों टाइम लेट होना जमता नहीं है, इसलिए शुरू से जल्दी आता हूँ, बाद में पहले चला जाता हूँ। एक छोटा बच्चा अपनी दादी माँ के पास पहुंचा और बोला, बच्चे जब बुजुर्गों से बात करते हैं और बुजुर्ग जब बच्चों से बात करते हैं तो किस तरह की हंसने हंसाने की बातें बन जाया करती हैं, वही बातें प्रस्तुत कर रहा हूँ। सबसे पहले बच्चा अपनी दादी माँ के पास पहुंचा और बोला,
1: दादी दादी है ना, दादी है ना, तुम ना टे बोलो टे।
0: अब बुजुर्ग लोग अगर बच्चों से बात करेंगे तो मूड ठीक है तो ठीक है, और अगर मूड ठीक नहीं है तो वो डांट भी दिया करते हैं। तो दादी माँ फौरन बच्चे से बोलती हैं,
2: नहीं बोलते जाओ, हमारे टे बोलने से क्या होगा बेटा।
1: है ना दादी, तुम ना टे बोलोगी ना तो ना बड़े भैया की शादी हो जाएगी।
2: शादी हो जाएगी बेटा, तेरे से ये कौन ने कहा कि बड़े भैया की शादी हो जाएगी।
1: है ना दादी, है ना, कल ना बाबू कह रहे थे अम्मा से कि जो दिन मुन्ना की दादी टे बोल जाएगी वही दिन बड़े भैया की शादी कर देंगे।
0: गाँव गाँव गली गली लोगों को सरकार की तरफ से ये पढ़ाया जाने लगा, सिखाया जाने लगा, ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल, ये व्यंग आपके लिए विशेष प्रस्तुत कर रहा हूँ। और जैसे ही गांव के लोगों ने पढ़ना शुरू किया ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल, किसी गांव वाले की कोई समझ में ज़्यादा नहीं आया, एक गांव वाला शिक्षा विभाग के एक नुमाइंदे के पास पहुँचा और बोला,
3: साहब जी
4: क्या बात है।
3: साहब जी ये गांव वाले हैं जे ऐसे नहीं समझेंगे, बेक समझ ही नहीं रहे फार एप्पल बी फार बॉल।
4: नहीं समझ रहे तो क्या समझेंगे।
3: अब ऐसा है साहब जी, भी समझेंगे, ए फार अन्नू की घरवाली, बी फार बउआ की घरवाली, सी फार चंदू की घरवाली, डी फार डब्बू की घरवाली, वे ऐसे समझ हैं।
4: अच्छा ऐसे समझेंगे।
3: हाँ साहब, वे गाँव वाले ना वे ऐसे ही समझ हैं, ऐसे नहीं समझ हैं। शिक्षा विभाग के नुमाइंदों ने उसे उसी तरह मीडिया बनाकर लोगों को प्रचार करना शुरू किया, ए फार अन्नू की घरवाली, बी फार बउआ की घरवाली, सी फार चंदू की घरवाली, डी फार डब्बू की घरवाली। लोग पढ़ने लगे और लोग समझने लगे। गांव में 99% लोग शिक्षित हो गए कि लोग साहब इस बात लाभ लेने लगे। शिक्षा विभाग का जो ये प्रयास था ये सार्थक सिद्ध हुआ और आसपास के गांव वाले भी वहां पढ़ने आने लगे, काफ़ी लोग शिक्षित होने लगे। शिक्षा विभाग तक खबर पहुँच गई कि फला गाँव में 99% लोग शिक्षित हैं। तो एक अधिकारी वहां से भेजे गए जो कि ये मुआयना करने आए कि अगर ये बात सत्य है कि शिक्षा विभाग में यहाँ पर इस गांव में इतना कयामत करके दिखाया है और यहाँ के लोग शिक्षित हुए हैं, तो एक शिक्षा केंद्र यहाँ खोल दिया जाए और आसपास के 40 गांव में 40 ब्रांच डाल दी जाए। एक बड़े साहब आ गए और एक साहब को खड़ा करके ब्लैक बोर्ड में सी लिख दिया और बोला कि बताइए दादाजी ये क्या लिखा है। दादाजी फौरन बोले,
5: अब बेटा जैसी लिखो है सी फार चंदू की घरवारी।
3: एक माताराम 60-65 साल की बैठी थी, उनको बोला, माताराम पढ़े लिखी हो।
6: अब बेटा पढ़े पढ़े हैं, लिखे तो नहीं है।
3: ठीक है, पढ़ी पढ़ी हो तो कम से कम पढ़ के तो बता सकती हूँ क्या लिखो है।
6: हाँ भैया थोड़ी बहुत तो बता ही

0: सकत है।
1: ब्लैक बोर्ड में डी लिख दिया, बोला बताओ माताजी ये क्या लिखा है। माताजी फौरन बोली,
0: हाँ बेटा या डी लिखो है, डी फार डब्बू की खरबारी।
1: एक दादा 60 साल की लगभग उम्र के चश्मा लगाए बैठे थे, ब्लैक बोर्ड में बड़े साहब ने डब्लू लिख दिया और दादा से बोला डब्लू दिखा के कि दादा जे बताओ जे का लिखा है। अब डब्लू देख के दादा चमक गए, चश्मा उतारा फिर लगाए, उतारा फिर लगाए। 2 सेकंड बाद फौरन जवाब दिया दादाजी ने, बेटा ये देखा तो मुन्ना की घरवारी रही है, मगर जा समझ में नहीं आ रहा कि जो उल्टी का ठाणी।
2: और अब एक बार फिर मैं आपका अपना दोस्त रजनीकांत त्रिवेदी। एक छोटे से प्यारे से गांव में एक अदालत नाम का नाटक खेला जाना था। सभी गांव वालों ने अभ्यास किया 1 महीने 2 महीने, तो अदालत नाम उस नाटक का रख दिया गया। उसमें मुख्य कलाकार का जो रोल था वो था वकील का, लेकिन जो वकील का रोल कर रहे थे वो वास्तव में वकील थे नहीं, वो तो एक छोटी सी किराने की दुकान के मालिक थे। तो साहब प्रैक्टिस हुई, 26 तारीख का अनाउंसमेंट कर दिया गया कि 26 तारीख की शाम को 7:30 बजे ये अदालत नाम का नाटक खेला जाएगा रामलीला के मैदान में। चलिए ठीक है साहब, सभी लोगों को मालूम हो गया कि अदालत नाम का नाटक खेला जाना है। अब 25 तारीख आ गई, दिन भर अभ्यास हुआ, 25 की रात भर अभ्यास हुआ, अभ्यास ही अभ्यास। कि जो कलाकार वकील का रोल कर रहे थे वो किराने वाले, उनकी सास की डेथ हो जाती है, प्राणांत हो जाता है उनका, अब क्या किया जाए। शाम को नाटक है, सुबह घर में ये नाटक हो गया, तो जो कलाकार थे जो वकील का रोल कर रहे थे उन्होंने डायरेक्टर महोदय को यानी उस अदालत नाम के नाटक के डायरेक्टर महोदय को समझा दिया कि साहब ऐसा है हमारी सास की तो डेथ हो गई है, हम तो आ ना पाएंगे, तो आप एक काम करिएगा कि एक कलाकार की आवश्यकता कहीं से आपको पड़ेगी, उसकी व्यवस्था आप कर लें क्योंकि हम नाटक में रोल नहीं करेंगे। तो डायरेक्टर बेचारा बड़ा परेशान, ओहो ये कैसे कह रहे हो कलाकार, हम 2-4 घंटे में कहाँ से किसी कलाकार की व्यवस्था करेंगे, आप लोगों ने तो 2-2, 3-3 महीने तक अभ्यास किया है, अब 4 घंटे में हम कौन सा कलाकार कहाँ से किया जाए। तो कलाकार ने तो बोल दिया नहीं भाई नहीं, हम तो रोल करेंगे नहीं, आप कोई ना कोई व्यवस्था करिए। ठीक है साहब, मरता क्या ना करता। तो उस डायरेक्टर ने क्या किया, पूरे इलाके में, पूरे गांव में क्या आजू बाजू वाले गांव में भी एक ढिंढोरा पिटवाया एक कलाकार की जरूरत का। वो क्या ढिंढोरा था, आज रात को जो नाटक होने वाला है गांव में उसका नाम है अदालत, उसमें एक कलाकार की जरूरत है, एक कलाकार की जरूरत है। आप सभी लोगों से निवेदन है कि अगर आप लोग इस नाटक में रोल करना चाहते हैं, अभिनय करना चाहते हैं, तो आज दोपहर को 2 बजे डायरेक्टर महोदय के घर में इंटरव्यू होने वाला है, साक्षात्कार, आप लोग पधारे। जो जीत जाएगा, जो सफल हो जाएगा, उसको कलाकार बना दिया जाएगा, उसके बदले में उसको 1000 रुपए का इनाम दिया जाएगा, पेपरों में नाम छपेगा, टेलीविजन में फोटो आएगा। तो साहब ऐसा अनाउंसमेंट हो गया, अब एक कलाकार की जरूरत, वहां एक पहुंचते या दो पहुंचते, वहां पहुंच गए 450, सबके सब पूरी लाइन में लगे हुए हैं एक के बाद एक। तो डायरेक्टर महोदय ने एक के बाद एक सबको बुलाया, जो सबसे पहली लाइन में सज्जन खड़े हुए थे वो कोई कलाकार तो थे नहीं, वो तो इसलिए पहुंचे थे कि 1000 रुपए का इनाम मिलेगा, फोटो छपेगा पेपर में, टेलीविजन में नाम आएगा, फोटो आएगा, रेडियो वाले भी बोलेंगे वगैरह वगैरह, इस लालच में वो पहुंच गए। वो कौन थे, वो थे एक दवाई वाले। कौन से दवाई वाले, कोई मेडिकल स्टोर्स वाले या आयुर्वेद शाला वाले नहीं। आप लोगों ने देखा होगा सड़कों पे रंग बिरंगी जड़ी बूटियां लेकर कोई सज्जन बेचते रहते हैं, वो ताकत की दवाइयां बेचते हैं, 125 रुपए की पुड़िया में शक्ति साली बनाने के लिए बड़ा दावा करते हैं। वो पहुंच गए, उन्होंने उस नाटक में अभिनय करने के लिए अपनी बात कही, इंटरव्यू में भाग लिया। तो डायरेक्टर ने बोला अच्छा अंदर आइए, आप कोई है क्या है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ये डायलॉग है इसको आपको बोलना है। ये संवाद ऐसा है कि आशा देवी मर गई हैं, रात के 12 बजे उनका खून हो गया है, उनके खून को गोपाल राव ने किया है, ये चश्मदीद गवाह इस समय अदालत में खड़ा है, बस इतना सा संवाद है, इसको आपको बोलिए, अगर आपने अच्छा बोल दिया तो हम आपको अपने नाटक में ले लेंगे, और नहीं तो आपको कहेंगे कि आप जाओ। तो दवाई वाला खुश, अरे कहने जरा सी तो बात है यार, हम अपने स्टाइल से बोलते हैं। तो दवाई वाले ने अपने स्टाइल से किस तरह से बोला, देखिए डायलॉग ये है, आशा देवी मर गई है, रात को 12 बजे उनका खून

हो गया है और गोपाल ने इसको खून को कर दिया है और किसी ने देखा वगैरह वगैरह, बस इतना सा डायलॉग। अब दवाई वाला अपने स्टाइल से बोलता है किस तरह से, बताएगा वो बताएगा वो खून का मामला है या कत्ल का मामला है या मर्डर का मामला है या कौन बताएगा, कहां बताएगा, कैसे बताएगा। अरे 125 रुपए का तावीज उसके छाती पे रख देगा, वो बताएगा, वो भगवान के नाम पे बताएगा। अरे खून का मामला है, कत्ल का मामला है, मर्डर का मामला है। अरे कबीरा खड़ा बाजार में, कबीरा खड़ा बाजार में केला लौकी भिंडी दियो लटकाए, जिसको जितना चाहिए काट काट दे जाए। वो बताएगा ये खून का मामला है, मर्डर का मामला है, कत्ल का मामला है। तो डायरेक्टर बोलता है हम आपको पहचान गए, सही बात है, बहुत अच्छा बोलते हैं आप बाहर निकल जाओ, 2-4 महीने के बाद आप आना। उनको तो साहब बाहर कर दिया गया। अब पहुंचे नंबर 2, जिनकी गिनती ना होती है कव्वालों में, बड़ा बढ़िया कव्वाली गाते हैं, वो भी अपने संगी साथियों के साथ, ढोलक तबले के साथ, हारमोनियम के साथ, गाने वालों के साथ चले आए। तो देखिए किसने किस तरह से अपनी बात प्रस्तुत की। आशा देवी मर गई हैं, रात के 12 बजे हैं, खून का मामला है, किसने खून किया, वो खूनी कहाँ खड़ा है, वगैरह वगैरह। अब इस डायलॉग को बोल रहा है कौन, एक कव्वाल अपनी स्टाइल से।

सफाई से धोए हैं अपने हाथ, तो कहा है कि कातिल ने किस सफाई से धोए हैं अपने हाथ कि वो जानता नहीं कि लहू बोलता भी है। अरे मोम के शहर में उस वक्त तबाही होगी, कहा है

तो मेरी आशा रात के 12 बजे सो रही थी। अरे मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरा लखते जिगर, मेरा नूर नजर, मेरी आशा सो रही थी रात के 12 बजे थी। मैंने अपनी नजर से, नजरिया से, नैना से, दो दो कटा से चांद को देखा।

इंसान नहीं, बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल मर्डर कर दिया हो मेरे जज साहब। मेरी आपसे प्रार्थना है, निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि इस कातिल को कम से कम दिन में 3 बार

0: डायरेक्टर साहब बोलते हैं, कहले बहुत बढ़िया गाते साहब आप, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप लोग आए, लेकिन हम आपको ले नहीं पाएंगे अपने ड्रामे में, आप जा सकते हैं, चाय वाय के लिए आप चाहें तो पैसे ले लें। तो उनको पैसे चाय के दे दिए गए, उनको हटा दिया गया। अब पहुंचे कौन, एक ऐसे नेता जो अचानक वो स्पीकर में जो आवाज आ रही थी कि एक कलाकार की जरूरत की, उसको सुन के पहुंच गए और उनको भी वही डायलॉग दिया गया कि आशा देवी मर गई हैं और गोपाल ने उनको मारा है, अदालत में वो गोपाल खड़ा है, डायलॉग हो रहा है और सब बहुत सारी बातें हैं, तो ये सब आपको अपने तरीके से बोलना है, आप अगर हमारे ड्रामे में रोल करना चाहते तो। नेता तो नेता बेचारे, कोई कामकाज तो वर्तमान में था नहीं उनके पास, तो चालू हो गए वो, उनको डायलॉग दे दिया गया। अब नेता तो नेता, बोलेंगे कैसा, वो वकील तो थे नहीं, वो तो अपने तरीके से वो चालू हो गए। किस तरीके से, प्यारे भाइयों बहनों और साथियों, नहीं नहीं नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, जैसा कि सभी को मालूम है कि हमारी पार्टी की खास कर्मठ कार्यकर्ता जिसने 24 घंटे समाज की सेवा करने में अपना खून पसीना लगा दिया, ऐसी सच्ची वफादार सभी की चहेती मिलनसार मृदुलभाषी आशा देवी का खून कर दिया गया है। आशा देवी का खून कर दिया गया है जिसे विरोधी पार्टी वालों ने एक्सीडेंट का नाम दिया है, यह सरासर गलत है। आशा का खून मामूली नहीं था, उसके खून की एक एक बूंद का हिसाब लिया जाएगा। हम खून का, खून की निष्पक्ष जांच होना चाहिए ऐसा हम कहते हैं। हम हड़ताल करेंगे अगर खून की जांच नहीं की गई, तो हम हड़ताल करेंगे। हम सभी से समर्थन जुटाने का अनुरोध करते हैं। मेरे साथ आप सभी बोलो, आशा देवी अमर रहे, आशा देवी आशा देवी आशा देवी। हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, हमसे जो टकराएगा हमसे जो टकराएगा इस तरह से वो ड्रामा आज तक नहीं हुआ, वो वहीं के वहीं रुका हुआ है। अगर आप लोगों में से किसी श्रोता को उस ड्रामे में रोल करना है तो हम आपको उनका पता बता देंगे, इसके लिए आपको इंतजार करना होगा।
1: हंसना मना है,
2: हंसना मना है,
1: अरे हंसना मना है,
2: हंसना मना है।
1: कोशिश कोई लाख करे, कहता रहे कि हंसना मना है, मगर लोग हंसेंगे खिलखिलाएंगे। एक बात आपसे खास तौर पे कहना चाहते हैं हम कि इस कार्यक्रम का नाम है
2: हंसना मना है।
3: राजेश मिश्रा, लगता है आपके घर के पिछवाड़े छुपकर मियां बीबी की बातें खूब सुनते हैं, इसलिए ये प्राइवेट बातें सुनाते ज्यादा हैं। देखे जरा क्या सुना रहे हैं।
4: भिखारी ने एक घर में आवाज लगाई और वो हम और आपको, बाबो ए बाबो, सुनता ही नहीं है बेवकूफ आदमी।
5: क्या बोला? कुछ नहीं बोला बाबू, बोला भगवान भला करेगा।
4: कहिए क्या बात है।
5: बाबू एक रोटी दे दो।
4: रोटी नहीं है।
5: फटे पुराने कपड़े दे दो बाबू।
4: फटे पुराने कपड़े भी नहीं है।
5: बाबू गेहूं के दाना दे दो बाबू।
4: गेहूं का दाना भी नहीं है।
5: पैसे दे दो बाबू।
4: पैसे भी नहीं है।
5: अच्छा साहब आपके पास कटोरा है?
4: क्यों
5: बाबू ऐसा है, अगर है क्या?
4: हाँ है,
5: तो फिर यहाँ काय को बैठे, हमारे साथ चलो।
4: एक व्यक्ति ने एक से मांगा, बाबू मिले

क्या है, कुछ दे दो भगवान भला करेगा। उसने जेब से निकाला और 1000 का नोट उसको दे दिया, उसने रख लिया। जब 1000 का नोट उसने दे दिया और देने के बाद जब दान करने वाले व्यक्ति की तरफ देखा, बोला कि यार तुम्हारे चेहरे से तो बड़ा तेज नजर आता है, तुम लगते नहीं हो कि तुमको भीख मांगना चाहिए, तुम क्या करते थे इसके पहले? कहले साहब जो आप कर रहे हो वही हम करते थे। अब चुनाव का माहौल चारों ओर फिर से गर्म हो रहा है। हर नेता को ये लग रहा है कि पुनः हमको अपनी सीट जीतना है। हर पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को ये लग रहा है कि हमारी पार्टी प्रमुख रूप से सामने आए। इस ओर आपको ले चल रहे हैं कि कैसी कैसी हास्यप्रद बातें मिल जाती हैं। अभी कुछ समय से नेताओं के साथ साथ राजनीति में किन्नर लोगों का भी प्रवेश हुआ और किन्नर लोगों के प्रवेश से राजनीति में थोड़ा सा उथल पुथल हुई। कुछ लोगों के दिलो दिमाग में बड़ी तनाव भी आया और कुछ लोगों ने उसको बड़ा हास्य और आनंदमय लिया। हिंदुस्तान है हमारा, हर किसी को स्वीकार किया जाता है, ये महानता है हमारे देश की। वहीं दूसरी तरफ चुनाव के दौरान में कैसे कैसे जनसंपर्क हो रहे हैं ये आपके बीच में मैं सुना रहा हूँ कि जनसंपर्क के दौरान में कैसे हास्यप्रद बातें मिल जाती हैं और आम सभाओं के वक्त कैसी हास्यप्रद बातें। देखिए आज की आम सभा हमारी प्रारंभ होने जा रही है और हमारे बीच हमारे पार्टी के प्रमुख नेता आने वाले हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग बिल्कुल शांति बनाकर रखें और थोड़ी देर में हमारे हाँ नेता जी आ गया। देखिए हमारे नेताजी आपके बीच में हैं। ए ये बैठ जाओ, ये देखो यार भैया ये विरोधी पार्टी वाले लोग ऐसा करते हैं यार। देखिए हमारे नेताजी बहुत ही पावरफुल नेता हैं। इनके बारे में आपको मैं क्या बताऊं कि आज इतने सहज और सरल व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं कि आज इनके पास कुछ भी नहीं है। आज जो कुछ भी है इनके पास ये सब जनता का है। ऐसे नेता आज हमारे बीच में हाजिर हैं। और नेताजी, अब नेताजी को बड़ा खराब लग रहा है कि जी बोलते क्या जा रहे हैं कि जो कुछ भी है और जनता का है। अब वो धीरे से उनके कान क्या बोल रहे हो यार, जो भी है जनता का। हाँ हमारा कहने का आशय आप लोग गलत ना समझें, जो कुछ भी है जनता का है। इसका कहने का आशय हमारा ये है कि आप लोगों ने जो कीमती वोट दी है इसके कारण आज नेताजी हैं। नेताजी अब ये जो बीच के भाषण देने वाले होते हैं, वो तारीफ करने वाले होते हैं, अब वो किस ढंग से उनके बारे में बोलना चाह रहे हैं किंतु बोल कुछ और देते हैं, लोग समझ कुछ और लेते हैं और नेता को बुरा लगता है, कहीं कहीं कहीं कहीं अच्छा लगता है। तो वो धीरे धीरे कैसे सारे बाजी से उनकी बातचीत चलती रहती, ये क्रम आप अपने आप समझते जाओगे कि यहाँ पर कुछ जोड़ा गया है, यहाँ पर कुछ काटा गया है। तो हमारे नेताजी देखिए इतने सहज और इतने सरल व्यक्ति हैं कि आज ये जो कपड़े भी पहने हुए हैं ये अपने नहीं पहने हुए हैं। यानी आप फिर गलत समझ गए होंगे, कपड़े अपने नहीं पहने, यानी कि ये अमीर गरीब किसी भी समाज के किसी भी वर्ग के जिसका जिसने जो दे दिया कि ये आप स्वीकार कर लीजिए, नेताजी उसको स्वीकार कर लेते हैं कि समाजवाद है हमारा, हम किसी के साथ दो भाना नहीं रखते कि किस समाज का है किस समाज का। ऐसे महान नेता आज आपके बीच में आए हुए हैं, ऐसे महान नेता आपके बीच में आपसे वोट मांगने के लिए आए हुए हैं। अब देखिए आप उनको वोट दीजिए और इनको जिताइए ताकि हमारे यहाँ अब और नेताजी अब इसके बाद जनसंपर्क के लिए जाएंगे। चलिए नमस्कार जी, नेताजी आए हैं तो क्या करें भैया, नहीं करना कुछ नहीं है, अब खड़े हुए हैं तो हमसे पूछ के खड़े हुए हैं क्या? नहीं नहीं दादा, इस बार इनको जिताना है, पिछली बार भी तो नहीं को जिताया था भैया, इस बार भी जिताना है। मतलब क्या है आपका? अरे मतलब ये कि इस बार फिर वोट देना। अरे यार भैया पानी की समस्या हल नहीं हुई यार तुम्हारी। देखो दादा पिछली बार इनने बोला था कि पानी आएगा,
हाउ देखो इन्हें नल लगवा दिया ना हाउ।

0: इस बार जिताओ नल में पानी भी आ जाएगा।
1: अरे यार एकदम संजय कटौती हो जाती, लाइट गोल हो जाती, निकलो लोग लपाड़ा मार देते। पूछो कौन मार रहा है, तो बोलते हैं कि भूत मार रहा है। कुछ टाइम तो सेट करा दो लाइट कटौती का दादा है। अब ऐसे गड्ढा कीचड़ हो गो पूरो कॉलोनी में कि सब लड़का बच्चा एक से बिल्कुल दिखते हैं कीचड़ में, सब ब्लैक एंड व्हाइट हो जाते हैं। अब कम से कम एंटी व्यवस्था कर दो, अब बच्चा ही नहीं पहचान पा, जब पूरे मोहल्ला के बच्चों के मुंह धो जब अपनो बच्चा पहचान पा। अब आज बच्चों को धोखा हो रहा हो, कल को आदमियों को धोखा होने लगे तो लफड़ी करो।
0: आगे बढ़े महिला आई एक, क्यों जय हैं क्या नेता जी? हाँ हाँ जय हैं। राम राम नेता जी। राम राम, कहिए क्या बात है?
2: एक समस्या थी हमारे यहाँ।
0: बताइए बताइए क्या समस्या?
2: समस्या ये थी कि हमारी लैट्रिन 3 दिन से साफ नहीं।
0: तो नेता जी बोले इसमें मैं क्या कर सकता हूँ?
2: करना कुछ नहीं, आपको मोह भर चलाना है।
0: आप लोग हंस देते हो, नेताओं से बुराई हम लोगों की हो जाती है।
3: और दोस्तों हंसने हंसाने का ये सिलसिला आगे जारी रहेगा, मगर आज यहीं आपसे इजाजत मांगता है आपका दोस्त रजनीकांत त्रिवेदी।

संग्रहालय से के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक हंसना मना है का नवा भाग। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया की यात्रा आधिकारिक रूप से संपन्न कर ली है। इस यात्रा ने भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को भविष्य के अनुरूप एक नई दिशा और मजबूत आधार प्रदान किया है। यात्रा का समापन प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट मैदान में खेल कूटनीति के ऐतिहासिक कार्यक्रम के साथ हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है। करीब चार दशक के लंबे अंतराल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड फोरलेन मार्ग परियोजना का भूमि पूजन करेंगे। लगभग 98.73 किलोमीटर लंबी ये परियोजना 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 2 वर्ष में पूरी होगी। इससे लगभग 35 लाख आबादी और 62 गांव प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि E85 ईंधन E20 पेट्रोल से करीब 20 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। उन्होंने कहा है कि E85 केवल उन वाहनों के लिए उपलब्ध होगा जो विशेष रूप से इस ईंधन के उपयोग के लिए डिजाइन किए गए हैं। प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके तहत किसानों को 1 साल तक हर माह 1,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। गृह विभाग द्वारा पद्म पुरस्कार वर्ष 2027 के लिए नामांकन 15 जुलाई तक ऑनलाइन कराया जा सकता है। वहीं राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल का उपयोग भी किया जा सकता है। और हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर मेजबान इंग्लैंड के साथ टेस्ट मैच खेलेगी। ये मैच दोपहर 3:30 बजे से होगा। ये लॉर्ड्स में खेला जाने वाला पहला महिला टेस्ट मैच भी होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर। दोपहर के 1 बजे हैं। प्रस्तुत है महिलाओं का पसंदीदा कार्यक्रम महिला सभा।

महिला सभा सुनने वाली सभी प्यारी सखियों का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम में। आज आपके साथ हूँ मैं प्रीति जोशी, आप सभी को मेरा नमस्कार। सखियों, छोटा परिवार खुशहाल परिवार, जनसंख्या पर नियंत्रण पाओ, पृथ्वी को हरा भरा बनाओ। सखियों, ये जो स्लोगन है ना, वो इसलिए बने हैं कि हम बढ़ती जनसंख्या के वैश्विक प्रभाव को समझ सकें। एक संतुलित और उज्जवल भविष्य के लिए जनसंख्या पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम प्रतिवर्ष कल यानी 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य बढ़ती जनसंख्या, परिवार नियोजन, गरीबी, लिंग समानता और मानव अधिकारों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लोगों के बीच वैश्विक जागरूकता फैलाना है। यह दिन हमें याद दिलाता है सखियों कि पृथ्वी के सीमित संसाधनों पर अधिक जनसंख्या का दबाव पड़ रहा है। बढ़ती हुई आबादी के कारण आज वनों की कटाई हो रही है, प्रदूषण बढ़ रहा है, पानी की कमी हो रही है, ऐसी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इसी समस्या का समाधान जो है, उसका एकमात्र समाधान यही है सखियों कि परिवार नियोजन, शिक्षा और जागरूकता फैलाई जाए। इस वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस 2026 की थीम है युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को साकार करना आज और भविष्य के लिए। सखियों, जनसंख्या का संतुलन एक स्वस्थ और स्थिर समाज का आधार है। परिवार नियोजन और शैक्षिक जागरूकता के माध्यम से हम अपनी जनसंख्या को संतुलित कर सकते हैं। जब सखियों जनसंख्या पर नियंत्रण होगा तो आर्थिक अवसर भी बढ़ेंगे और एक बेहतर संभावनाओं से भरा भविष्य बना सकेंगे। तो सखियों, आइए संकल्प लें कि हम अपने परिवारों को सीमित और शिक्षित रखेंगे और समाज में जनसंख्या नियंत्रण के प्रति जागरूकता फैलाएंगे। फिलहाल कार्यक्रम में बातें आपसे और भी करेंगे, लेकिन पहले सुनवाते हैं आपको बहुत ही खूबसूरत सा गीत। जगजीत सिंह और चित्रा की आवाज़ है और फिल्म है साथ साथ।

इस खूबसूरत से गीत के बाद सखियों अब बात करते हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की। सखियों, भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित यह एक केंद्रीय योजना है। इस योजना का उद्देश्य गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को उनके पहले बच्चे और दूसरा बच्चा अगर बालिका है तो बच्चे के जन्म के समय पोषण हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत प्रथम संतान के लिए कुल 5,000 रुपये की राशि 3 किश्तों में दी जाती है। दूसरे बच्चे के रूप में लड़की के जन्म पर 6,000 रुपये की एक मुश्त सहायता प्रदान की जाती है। सखियों, गर्भावस्था के दौरान मजदूरी के नुकसान की आंशिक भरपाई और उचित पोषण व स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करना इस योजना का उद्देश्य है। योजना का लाभ लेने के लिए गर्भवती महिला अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र या आशा कार्यकर्ता से संपर्क कर सकती है। आवेदन के लिए माता पिता का आधार कार्ड, बैंक या डाकघर की जो पासबुक होती है वो, या MCP यानी मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड की भी

0: जी, सबसे पहले तो स्वागत है हमारे स्टूडियोज में आपका।
1: हाँ जी नमस्कार।
0: भारती जी, जैसा कि आज का हमारा विषय है कि माँ का दूध, तो मैं ये जानना चाहती थी कि माँ का दूध शिशु के लिए क्यों सर्वोत्तम आहार है?
1: हाँ जी, देखिए माँ का दूध जो है बच्चे के लिए सर्वोत्तम आहार है। यह कुदरत की बच्चे को सर्वश्रेष्ठ देन है, क्योंकि माँ के दूध के रूप में बच्चा न केवल एक पौष्टिक आहार प्राप्त करता है बल्कि कई रोगों से लड़ने की ताकत उसमें आ जाती है
0: जी।
1: और साथ ही साथ माँ का अतुल्य प्यार उसे मिलता है।
0: जी, ये तो माँ के दूध की बात हुई। द्विवेदी जी, मैं ये जानना चाह रही थी कि किसी भी शिशु के लिए समुचित आहार की क्या उपयोगिता है?
1: देखिए, समुचित आहार की उपयोगिता शिशु के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा सहायक होती है। हमारे यहाँ जो चल रहा है आजकल की बच्चों की शिशु की मात्र शिशु की मृत्यु दर काफी ज्यादा है। जब हम देखते हैं कि विकसित देशों में ये मृत्यु दर काफी कम हो गई है, पर हमारे यहाँ ये दर अभी भी काफी ज्यादा बनी हुई है और WHO और यूनिसेफ लगातार इस कोशिश में है और हमारी सरकार इस कोशिश में है कि शिशु मृत्यु दर को कैसे घटाया जाए। तो शिशु मृत्यु दर को घटाने का एकमात्र तरीका है कि बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले, पौष्टिक आहार उनको मिले, और उसमें सबसे पहली भूमिका आती है माँ के दूध की। जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो बच्चों के शिशुओं के मृत्यु दर में न केवल कमी करती है बल्कि शिशुओं को कई रोगों से लड़ने की ताकत देती है, माल न्यूट्रिशन से बचाती है, डेफिशिएंसी विटामिन ए डेफिशिएंसी से बचाती है, कई बीमारियों से लड़ने की ताकत देती है।
0: जी, माँ का दूध किस तरह से शिशुओं के लिए पहला टीका होता है, इसके बारे में थोड़ा बताएं।
1: जी हाँ, जो माँ का दूध है जो सबसे पहले पिलाया जाता है उसे कोलेस्ट्रम कहते हैं, और कोलेस्ट्रम में कुछ ऐसे इम्यूनोग्लोबुलिंस होते हैं जो बच्चे में, जैसे हम टीका लगाने के बाद इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, वैसे ही कोलेस्ट्रम बच्चों के शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करता है और उससे कई बीमारियों से लड़ने की बच्चे में ताकत पैदा होती
0: है। जी जी जी। अच्छा, माँ का दूध अगर हम बच्चे को देते हैं तो वो उन्हें किन किन रोगों से बचाता है? बहुत सारे बच्चों में रोग उत्पन्न हो जाते हैं, अगर माँ का दूध उन्हें प्रॉपर दिया जाए तो उन्हें प्रतिरोधक क्षमता उनकी किस कदर बढ़ जाती है?
1: बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कई बीमारियां जैसे डायरिया होता है जो सबसे बड़ा कारण है शिशु मृत्यु दर का, उससे इससे लड़ने में उसको शक्ति मिलती है। दूसरी बात, जो निमोनियाज होते हैं, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है जो दूसरा बड़ा कारण है शिशु मृत्यु दर का, उससे भी लड़ने में उनको इम्यूनिटी मिलती है। जो स्तनपान के कई एडवांटेजेस हैं, कई फायदे हैं जो बहुत जरूरी हैं शिशु के बड़े होने में। सबसे पहला कि इसमें न्यूट्रिशियस होता है, सारे प्रोटीन्स विटामिन्स जो कुछ बच्चे की कोमल नाजुक आंतों के लिए जरूरी है वो सारे तत्व बच्चे को सुगमता से मिल जाते हैं, बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाते हैं। माँ का दूध बहुत अच्छे से इजी होता है पिलाने के लिए, माँ कहीं पर भी बैठ के बच्चे को फीड कर सकती है, हाइजीनिक होता है, इन्फेक्शन की कोई संभावना नहीं होती, और एलर्जिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं बच्चों को एलर्जी डेवलप होने से ये रोकते हैं, दूसरा डायरिया और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को रोकते हैं, तीसरा ब्रेस्ट फीडिंग जो होती है वो इकोनॉमिकल होती है, जो गरीब माताएं हैं वो भी अपने बच्चों को भरपूर पोषण दे पाती हैं ब्रेस्ट फीडिंग के, स्तनपान के जरिए।
0: अच्छा, ब्रेस्ट फीडिंग की हमने बात करी, स्तनपान की, तो स्तनपान की तैयारियां हमें कब से शुरू करना चाहिए और कैसे उसकी तैयारी करें कि डिलीवरी के बाद तुरंत हम बच्चे को स्तनपान करा सकें?
1: हाँ जी, जो माँ सबसे पहले माँ बनने वाली है, जैसे प्राइमरी है, छोटी उम्र के हैं, या कोई भी मदर है जिसको प्रेगनेंसी थोड़ा सा एडवांस मिडिल स्टेज में चली गई है, जैसे छठा सातवां महीना है, तो माँ को साइकोलॉजिकली प्रिपेयर करना चाहिए कि उसे ब्रेस्ट फीडिंग ही करनी है बच्चे की। दूसरी बात, उनको तरीका शुरू से ही सिखाना रहता है, कुछ बीमारियां जो ब्रेस्ट में होती हैं उनको देखना रहता है, और गर्भावस्था के आखिरी हफ्तों में ब्रेस्ट फीडिंग के लिए विग्रस तैयारियां, हमें जोर शोर से तैयारियां करनी पड़ती है कि माँ सिर्फ बच्चे को अपना ही दूध पिलाए, उसके अलावा कुछ ना पिलाए।
0: अच्छा, जब हम दूध पिलाना शुरू करते हैं बच्चे को तो कितने घंटों के अंतराल में स्तनपान कराना ज्यादा लाभदायक होता है?
1: मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जैसे ही नॉर्मल डिलीवरी होती है तो बच्चे को माँ के पास ही रखना सबसे ज्यादा उचित है, और जितनी जल्दी से जल्दी हो सके माँ का दूध उसको पिलाना चाहिए। जहां तक नॉर्मल डिलीवरी होती है तो आधा घंटे के अंदर हमको माँ का दूध बच्चे को पिला देना चाहिए, और यदि ऑपरेशन से डिलीवरी हुई है, सिजेरियन हुआ है, तो 2 घंटे के अंदर अंदर हमें कोशिश करना चाहिए कि बच्चे को माँ का दूध मिल जाए।
0: अच्छा, अक्सर जब बच्चा रोता है तब माएं सोचती हैं कि बच्चा भूखा है और उसे दूध पिला दिया जाए, तो क्या ये सही होता है कि बच्चा?
1: बिल्कुल सही है, ये ऑन डिमांड फीडिंग बोलते हैं इसको, बच्चे की रिक्वायरमेंट जब होती है, बच्चा रोना शुरू

0: करता है और 90% केसेस में बच्चे को भूख ही लगी होती है, तो उन केसेस में हमें शुरू में ऑन डिमांड फीडिंग करना चाहिए, फिर धीरे धीरे 3-3 घंटे के इंटरवल पे बच्चा अपने आप दूध को लेने
1: अच्छा
0: लगे।
1: हम ये कैसे पता लगाएं कि बच्चे का पेट भर रहा है कि नहीं, उसको कितनी मात्रा पर्याप्त मात्रा में दूध मिला है कि नहीं, ये कैसे हम पता लगा सकते हैं?
0: ये इसको जांचने का ये तरीका है कि बच्चा दूध पीने के बाद 2 या 3 घंटे सो रहा है और हर 2 घंटे में बच्चा यूरिन पास कर रहा है, बच्चे का ग्रोथ, बच्चे का वजन प्रॉपरली बढ़ रहा है, और बच्चा यदि प्लेफुल है, खेलता है अच्छे से, बार बार रोता नहीं है, तो इसका मतलब है कि बच्चे को प्रॉपर फीडिंग मिल रही है।
1: अच्छा ये और एक बात हमारी सखियां भी जानना चाहेंगी कि किस उम्र तक बच्चे को दूध पिलाया जाए? अमूमन 6 माह तो बोला ही जाता है कि बच्चे को फीडिंग करवाई जाए, फिर भी किस उम्र तक बच्चे को दूध पिलाया जा सकता है?
0: देखिए 6 महीने तक तो ये कहा जाता है कि बच्चे को माँ के दूध के अलावा कोई भी ऊपर का दूध या ऊपर का खाना या ऐसा कुछ ना दिया जाए, यहाँ तक कि पानी भी माँ के दूध के साथ में देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध दिया जाए और 6 महीने के बाद बच्चे को माँ के दूध के साथ साथ ऊपर की थोड़ी थोड़ी चीजें जो घर में बनी रहती हैं, जैसे मैश करे हुए दाल चावल है, सूजी है, सूजी का हलवा है, इस तरह की चीजें बच्चे को धीरे धीरे माँ के दूध के साथ में शुरू करी जाती हैं, उसको वीनिंग कहा जाता है।
1: डॉक्टर साहब पहले एक चीज मैं ये जानना चाह रही थी कि कुछ समस्याएं माँ और बच्चे के बीच में ऐसी आ जाती है कि बच्चे को ठीक से फीडिंग नहीं करवा पाती है माएं, तो वो किस कारण से, उस समय क्या किया जाए?
0: हाँ जी, कई प्रॉब्लम्स आती हैं फीडिंग मदर्स को,
1: जैसे माँ की तबीयत ठीक नहीं है या
0: माँ की कई बार
1: है?
0: माँ जो है डिलीवरी के बाद में रेस्ट प्रॉपर नहीं कर पाती है या उसको कुछ प्रॉब्लम्स चलती रहती है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसके कारण से माँ इस हालत में नहीं होती कि बच्चे को प्रॉपरली फीड कराए, तो उसमें माँ को सपोर्ट देना जरूरी है। कई बार माएं कॉन्फिडेंस नहीं रखती हैं अपने आप में, उनको आत्मविश्वास की कमी होती है कि शायद वो बच्चे को फीड नहीं करा पाएंगी, तो उसमें उनको कॉन्फिडेंस उनका बढ़ाना, फिर प्रॉपरली उनको पोजीशन बताना कि कैसे किस पोजीशन में प्रॉपर तरीके से बच्चे को फीडिंग कराई जाए, जैसे बच्चे को हाथ के ऊपर गोद में लेकर के जिस तरफ वो पिला रही है उसी तरफ सिर रख के थोड़ा सा सिर को एक्सटेंशन की मतलब
1: उठा के थोड़ा
0: थोड़ा सा उठा करके और निप्पल का आसपास का जो एरियोला जिसको हम बोलते हैं पूरा के पूरा निपल माँ बच्चे के मुंह में दे करके ये उनको बताना पड़ेगा कि इस तरह से प्रॉपर यदि फीडिंग कराएंगे तो कोई कारण नहीं है कि माँ को कोई प्रॉब्लम्स इसमें आए।
1: किन अवस्थाओं में माँ का दूध पिलाना वर्जित होता है? क्या माँ को बहुत ज्यादा बीमारी है या माँ बिल्कुल पलंग पे से उठ नहीं पा रही है इसलिए दूध नहीं पिला सकती है?
0: यदि ऐसा यदि कुछ ऐसी सीरियस बीमारी है तो अलग बात है, पर इसके अलावा जो कुछ खास बीमारियां हैं जिसमें हम लोग एडवाइज नहीं करते हैं, उनमें से है एक तो HIV एड्स की बीमारी जिसमें कि ब्रेस्ट फीडिंग को मना किया गया है, पर यदि माँ बहुत पुअर है, बहुत गरीब है और बाहर ऊपरी फीडिंग का इंतजाम नहीं कर सकती है, तो ऐसी कंडीशन में हमको माँ को काउंसलिंग करना पड़ती है, उसे समझाते हुए कि ब्रेस्ट फीडिंग से बीमारी बच्चे में फैलने का खतरा है, ये बताते हुए उसको समझाइश देनी पड़ेगी। दूसरा है कि थायराइड ड्रग्स यदि माँ ले रही है, थायराइड उसको बीमारी है थायराइड की, तो ऐसी कंडीशंस में माँ का दूध पिलाना वर्जित किया जाता है। इसके अलावा जैसे माँ को यदि किसी तरह का कैंसर है, उसे कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी दी जा रही है, तो उस कंडीशंस में भी बच्चों को फीडिंग अलाउ हम लोग नहीं करते हैं।
1: भारती जी मैं एक बात और कहना चाह रही थी, कुछ बातें अगर छूट रही हैं स्तनपान से संबंधित या दूध पिलाने से संबंधित तो वो भी आप जरा बता दीजिए हमारी सखियों को।
0: हाँ जी, दूसरा ये मैं बताना चाहती थी कि एक तो पोजीशन का बहुत ध्यान रखना चाहिए, दूसरा बच्चों को दूध पिलाते पिलाते बीच में उनका जो अंदर हवा भी बच्चे सक कर लेते हैं, तो ऐसी कंडीशन में बच्चों को कंधे पर थोड़ा सा ठपठपा के पीठ को उनको डकार दिलाना चाहिए ताकि बच्चा प्रॉपरली फिर से दूध पी सके। दूसरी बात यह कि कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जैसे रिट्रैक्टेड निपल्स होते हैं, निपल्स इन्वर्टेड होते हैं कई बार, तो उस कंडीशन में प्रेगनेंसी में ही आखिरी में हमें ये पता चल जाता है कि माँ को ये बीमारी है और रिट्रैक्टेड और इन्वर्टेड निपल्स का इलाज करके बाद में डिलीवरी के बाद माँ आराम से बच्चे को दूध पिला सकती है। कभी कभी माएं आती हैं कि बच्चे निपल्स में कट लग गए हैं और वो फीडिंग नहीं कर पा रही है, तो उन कंडीशंस का इलाज हम करते हैं और आराम से माँ दूध पिला सकती है।
1: बिल्कुल भारती जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी और आप हमारे स्टूडियोज में आई और माँ के दूध के महत्व और उपयोगिता के बारे में बहुत अच्छी हमारी श्रोताओं को जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भेंटवार्ता, माँ का दूध शिशु के लिए पहला टीकाकरण। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर भारती द्विवेदी जी। उनके बताए गए जो निर्देश हैं वो यकीनन आपको

सखियों, इस खूबसूरत से गीत के बाद आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मी टाइम की। सखियों, आज मी टाइम में हम बात करेंगे एक ऐसे शौक की जिसमें आपके विचार, संदेश, आपके रंगों के उपयोग करने की समझ झलकती है। आप समझ ही गई होंगी कि हम बात कर रहे हैं ग्राफिक डिज़ाइन की। कई बार हम काम में दक्ष होने के बावजूद भी घर के कामों में ही लगी रहती हैं, पर आज हमें अपनी प्रतिभा को भी निखारना है। इसीलिए मी टाइम एक ऐसा समय है जिसमें आप अपनी स्किल को बढ़ा सकती हैं, घर बैठे अच्छे से अर्न कर सकती हैं, अपने वजूद को पा सकती हैं। आप ग्राफिक डिजाइनर की जो मांग है आज हर जगह है, तो ग्राफिक डिजाइनिंग में महिलाएं जो हैं वो घर बैठे अच्छी कमाई कर सकती हैं, तो एक फायदा ये है, और अपना शौक पूरा कर सकती हैं। आप फोटोशॉप सीख सकती हैं, लोगो डिजाइन करके सोशल मीडिया ग्राफिक्स, वेब जो बैनर होता है, या प्रिंट डिजाइनर जैसे काम ऑनलाइन कर सकती हैं। अपना एक पोर्टफोलियो बनाकर आप ऑनलाइन अपडेट कीजिए। जब लोग आपके डिज़ाइन देखेंगे तो क्लाइंट आपके बढ़ेंगे और आपकी कमाई भी अच्छी होने लगेगी। बैनर होता है या प्रिंट डिज़ाइनर जैसे काम ऑनलाइन कर सकती हैं। अपना एक पोर्टफोलियो बनाकर आप ऑनलाइन अपडेट कीजिए। जब लोग आपके डिज़ाइन देखेंगे तो क्लाइंट आपके बढ़ेंगे और आपकी कमाई भी अच्छी होने लगेगी। सबसे पहले आपको एक अच्छी स्किल सेट बनानी होगी, मतलब बेसिक से एडवांस लेवल तक ग्राफिक

डिज़ाइनिंग जो है, डिज़ाइनर जो है, वो सॉफ्टवेयर का जो ज्ञान है वो होना चाहिए आपके पास। उसके बाद आपके डिज़ाइन सोशल मीडिया पर अपलोड करें, साथ ही छोटे छोटे प्रोजेक्ट लें, तो आपको रिव्यू जो है वो और जो रेटिंग है वो भी मिलेगी। अच्छी रेटिंग मिलने पर लोगों का ध्यान आपकी ओर जाएगा और काम मिलना आपको शुरू हो जाएगा, जिससे आपकी जो पहचान है वो बढ़ेगी। तो सखियों, सिर्फ घर पर फ्री नहीं बैठे रहना है, अपने लिए समय निकालें, अपने हुनर को प्रोफेशनल बनाएं और सक्षम बन जाएं। और साथ ही सखियों, आज एक और विषय पर हम बात करेंगे, ये जानना भी है ज़रूरी में, डोर स्टेप बैंकिंग से घर बैठे आप कैसे सेवा ले सकती हैं। सखियों, ये तो आपको पता ही है कि आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल आज हर जगह हो रहा है। कई सारे मोबाइल में ऐसे ऐप आ गए हैं जिनका उपयोग करके हम घर पर ही शॉपिंग कर सकते हैं, कई प्रोडक्ट बुलवा सकते हैं, यानी हम महिलाएँ अब हो गई हैं स्मार्ट। यही स्मार्टनेस अब बैंकिंग

निकासी और फॉर्म जमा करने जैसी सुविधा देते हैं। बस इसके लिए आपको अपने बैंक की जो वेबसाइट है उस पर जाकर बैंक का ऐप और सेवाओं का जो शुल्क है वो जमा करना होगा। बैंकों की ओर से डोर स्टेप फैसिलिटी जो है वो सीनियर सिटीजन्स और विकलांगों के लिए शुरू की गई एक अच्छी पहल है। इसका लाभ आज हर नागरिक ले रहा है। तो आप भी घर बैठे ही डोर स्टेप बैंकिंग के जरिए अपने घर बैठे जितने भी बैंक के काम हैं वो सारे करिए और स्मार्ट बन जाइए। तो ये तो बात हुई स्मार्ट बनने की, और अब सुनवा देते हैं आपको एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

सखियों, ये खूबसूरत सा गीत यकीनन आपको पसंद आया होगा और आज का कार्यक्रम भी। लेकिन अब घड़ी इशारा कर रही है कि समय समाप्त हो रहा है। आपको बता दें, आज के इस प्यारे से कार्यक्रम का संयोजन किया था डॉक्टर प्रीति छड़ीदार ने, और अब प्रीति जोशी को दें अनुमति। नमस्कार।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए रोमहृति चौरसिया की आवाज में लोकगीत। हमारा आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति है।

इस लोकगीत के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। हमारा आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अगला कार्यक्रम भी हमारा छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति है और पेश है सुगम संगीत का कार्यक्रम, जिसमें हम आपको सुनवा रहे हैं अटल शुक्ला की आवाज़ में चंद भजन।

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे अटल शुक्ला के गाए भजन। हमारा ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: इस समय आप हैं हमारे साथ।
2: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।
3: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
4: क्या बात है सखी, बड़ी खुश नजर आ रही हो।
5: खुशी की तो बात है, हमारा पसंदीदा कार्यक्रम महिला सभा अब मंगलवार के साथ साथ गुरुवार और शुक्रवार को भी होगा।
4: अरे वाह, ये तो वाकई खुशी की बात है। समय क्या रहेगा?
5: वही दोपहर 1 बजे।
4: तो सुनना ना भूले कार्यक्रम महिला सभा।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो गए हैं। वे आज और कल ऑकलैंड में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इससे पहले मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में उन्होंने भारत ऑस्ट्रेलिया स्पोर्ट्स कोलैबोरेशन रोडमैप का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने युवा खिलाड़ियों से मुलाकात की और पूर्व कप्तान स्टीव वॉ से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि खेल दोनों देशों को जोड़ने की अनोखी ताकत रखते हैं। ये पहल 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स और 2032 ब्रिस्बेन ओलंपिक की तैयारियों के मद्देनजर अहम मानी जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड फोरलेन मार्ग का भूमि पूजन करेंगे। लगभग 99 किलोमीटर लंबी ये परियोजना 5017 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी। इससे उज्जैन को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से सीधा जुड़ाव मिलेगा। सिंहस्थ 2028 के दौरान श्रद्धालुओं को इसका खास लाभ होगा। दो साल में तैयार होने वाली इस परियोजना से 35 लाख आबादी लाभान्वित होगी। प्रदेश के खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने गेहूं खरीदी में कमी पर सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने अपर मुख्य सचिव रश्मि अरुण शमी को गहन समीक्षा करने के लिए कहा है। अब सभी जिला कलेक्टर कमी के कारणों की पहचान करेंगे। इस साल गेहूं खरीदी में प्रति क्विंटल कमी घटकर 70 ग्राम रह गई है, जो पिछले वर्षों से काफी कम है। बावजूद इसके कमी की भरपाई संबंधित समितियों और परिवहनकर्ताओं से कराई जाएगी। गृह विभाग ने पद्म पुरस्कार 2027 के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। कला, विज्ञान, चिकित्सा, खेल सहित कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले आवेदन कर सकते हैं। योग, वन्यजीव संरक्षण और कृषि जैसे क्षेत्र भी इसमें शामिल किए गए हैं। इच्छुक व्यक्ति जिला कलेक्टर के माध्यम से पोर्टल पर 15 जुलाई तक नामांकन दर्ज करा सकते हैं। भारत सरकार को सीधे नामांकन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल का भी उपयोग किया जा सकता है। प्रदेश में यात्री सुरक्षा को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस और परिवहन विभाग ने मिलकर लोक परिवहन बसों की विशेष चेकिंग की। एक सप्ताह तक चले इस अभियान में 12,000 से अधिक बसों का निरीक्षण किया गया। जांच में 4,787 चालान बनाए गए और 33 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया। 128 बसों में गंभीर सुरक्षा खामियां पाई गई। इनमें से 22 वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र रद्द कर दिए गए हैं। और अब बात मौसम की। प्रदेश में मॉनसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है। अब तक 234.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य से 10% अधिक है। भोपाल, इंदौर और उज्जैन सहित 32 जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है। मौसम विभाग ने आज के लिए पन्ना और सतना के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक अगले 4 दिनों तक प्रदेश में बारिश जारी रहने का अनुमान है। प्रदेश की 2 महिला मुक्केबाजों को बड़ी उपलब्धि मिली है। अंजलि सिंह और माही लामा का चयन कॉमनवेल्थ बॉक्सिंग कैंप के लिए हुआ है। ये शिविर 10 से 24 जुलाई तक ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित होगा। दोनों खिलाड़ी कल स्कॉटलैंड के लिए रवाना हुई। खेल मंत्री विश्वास सारंग ने दोनों को शुभकामनाएं दी हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा पुलिस विभाग द्वारा स्कूल वाहनों में निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन कराने के उद्देश्य से जिले में कल से 10 दिवसीय स्कूल वाहन चेकिंग अभियान की शुरुआत हुई। शिवपुरी जिले में कलेक्टर अर्पित वर्मा ने कल शासकीय कृषि प्रक्षेत्र रन्नौद स्थित बीज प्रक्रिया केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने वहां बीजों की साफ सफाई, ग्रेडिंग और भंडारण की प्रक्रिया का जायजा लिया। खंडवा में स्वर सम्राट किशोर कुमार के जन्मदिन के अवसर पर जिले में 2 से 4 अगस्त तक 3 दिवसीय खंडवा गौरव दिवस का आयोजन किया जाएगा। धार जिले की पद्मावत तहसील में अमानक बीज के उपयोग से सोयाबीन फसल प्रभावित होने पर कृषि विभाग ने संबंधित डीलर और कंपनी संचालक के विरुद्ध मामला दर्ज कराया है। मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष शैभान सिंह पवैया ने कल जबलपुर कलेक्टर कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में शामिल हुए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन के दौरे पर ऑकलैंड पहुंच रहे हैं। वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा युक्त दवाओं को विनियमित करने के लिए

0: मादक पदार्थ के नियमों में संशोधन किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में युद्ध के दौरान यौन हिंसा की कड़ी निंदा की, इसे युद्ध और आतंकवाद का हथियार बताया। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से।
1: और महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत आज शाम लंदन में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड पहुंच रहे हैं। श्री मोदी वहां न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है। भारत और न्यूजीलैंड इस वर्ष अपने खेल संबंधों के 100 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। हमारे विशेष संवाददाता मंजू मीणा ने बताया है कि हॉकी से शुरू हुई ये यात्रा आज भी दोनों देशों के बीच दोस्ती और सहयोग का मजबूत माध्यम बनी हुई है।
2: भारत और न्यूजीलैंड के खेल संबंधों की शुरुआत वर्ष 1926 में हुई, जब भारतीय सेना की हॉकी टीम न्यूजीलैंड दौरे पर आई। इस ऐतिहासिक टीम का हिस्सा हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद भी थे। यही दौरा उनके अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत माना जाता है और यहीं से उन्होंने दुनिया को अपनी अद्भुत हॉकी का परिचय कराया। एक सदी बाद दोनों देशों के खेल संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। इसी वर्ष ऑकलैंड में आयोजित FIH महिला नेशंस कप में भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को हराकर खिताब अपने नाम किया। पूर्व हॉकी न्यूजीलैंड मुख्य कार्यकारी अधिकारी और 1976 ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता रमेश पटेल ने आकाशवाणी से खास बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा से दोनों देशों के बीच खेल सहयोग को नई गति मिलेगी। सौ वर्षों की इस खेल यात्रा ने यह साबित किया है कि हॉकी केवल एक खेल नहीं बल्कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मित्रता, विश्वास और लोगों के बीच मजबूत रिश्तों का एक सशक्त सेतु भी है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार, ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण राजकीय यात्रा आधिकारिक रूप से संपन्न हो गई है। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे।
3: यात्रा की शुरुआत भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच से हुई, जहां कारोबार जगत के प्रमुखों ने वर्ष 2022 के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से द्विपक्षीय व्यापार में 55% की वृद्धि का स्वागत किया। इस गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि ये बहुसांस्कृतिक शक्ति ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता एंगस टेलर से भी मुलाकात की। श्री टेलर ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया का सच्चा मित्र बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम निर्यात जैसी पहलों का समर्थन किया। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान भव्य स्वागत और आतिथ्य के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार और वहां की जनता के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: भारत ने युद्ध के दौरान की जाने वाली यौन हिंसा CRSV की कड़ी निंदा करते हुए इसे युद्ध, आतंकवाद, यातना और राजनीतिक दमन का एक हथियार बताया है, जिसका प्रयोग समुदायों को अधीन करने, असहमति को दबाने और मानवीय पीड़ा पहुंचाने के लिए किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पी हरीश ने युद्ध की अवधि में की जाने वाली यौन हिंसा पर कहा कि इस तरह के हिंसा में दंड न दिए जाने के कारण ये जारी है। उन्होंने कहा कि भारत ऐसे जघन्य कृत्यों की कड़ी निंदा करता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में हाल में हमलों के बाद इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू को खाड़ी क्षेत्र में अमरीकी सेना की नई गतिविधियों के बारे में जानकारी दी है। इसराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार दोनों नेताओं ने कल रात फोन पर बातचीत की और अमेरिका तथा इसराइल के बीच विभिन्न क्षेत्रों में तालमेल बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की। इस बीच ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ने कल दावा किया कि उसने उत्तरी जॉर्डन में अमेरिका के अल अजराक सैन्य

0: हवाई अड्डे पर 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। उसने कहा कि हमला तेहरान पर हाल ही में हुए अमरीकी हमले के जवाब में किया गया था। उसने चेतावनी दी कि अमरीका की ओर से किसी भी सैन्य कार्रवाई किए जाने पर जवाब में क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर और हमले किए जाएंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन यायर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonyayar.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा वाली औषधियों के नियमन को और सख्त करने के लिए औषधि नियम 1945 में संशोधन किया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इथाइल अल्कोहल युक्त औषधियों के लिए अनुसूची के तहत लाइसेंस अनिवार्यता से मिली मौजूदा छूट समाप्त कर दी है। मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार 30 मिलीलीटर से अधिक मात्रा में 12% से अधिक इथाइल अल्कोहल वाली सभी औषधियों को अब छूट प्रदान नहीं की जाएगी। ऐसी औषधियों को औषधि और कॉस्मेटिक अधिनियम 1940 के अंतर्गत आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करना होगा। इस संशोधन से अल्कोहल युक्त औषधीय उत्पादों पर नियामक निगरानी और मजबूत होने की उम्मीद है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज वर्चुअल माध्यम से शिमला स्थित भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान की प्रदर्शनी वंदे मातरम एक यात्रा का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने सरदार पटेल का दृष्टिकोण एकीकरण एकता और संघवाद विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र को भी संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वंदे मातरम ने स्वतंत्रता सेनानियों की कई पीढ़ियों को साहस बलिदान और आशा से प्रेरित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सरदार पटेल ने एक राष्ट्र एक संविधान और साझा राष्ट्रीय भविष्य की मजबूत नींव रखी।
1: टुडे भारत इज मार्चिंग कॉन्फिडेंटली टुवर्ड्स द विजन सेट बाय आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ए विकसित भारत बाय 2047। नेशनल इंटीग्रेशन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड यूनिटी इन डाइवर्सिटी रिमेन एज रिलेवेंट एज एवर। सरदार वल्लभभाई पटेल जी बिलीव्ड फॉर ए रिच डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया ए स्ट्रांग सेंटर वाज एसेंशियल टू मेंटेन यूनिटी एंड सिक्योरिटी।
0: गुजरात में राज्य सरकार ने सूरत के बाढ़ प्रभावित इलाकों में हालात सामान्य करने के लिए बड़े पैमाने पर राहत अभियान शुरू किया है। उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने प्रशासन को निर्देश दिया कि अगले 48 से 72 घंटों के अंदर सामान्य जीवन और कारोबार पूरी तरह से बहाल किया जाए। गोवा सरकार ने प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव पहल को समर्थन दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने कहा कि इस कदम से सरकारों को विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करने और बेहतर शासन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। एक रिपोर्ट।
2: एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर विचार विमर्श के लिए गोवा आई संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष गोवा सरकार ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने कहा कि एक साथ चुनाव होने से सरकारें विकास कार्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेंगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने इस संबंध में अपने सुझाव समिति को सौंप दिए हैं और विश्वास व्यक्त किया है कि यह प्रस्ताव सकारात्मक रूप से आगे बढ़ेगा। संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने बताया कि बैठक में शामिल मंत्रियों ने कहा कि विभिन्न राज्यों में बार बार होने वाले चुनावों का गोवा के पर्यटन क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बैठक में मंत्री सुदीन ढवळीकर, सुभाष पल देसाई, सुभाष शिरोडकर और दिगंबर कामत भी उपस्थित थे। आकाशवाणी समाचार के लिए पंजी से महेश चोपड़े।
0: पंजाब के मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर 11 और 12 जुलाई को दो दिन का विशेष शिविर आयोजित किया है। इससे पात्र मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत जनगणना प्रपत्र भरकर जमा कर सकेंगे। ये शिविर सुबह 8 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक जारी रहेगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ने 100% डिजिटल डेटा कलेक्शन के साथ जनगणना 2027 के पहले चरण यानी हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। एक महीने तक चले इस ऑपरेशन में केंद्र शासित प्रदेश के 24,000 से ज्यादा हाउस लिस्टिंग ब्लॉक शामिल किए गए। अब अगले चरण की तैयारी शुरू होगी। इसमें सितंबर में बर्फबारी वाले इलाकों में जनसंख्या की गिनती और इस साल अक्टूबर तक जिला जनगणना हैंडबुक तैयार करना शामिल है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले दो दिन तक हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उप हिमालय पश्चिम

0: बंगाल, सिक्किम और उत्तर पूर्वी भारत के उत्तरी भागों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कुछ जगह आज तड़के हल्की बारिश हुई। आकाशवाणी से बातचीत में मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर शशिकांत ने बताया कि दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में आज और कल बारिश की कोई चेतावनी नहीं है।
1: 1 जून से लेकर के 9 जुलाई तक भारत में -14% वर्षा कम दर्ज की गई है और आने वाले अगर हम 2 दिन की बात तो वर्षा का मुख्य जोन जो रहने वाला है वो हिमाचल प्रदेश, उत्तरी हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, उपमहाद्वीप, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के राज्य जिसमें अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा शामिल हैं। कल भी जो है यही पॉकेट्स मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उपमहाद्वीप, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के राज्य जहाँ पर वर्षा का स्पेल हैवी टू वेरी हैवी के रूप में ऑरेंज कलर के लिए हमने चेतावनी जारी की है।
0: हिमाचल प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि वहां कई हिस्सों में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित है।
2: शिमला, सोलन, बसरमौर जिलों सहित अन्य क्षेत्रों में व्यापक वर्षा से जनजीवन प्रभावित हुआ है। भारी बारिश के कारण नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने व नदी नालों के आसपास न जाने की अपील की है। भारी बारिश के चलते सोलन और सिरमौर जिले में आज सभी शिक्षण संस्थानों में अवकाश घोषित किया गया है। लगातार वर्षा से प्रदेश में विभिन्न इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं और कई स्थानों पर बिजली व पेयजल आपूर्ति भी बाधित हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी 1 सप्ताह तक प्रदेश भर में मौसम के खराब बने रहने की भावना जताई है। आज 5 जिलों कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि निस्वार्थ कर्म मानवता की सबसे बड़ी शक्ति है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सेवा और समर्पण की इसी भावना से प्रेरित होकर देश प्रत्येक नागरिक के जीवन को बेहतर बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने दिल्ली सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण और दिल्ली रिज इकोसिस्टम के संरक्षण के माध्यम से दिल्ली को हरा भरा बनाने की पहल का स्वागत किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को लिखे पत्र में उन्होंने इस पहल को पर्यावरण संरक्षण और सतत शहरी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। वहीं नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से और अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। उधर फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अमेरिका के बॉस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल में पहले हाफ तक कोई गोल नहीं हुआ। दूसरे हाफ में किलियन एम्बाप्पे ने 60वें मिनट में और उस्मान डेम्बले ने 66वें मिनट में गोल कर फ्रांस को जीत दिलाई। एम्बाप्पे 30 साल की उम्र से पहले विश्व कप में 20 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज लंदन के लॉर्ड्स मैदान में मेजबान इंग्लैंड के साथ ऐतिहासिक टेस्ट मैच खेलेगी। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे शुरू होगा। ये पहली बार है जब लॉर्ड्स मैदान में महिला टेस्ट मैच खेला जाएगा। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज दोपहर में बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 755 अंक बढ़कर 77,497 पर, जबकि निफ्टी 232 अंक की बढ़त के साथ 24,195 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर ऑकलैंड पहुंच गए हैं। वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा युक्त दवाओं को विनियमित करने के लिए मादक पदार्थ नियमों में संशोधन किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में युद्ध के दौरान यौन हिंसा की कड़ी निंदा की, इसे युद्ध और आतंकवाद का हथियार बताया। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से और महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत आज शाम लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड से खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए पेश है आपकी फरमाइश। कार्यक्रम आपकी फरमाइश में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं प्रेम प्रतिज्ञा फिल्म का गीत। बप्पी लहरी और आशा भोसले की आवाज में इंदिवर की बोल हैं और बप्पी लहरी का संगीत। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं

डिस्ट्रिक्ट खरगोन से लोकेश मंडलोई, और इसी गीत को पसंद किया है छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबलेर पाटिल, राजेश राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश ने। तो आइए सुनते हैं हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद का ये गीत।

ग्राम सेगांव डिस्ट्रिक्ट खरगोन मध्य प्रदेश से हरीश चंद्र मंडलोई, छवि कुशवाहा और घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचौलिया, प्रियंका पंचौलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सम्मति पंचौलिया हमारे ये सभी श्रोता सुनना चाहते हैं इस प्यारे से गीत को।

आप सुन रहे थे राम लक्ष्मण के संगीत से सजा हुआ गीत, बोल थे असद भोपाली की फिल्म का नाम मैंने प्यार किया, और खूबसूरत आवाजें एसपी बालसुब्रमण्यम और साथियों की। कार्यक्रम में अगला गीत हमने लिया है जिसे गाया है अलका याग्निक और उदित नारायण ने। फिल्म का नाम है तेरे नाम, समीर के बोल हैं और तर्ज बनाई है हिमेश रेशमिया ने। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं डोंगर गांव से राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका गजबिये, बीबी अनिष्का और तन्मय गजबिये, और इसी गीत को पसंद किया है कवर कॉलोनी बड़वा से प्रमेश शिवाली, मीना शिमाली, आदित्य अदिति शिमाली और उनका परिवार।

इस गीत के साथ ही फिल्म आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे इस घंटे की खास खबरें।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो गए हैं। वे आज और कल ऑकलैंड में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इससे पहले मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में उन्होंने भारत ऑस्ट्रेलिया स्पोर्ट्स कोलैबोरेशन रोडमैप का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड फोर लेन मार्ग का भूमि पूजन करेंगे। लगभग 99 किलोमीटर लंबी ये परियोजना 5,017 करोड़ रूपये की लागत से बनेगी। इससे उज्जैन को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से सीधा जुड़ाव मिलेगा। प्रदेश के खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने गेहूं खरीदी में कमी पर सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने अपर मुख्य सचिव रश्मि अरुण शमी को गहन समीक्षा करने के लिए कहा है। अब सभी जिला कलेक्टर कमी के कारणों की पहचान करेंगे। गृह विभाग ने पद्म पुरस्कार 2027 के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। कला, विज्ञान, चिकित्सा, खेल सहित कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले आवेदन कर सकते हैं। योग, वन्यजीव संरक्षण और कृषि जैसे क्षेत्र भी इसमें शामिल किए गए हैं। प्रदेश में यात्री सुरक्षा को लेकर अभियान चलाया गया है। पुलिस और परिवहन विभाग ने मिलकर लोक परिवहन बसों की विशेष चेकिंग की। एक सप्ताह तक चले इस अभियान में 12,000 से अधिक बसों का निरीक्षण किया गया। प्रदेश के दो महिला मुक्केबाजों को बड़ी उपलब्धि मिली है। अंजलि सिंह और माही लामा का चयन कॉमनवेल्थ बॉक्सिंग कैंप के लिए हुआ है। ये शिविर 10 से 24 जुलाई तक ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित होगा। और मौसम विभाग ने आज के लिए पन्ना और सतना के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आइए एक नजर डालते हैं हमारी आज की सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों पर। शाम 5:02 पर युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी। हमारा आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति होगा। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकते हैं शाम 5:33।

नमस्कार श्रोताओं, मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। शाम के 5 बजने वाले हैं। सांध्यकालीन सभा में हम अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। सभा के आरंभ में युवा श्रोता अपना कार्यक्रम सुने युववाणी।

0: नमस्कार दोस्तों, मैं मार्गेशा।
1: साथियों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राज। स्वागत करते हैं आप सभी का आप सभी के युवा प्रोग्राम युवावाणी में।
0: तो दोस्तों, आज है शुक्रवार और आज बारी होती है खेल और विज्ञान की। ये तो आप जानते ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि खेल जगत में फिलहाल दुनिया के सबसे बड़े और सबसे चर्चित टूर्नामेंट्स खेले जा रहे हैं। आप जरा गेस कीजिए कि कौन से दो टूर्नामेंट्स हैं और ये टूर्नामेंट्स कौन से स्पोर्ट्स में खेले जाते हैं। और इसी के साथ हम सभी जानते हैं कि विज्ञान हर दिन एक नई प्रगति के साथ आगे बढ़ रहा है।
1: हाँ, सही कहा तुमने बागेश। और आज के तारीख में विज्ञान ऐसे कारनामे भी करके दिखा रहा है जो कभी हमने सपने में सोचे भी नहीं थे। और ये सब कुछ हो रहा है इंसान की जिज्ञासा और रचनात्मकता क्षमता के कारण।
0: उफ, क्या बात कही है राज। मनुष्य के अंदर ना जब जिज्ञासा रहती है, तब वो उस जिज्ञासा को लेकर और भी ज्यादा जब सीरियस हो जाता है तो वो कहीं ना कहीं से उसका उत्तर ढूंढने लगता है, या जो भी उसके अंदर क्वेश्चन आया है या जो कुछ भी थ्योरी है उसको ढूंढने के पीछे निकल जाता है। और तुम्हें पता है, यही जिज्ञासा के कारण आज विश्व भर में जो सबसे बड़े बड़े खोजें की गई हैं और जो इन्वेंशंस हुए हैं वो इस जिज्ञासा के कारण ही हुए हैं दोस्तों।
1: बिल्कुल ठीक। और क्रिएटिविटी और जिज्ञासा के कारण मनुष्य हर वो काम कर पा रहा है जहां तक उसने सोचने और विचार करने की क्षमता उसके अंदर होती है। तो साथियों, इसी के कारण मानव सतत विकास की राह पर दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है।
0: दोस्तों, मनुष्य ने सिर्फ वस्तु का विकास नहीं किया बल्कि हमारी मानसिक सोच का भी आपने देखा होगा कि हमारा विकास हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि मानसिक सोच या मानसिक विकास यानी कि हमारे जो न्यूरॉन्स हैं या हमारे जो जीन्स हैं उसमें परिवर्तन आना। नहीं दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने बातें बचपन से हमें सिखाई गई हैं या जो बातें हम आए दिन सुनते रहते हैं, क्या हम उसे अच्छे से परखते हैं, क्या हम उन्हें क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन करने के बाद जब हमें असली सच पता चलता है उसके बाद क्या हम अपने खुद के विचार से सही और गलत का फैसला कर पाते हैं। यही सही मायने में मानव के मानसिक विकास का उदाहरण है दोस्तों।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने मार्गशा। और दोस्तों, अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। और जैसा तुम कह रही थी कि जिज्ञासा बनी रहना चाहिए, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि हमारे जो इतने दोस्त सुन रहे हैं इस वक्त हमारे प्रोग्राम को, उनके मन में भी जिज्ञासा बनी रहना चाहिए कि आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में क्या बातें करने वाले हैं और जो अभी देश दुनिया में चल रहा है तो उन पे क्या हम चर्चा करने वाले
0: हैं। सही कहा तुमने।
1: तो पर उसके पहले हम जान लेते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। जैसा कि हम रोजाना हम साथियों के लिए लेकर आते हैं सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए दो प्यारे प्रश्न। तो साथियों, कान खोल के सुनिएगा। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य नेफा नाम से जाना जाता है।
0: और आज की कड़ी का दूसरा प्रश्न है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन की परत में किस परत में ये पाया जाता है। तो दोस्तों, इन दोनों प्रश्नों के जो उत्तर है ये हम कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे। और जैसा कि हम और राज अभी बात कर रहे थे जिज्ञासा के बारे में, तो आपके अंदर भी इन प्रश्नों को लेकर जिज्ञासा तो थोड़ी बढ़ ही गई होगी, है ना। तो जल्दी से इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढिए या इसके बारे में थोड़ा सोचने की कोशिश कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए कार्यक्रम के अंत तक, ताकि हम आपको इन दोनों प्रश्नों के सही उत्तर बता सकें। तो फिर चलो राज, इसी के साथ अब हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं आज के कार्यक्रम का पहला गीत।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: तो दोस्तों, जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत में हम बात कर रहे थे कि कैसे जिज्ञासा के कारण विज्ञान के क्षेत्र में अलग अलग विकास हुए और मानव का भी विकास इस जिज्ञासा के कारण ही हुआ, तो आज का जो साइंस स्पेशल सेगमेंट है, विज्ञान की जो आज हम बातें करने वाले हैं, वो भी कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि कैसे जिज्ञासा के कारण आज की तारीख में भी दुनिया भर में इतनी नई नई खोजें हो रही हैं और इससे मानव का विकास भी हो रहा है।
2: दोस्तों, विज्ञान केवल किताबों का विषय नहीं है, बल्कि हमारी दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा है। सुबह मोबाइल का अलार्म बजने से लेकर रात में मौसम का पूर्वानुमान देखने तक हर जगह या फिर हर स्थान पर विज्ञान हमारे साथ चलता फिरता है।
1: एकदम सही कहा तुमने राज। तो दोस्तों, आज के इस साइंस स्पेशल सेगमेंट में हम बात करेंगे इस सप्ताह साइंस और टेक्नोलॉजी की इस जगत की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण खबरों की जिन्होंने दुनिया भर के वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। तो आइए बिना किसी देर किए शुरू करते हैं।
2: दोस्तों, इस सप्ताह हम 5 प्रमुख

0: इस दौरान पृथ्वी के भीतर से भारी मात्रा में पिघला हुआ लावा बाहर निकला और ठंडा होकर नया महासागरीय तल बन गया।
1: ये खोज दोस्तों इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स की गतिविधियां ही भूकंप, ज्वालामुखी और पर्वतों के निर्माण जैसी घटनाओं के पीछे प्रमुख कारण होती है। इस अध्ययन से वैज्ञानिक भविष्य में पृथ्वी की आंतरिक संरचना और भूगर्भीय परिवर्तनों को बेहतर ढंग से वो समझ सकेंगे।
0: साथियों, आज की दूसरी खबर कुछ इस प्रकार है। भारत का चंद्रयान 3 मिशन लगातार वैज्ञानिकों को नए नए तथ्य उपलब्ध करा रहा है। हाल में विश्लेषण में चंद्रमा की सतह की संरचना और पृथ्वी पर मिले कुछ चंद उल्का पिंडों के बीच महत्वपूर्ण समानताएं सामने आई हैं।
1: इससे वैज्ञानिकों को ये समझने में मदद मिल रही है कि करोड़ों वर्ष पहले चंद्रमा की सतह पर किस तरह से ज्योग्राफिकल चेंजेस हुए होंगे। ये उपलब्धि भविष्य के चंद्र अभियानों और वहां मानव बस्तियां बसाने की संभावनाओं के अध्ययन में बहुत ही उपयोगी साबित हो सकती है।
0: भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम आज पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा सा बन गया मार्गी।
1: सही कहा।
0: मुझे लगता है कि जितने भी युवा वैज्ञानिक जो हैं उन सभी के लिए और हम सभी छात्रों के लिए भी ये गर्व का विषय है।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। और अब इसी के साथ अगली खबर पर बढ़ते हैं दोस्तों। यदि आपको तारों भरा आकाश देखना पसंद है तो जुलाई का महीना आपके लिए किसी उपहार से कम तो नहीं होगा। खगोल वैज्ञानिकों के अनुसार अमावस्या के आसपास का समय आकाशगंगा यानी कि मिल्की वे को देखने के लिए सबसे अनुकूल रहेगा दोस्तों, ये माना जा रहा है।
0: तुमने कितनी अच्छी बात कही ना मार्गशीर्ष, क्योंकि जब बारिश का जब जो मौसम होता है ना उसमें हम ऐसा कुछ देखने की कल्पना भी नहीं कर सकते।
1: सही कहा।
0: जो ये खबर है इससे मुझे लगता है कि जितने भी हम जो जिज्ञासु प्रवृत्ति के लोग हैं उन सभी के लिए सीखने के लिए और देखने के लिए कुछ नया दिशा भी
1: बिल्कुल
0: मिलेगी।
1: सही कहा।
0: तो दोस्तों, यदि आप शहर की तेज रोशनी से दूर किसी खुले और अंधेरे स्थान पर जाएं तो आपको आकाश में दूधिया रंग की एक लंबी पट्टी दिखाई दे सकती है। यही हमारी आकाश गंगा है जिसमें हमारा सौर मंडल स्थित है।
1: और दोस्तों, जिन्हें स्टार गेजिंग का शौक है उनके लिए भी बहुत अच्छी खबर है कि इसी के साथ आप शनि और मंगल जैसे ग्रह भी रात के आकाश में आसानी से देखे जा सकते हैं। ये असर वैज्ञानिकों और जो विद्यार्थी हैं उनमें जिनमें भी रुचि है इस सब्जेक्ट को लेकर के उनके लिए तो और भी ज्यादा खास और प्रेरणादायक होगा।
0: बिल्कुल। और साथ ही इस सप्ताह की चौथी खबर है, विज्ञान को रोचक बनाने की दिशा में भारत एक नया कदम उठा रहा है। लखनऊ में देश का पहला पैलियो साइंस फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है। इस महोत्सव में जीवाश्म विज्ञान, डायनासोर, पृथ्वी के प्राचीन इतिहास और पुरजीवों पर आधारित फिल्में और डॉक्यूमेंट्रीज दिखाई जाएंगी।
1: क्या बात है, मुझे तो यहाँ पे जाने का बहुत मन है राज। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कार्यक्रम रखा जा रहा है इसका उद्देश्य युवाओं और बच्चों में विज्ञान के प्रति जिज्ञासा बढ़ाना है। अक्सर हम विज्ञान को एक बहुत ही कठिन विषय मान लेते हैं, लेकिन ऐसा पहली बार देखा जा रहा है कि विज्ञान को किस तरह से सरल बनाया जाए, मनोरंजन की तरह देखा जाए और उसे प्रेरक भी बनाया जाए। जैसे हम बात कर रहे थे कि विज्ञान सिर्फ थ्योरी नहीं होती, विज्ञान कहीं ना कहीं हमारे अंदर की जिज्ञासा, हमारी क्यूरियोसिटी और हमारी क्रिएटिविटी को भी बढ़ाता है।
0: इस फिल्म फेस्टिवल से मुझे एक बात याद आ गई, जब हम बचपन में छोटे थे तो स्कूल से आते थे तो हम डिस्कवरी चैनल्स पे
1: सही
0: कहा हमारे दूरदर्शन पे कई सारे ऐसे विज्ञान के प्रोग्राम देखते थे जो हम सभी के लिए लाभकारी भी होते थे।
1: और कई बार ऐसे जो छोटे बड़े एक्सपेरिमेंट्स हमारे बुक में लिखे रहते थे कि किस तरह से आप सोप और हल्दी को मिला के कलर चेंज कर सकते हैं, इंडिकेटर्स की हम बात करते थे, एसिड बेस वगैरह, तो ऐसी छोटी छोटी चीजें जो हमारे घर में ही मिल जाती थी, स्कूल में अगर पढ़ाया जाए तो घर पे आके उसे एक्सपेरिमेंट करना तो बनता था।
0: तो साथ ही उसी के साथ आज की पांचवी खबर भी सुन लेते हैं। इस सप्ताह की, देश भर में मानसून सक्रिय है और इसके पीछे आधुनिक विज्ञान की बड़ी भूमिका भी है। भारतीय मौसम विभाग उपग्रह, डॉल्टर, रडार, समुद्री सेंसर और सुपर कंप्यूटर द्वारा की उनकी मदद से लगातार मौसम का एक विश्लेषण किया जा रहा है।
1: दोस्तों, इसी तकनीक की वजह से आज कई दिनों पहले भारी बारिश, चक्रवात और अन्य मौसम संबंधी घटनाओं की चेतावनी हमें बहुत आसानी से मिल सकी।
0: इससे किसानों को खेती की योजना बनाने, मछुआरों को समुद्र में जाने से पहले जानकारी प्राप्त करने और आपदा प्रबंधन एजेंसियों को समय रहते तैयारी करने में काफी ज्यादा मदद मिल पाएगी।
1: दोस्तों, विज्ञान हमें केवल नई तकनीक ही नहीं देता बल्कि सोचने का एक नया दृष्टिकोण भी देता है। हर नई खोज हमें सिखाती है कि जिज्ञासा, परिश्रम और निरंतर सीखने की इच्छा से असंभव लगने वाले लक्ष्य भी आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं।
0: साथियों, अगर आप विद्यार्थी हैं तो विज्ञान को केवल परीक्षा का विषय ना समझें, अपने आसपास होने वाली घटनाओं को जानने की और समझने की कोशिश करें। हो सकता है कि आने वाले वर्षों में कोई नई खोज आपके नाम से भी जुड़ी हो।
1: सही कहा राज, और अब मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत पढ़ाई की बात कर ली।
0: हाँ,

0: दोस्तों, प्रत्येक शुक्रवार को हम आप सभी के लिए लेकर आते हैं साइंस एंड स्पोर्ट स्पेशल। तो अभी हमने फिलहाल साइंस की बात तो की है कि है, अब करते हैं हम स्पोर्ट्स की बात। इस वीक, इस मंथ क्या कुछ खास चल रहा है। तो दोस्तों, खेलों की दुनिया में आज हम लेकर आए हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026 की एक ऐसी खबर जिसने दुनिया भर के फुटबॉल प्रेमियों का उत्साह और ज्यादा बढ़ा दिया है।
1: सही कहा दोस्तों, फीफा वर्ल्ड कप अब अपने सबसे रोमांचक दौर में पहुंच चुका है। हर मुकाबले के साथ इतिहास लिखा जा रहा है और नए सितारे चमक रहे हैं। इसी बीच फ्रांस ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उसे विश्व फुटबॉल की सबसे मजबूत टीमों में क्यों गिना जाता है।
0: साथियों, कल क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का मुकाबला था अफ्रीकी महाद्वीप की मजबूत टीम मोरक्को से। बोस्टन स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में फ्रांस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इसी के साथ फ्रांस फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन चुकी है।
1: दोस्तों, ये जीत सिर्फ एक मैच की जीत नहीं है, बल्कि फ्रांस की निरंतरता और विश्व फुटबॉल में उसके दबदबे की भी कहानी है। 1998 और 2018 की विश्व चैंपियन फ्रांस लगातार तीसरे वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल तक पहुंची है। ये उपलब्धि बताती है कि फ्रांस की टीम हर बड़े टूर्नामेंट में खुद को साबित करना अच्छी तरीके से जानती है।
0: श्रोताओं, अगर आपको याद हो तो कतर विश्व कप आप सभी को याद ही होगा, उस समय भी फ्रांस ने सेमीफाइनल में मोरक्को का सपना तोड़ सा दिया था। 4 साल बाद इतिहास एक बार फिर दोहरा रहा है। इस बार भी मोरक्को का सफर फ्रांस के हाथों समाप्त हुआ।
1: अब बात करते हैं उस खिलाड़ी की जिसका नाम सुनते ही दुनिया भर के फुटबॉल प्रेमियों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्लेयर किलियन एम्बाप्पे की। इस मुकाबले में भी एम्बाप्पे ने देखा ही होगा तुमने राज की अपनी प्रतिभा का बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है। मैच के 60वें मिनट में उन्होंने बेहतरीन गोल कर फ्रांस को एक बढ़त दिलाई थी।
0: सबसे मतलब रोमांचक मुकाबला लगा हमें, और मुझे ऐसा लगता है कि वो एक पेनल्टी का मौका चूक गए थे जिसने स्टेडियम में मौजूद दर्शक भी हैरान रह गए थे। लेकिन यही तो एक महान खिलाड़ी की पहचान होती है मार्गशा, गलती के बाद वापसी करना और टीम को जीत की राह पर ले जाना।
1: सही कहा तुमने। एम्बाप्पे के गोल के केवल 6 मिनट बाद ओस्मानी डेम्बेले ने दूसरा गोल लगाकर फ्रांस की बढ़त 2 गुनी कर दी। इसके बाद मोरक्को के लिए वापसी करना बहुत मुश्किल हो गया और अंत में फ्रांस ने 2-0 से मुकाबला अपने नाम कर लिया।
0: हालांकि दोस्तों, स्कोर देखकर ये मत समझिए कि मुकाबला आसान था। मोरक्को को एक उसके गोलकीपर यानी यासीने बाउने पूरे मैच में फ्रांस के सामने दीवार बनकर खड़े रहे। उन्होंने शानदार बचाव किए और एम्बाप्पे सहित फ्रांस के कई हमलों को नाकाम कर दिया।
1: मैच के शुरुआती मिनटों में ही उन्होंने बेहतरीन रिफ्लेक्स का प्रदर्शन किया और कई निश्चित गोल भी बचाए।
0: दूसरी ओर मोरक्को ने भी जवाबी हमले करने की कोशिश की, लेकिन फ्रांस के मजबूत डिफेंस ने उनके सबसे खतरनाक खिलाड़ी अशरफ हकीमी को खुलकर खेलने का मौका ही नहीं दिया।
1: सही कहा तुमने राज, हकीमी बार बार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे लेकिन फ्रांस की डिफेंसिव लाइन ने उन्हें लगातार रोके रखा। पहले हाफ में दोनों टीमें गोल नहीं कर सकी, लेकिन दूसरे हाफ में फ्रांस ने अपनी क्लास दिखाते हुए 2 गोल दागे और मुकाबले पर पूरी तरह से अपना नियंत्रण बना लिया।
0: दोस्तों, यही फीफा वर्ल्ड कप की खूबसूरती है। यहाँ हर मैच नई कहानी लिखता है, हर खिलाड़ी अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करता है और हर पल रोमांच से भर जाता है।
1: सही कहा तुमने। अब सभी की निगाहें बनी हुई हैं जो और भी क्वार्टर फाइनल मुकाबले बाकी हैं उन पर और फिर आने वाले सेमीफाइनल पर। क्या फ्रांस एक बार फिर विश्व कप की ट्रॉफी जीतने की ओर बढ़ेगा?
0: दोस्तों, क्या एम्बाप्पे अपने शानदार फॉर्म जारी रखेंगे? खैर, इन सवालों के जवाब आने वाले मुकाबलों में हम सभी को मिलेंगे। वहीं दूसरा क्वार्टर फाइनल मैच स्पेन और बेल्जियम के बीच लॉस एंजलिस स्टेडियम में दोपहर को 3 बजे खेला जाएगा, यानी उस समय भारत में 10 और 11 जुलाई की रात के 12:30 बज रहे होंगे।
1: तो दोस्तों, आप भी फीफा वर्ल्ड कप 2026 के इस रोमांच का आनंद लेते रहिए और खेल भावना के साथ अपने पसंदीदा खिलाड़ियों का भी उत्साह बढ़ाते रहिए।

0: दोस्तों, जब बात टेनिस की होती है तो दुनिया की निगाहें सिर्फ टूर्नामेंट पर सबसे ज़्यादा टिकती हैं, और वो है विंबलडन। घास के हरे भरे कोर्ट, सफ़ेद ड्रेस कोड और वर्षों पुरानी परंपराएं इसे दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंटों में शामिल करती है।
1: दोस्तों, इस बार विंबलडन 2026 में महिला सिंगल वर्ग ने ऐसा रोमांस दिखाया है कि इसकी चर्चा पूरी दुनिया भर में हो रही है। इस वर्ष महिला सिंगल्स का फाइनल पूरी तरीके से चेक गणराज्य यानी कि चेक रिपब्लिक के नाम हो गया है। 4 वर्षों में तीसरी बार ये तय हो चुका है कि विंबलडन की महिला चैंपियन चेक गणराज्य की खिलाड़ी ही बनेगी।
0: साथियों, फाइनल में आमने सामने होंगी कैरोलिना मुचेवा और नोस्कोवा, जिससे मुकाबला एक शानदार ऑल चेक फाइनल बन गया है। पहले

0: फाइनल में दुनिया की शीर्ष खिलाड़ियों में शामिल अमेरिका की कोगो गफ और चेक स्टार कैरोलिना मुकोवा के बीच बेहद शानदार रोमांचक मुकाबला देखने को हम सभी को मिलेगा।
1: तो दोस्तों, मुचोवा ने पहला सेट 6-2 से अपने नाम किया, लेकिन गॉफ ने शानदार वापसी करते हुए दूसरा सेट 6-1 से जीत लिया। इसके बाद निर्णायक तीसरा सेट दर्शकों की धड़कनें बनाने वाला बिल्कुल साबित हुआ है।
0: साथियों, टाई ब्रेक में मुचोवा एक समय पर 4-1 और फिर 6-3 की बढ़त पर थी, लेकिन कोको गफ ने शानदार जज्बा दिखाते हुए वापसी की और फिर 9-8 पर मैच पॉइंट भी हासिल कर लिया। तभी एक फोरहैंड शॉट नेट में चला गया और मैच का रुख बदल गया।
1: मुचोवा ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया, मैच पॉइंट बचाया और आखिरकार 7-6 से मुकाबला जीतकर पहली बार विंबलडन फाइनल में अपनी जगह बना ली। इस जीत के साथ उन्होंने 2025 की फ्रेंच ओपन और 2023 की यूएस ओपन चैंपियन कोको गॉफ के विंबलडन खिताब जीतने को के जो सपना है उसको फिलहाल ठहरा दिया।
0: इसके बाद साथियों, दूसरे सेमीफाइनल में चेक गणराज्य की युवा खिलाड़ी नोस्कोवा ने यूक्रेन की मार्टो कोस्त्यूक के खिलाफ बेहद संतुलित और आत्मविश्वास से भरा हुआ खेल दिखाया। नोस्कोवा ने दोनों सेट में 6-4 और फिर 6-4 से जीतकर सीधे फाइनल का टिकट पक्का कर लिया है और विंबलडन 2026 की महिला वर्ग में ऑल चेक फाइनल पर मोहर सी लगा दी है।
1: दोस्तों, इस बार का विंबलडन हमें ये सिखाता है कि सफलता केवल प्रतिभा से नहीं बल्कि धैर्य, मानसिक मजबूती और सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता से भी मिलती है। कैरोलिना मुचोवा का मैच पॉइंट बचाकर जीतना और लिंडा नोस्कोवा का दबाव में शांत रहकर शानदार प्रदर्शन करना दोनों ही युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा है।
0: साथियों, अब दुनिया भर की नजरें फाइनल मुकाबले पर हैं। एक और अनुभव और संयम से भरी भरपूर कैरोलिना मुचोवा है, वहीं दूसरी ओर युवा ऊर्जा और आत्मविश्वास से लबरेज मिसाल है नोस्कोवा।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। इसी के साथ जो मेंस सिंगल मुकाबले हैं और मेंस डबल और वुमेंस डबल और मिक्स डबल्स के जो ये मुकाबले हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों, आप भी इन जो मुकाबले हैं इनका अच्छे से ट्रैक रखिएगा। दोनों में से जो हमारी दोनों खिलाड़ियां हैं उनमें से आप कोई भी जीते, लेकिन ये तय हो गया है कि विंबलडन 2026 की महिला ट्रॉफी एक बार फिर चेक गणराज्य की झोली में जाएगी।
0: बिल्कुल ठीक। तो श्रोताओं, खेल हमें केवल जीतना ही नहीं सिखाता बल्कि संघर्ष करना, हार से सीखना और फिर चुनौती का साहस के साथ सामना करना भी सिखाता है। तो आइए बढ़ते हैं अगले गीत की ओर।

0: तो दोस्तों अब बात करते हैं सोशल मीडिया और उसके प्रभाव की, और खासकर ये कि कैसे हमारे हम जैसे जो युवा हैं उनके व्यवहार और सोच में कैसे बदलाव ला रहा है। बहुत से लोग इसे केवल मनोरंजन का साधन मानते हैं, लेकिन इसका असर कहीं गहरा है दोस्तों।
1: मार्गशीर युवा अक्सर ये भूल जाते हैं कि सोशल मीडिया केवल एक प्लेटफॉर्म है, असली जीवन है, पर ये ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनकी सोच, उनकी क्षमताएं और यहाँ तक कि उनकी सामाजिक समझ को भी सोशल मीडिया कई ज्यादा प्रभावित कर देता है।
0: सही कहा तुमने। देखिए, पहले लोग अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताते थे, पर अब अधिकतर युवा अपने फोन में ही खोए रहते हैं। इसका मतलब है कि बातचीत और सहानुभूति की कला जो है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है।
1: और मार्गशीर सोशल मीडिया पर देखने वाली परफेक्ट लाइफ की धारणा उन्हें निरंतर तुलना यानी फिर हम कंपेयर जो करते हैं वैसी मानसिकता में डाल रही है। वो कई बार तो ऐसा भी होता है खुद की तुलना हम दूसरों से करने लग जाते हैं कि हम कैसे हैं, वो कैसा है, इस टाइप से उसने कैसे कपड़े पहने हैं, उस मैंने कैसे पहने हैं। तो मुझे लगता है कि बस सोशल मीडिया की लाइफ है, असल जीवन बिल्कुल नहीं है।
0: सही कहा तुमने। इसके साथ ही आत्मसम्मान पर भी असर पड़ रहा है दोस्तों। लाइक और कमेंट्स की संख्या देखकर युवा अपने मूल्य नापने लगते हैं और असली दुनिया से अपने मूल्य को पहचानना भूल जाते हैं।
1: मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लाइक और कमेंट और शेयर उनके जीवन का एक बड़ा मतलब अचीवमेंट बन गया है। डिप्रेशन में भी आ जाते हैं युवा,
0: बिल्कुल,
1: कि हमने
0: बिल्कुल,
1: जो पोस्ट डाली
0: बिल्कुल
1: थी उसके
0: सही
1: तो
0: कहा
1: बस
0: तुमने।
1: 20 ही लाइक आए हुए हैं
0: सही
1: मतलब
0: कहा।
1: 24 आवर्स में। तो ये सब देखने को आ रहा है, और एक बड़ा असर ये भी है श्रोताओं के ध्यान और धैर्य पर उनका लगातार मतलब एक कंट्रोल सा छूटता जा रहा है। लगातार छोटे छोटे कॉन्टेंट की आदत उन्हें लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करने में मुश्किल देती है। पढ़ाई या फिर कोई भी रचनात्मक कार्य है उसको करने में बाधा सी उत्पन्न हो जाती है।
0: दोस्तों ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डाल रहा है। नींद की कमी, आंखों पर दबाव, चिंता और कभी कभी अवसाद की शुरुआत भी इसी डिजिटल आदत से होने लगी है।
1: इसके अलावा युवा अपने असली रिश्तों से काफी ज्यादा दूर होने लगे। मार्गशीर मैंने तो ये भी देखा है, जब हम चार दोस्त मिलते हैं चाय की दुकान पर या फिर कॉफी शॉप पर, तो जब हम इतने दिनों बाद चार दोस्त मिलते भी हैं ना, तो बस मिलने के बाद हम चाय पर और अपनी चर्चाओं पे तो ध्यान कम देते हैं और अपने मोबाइल तुरंत निकाल लेते हैं।
0: सही कहा तुमने। तो हमें ये समझना बिल्कुल ज़रूरी है कि जो सोशल मीडिया है ये हमारे जीवन को कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है, हमारे लिए हेल्पफुल भी है, लोगों से जुड़ने में मदद करता है, लेकिन ये हमारी पूरी ज़िंदगी नहीं।

हैं, और हमें सोशल मीडिया के हाथों में अपने मानसिक स्वास्थ्य का, हमारे आत्मविश्वास का और हमारी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जो सेल्फ इमेज है, उसका नियंत्रण नहीं देना है। हमें सोशल मीडिया को कंट्रोल करना है, ना कि सोशल मीडिया को हमें कंट्रोल करने देना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये आपको काम आएगा। इसी के साथ आइए फिर सुनते हैं ये गीत।

0: तो दोस्तों ये था आज का युववाणी कार्यक्रम। हमें उम्मीद है कि आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। तो अब समय हो गया है आपको बताने का, जो हमने दो प्रश्न पूछे थे उनके हम आपको अब उत्तर बता देते हैं।
1: साथियों, आज का हमारा पहला प्रश्न था, भारत का कौन सा राज्य नेफा नाम से जाना जाता है? तो उसका सटीक उत्तर है अरुणाचल प्रदेश।
0: और दूसरा प्रश्न था कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन किस परत में पाया जाता है? इसका उत्तर है स्ट्रेटोस्फीयर। तो अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए।
1: इसी के साथ दीजिए राज
0: और मार्केशा को इजाजत।
1: नमस्कार।

अभी आप युवाणी कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत।

मुकेश और लता मंगेशकर का गाया ये छलिया फिल्म का गीत था। कमर जलालाबादी ने इस गीत के बोल लिखे थे, संगीत कल्याण जी आनंद जी का था। अगला गीत हमने लिया है फिल्म मेरे हमसफर से। आवाज़ है महेंद्र कपूर, बलबीर और साथियों की। गीत आनंद बख्शी का लिखा हुआ है और संगीत एक बार फिर कल्याण जी आनंद जी का।

श्रोताओं, अंतिम गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म मधुमति से। इसे गाया है लता मंगेशकर और मन्ना डे ने। शैलेंद्र का लिखा हुआ गीत है, सलिल चौधरी का संगीत।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत को अभी हम यहीं विराम देते हैं। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है, लीजिए अब सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: सब दंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार। कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: माँ पिता भगवान का वो अनमोल उपहार हैं जिनका प्रेम और आशीर्वाद जीवन को हर कठिनाई से पार करा देता है।
1: बहुत बहुत सुंदर विचार, इसके लिए आपका धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी का। लिखते हैं,
2: विमलेश जी, अजीत जी नमस्कार, जय जोहार। 18 तारीख को चिड़िया की बच्ची कार्यक्रम सुना, बहुत अच्छा लगा। अच्छी प्रस्तुति के लिए NCERT उमंग के साथ विमलेश जी और अजीत जी को बहुत बहुत बधाई।
1: और बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भाव्या कुमारी, निवेश कुमार और नियति कुमारी।
2: मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर।
1: और गांव बुर्ज हनुमानगढ़ फजिलका पंजाब से अमन वर्मा, रमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा, डॉक्टर मदन लाल वर्मा और वर्मा परिवार के सभी सदस्य।
2: और कुतुबपुर तहसील हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा।
1: आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद संदेशों को भेजने के लिए। और आइए एक बार फिर से चलते हैं हमारी आपकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में कुछ और नई और रोचक जानकारियों के साथ।
2: श्रोताओ, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं पेड़ों की। जैसा कि हमने इस सप्ताह की पहली कड़ी में सुना था, पेड़ सिर्फ पेड़ ही नहीं, वे इस धरती के सबसे प्राचीन जीव हैं। उनके आने के बाद ही दूसरा जीव जगत शुरू हो सका, क्योंकि वे वर्षा, भोजन, औषधि और श्वसन के मुख्य स्रोत हैं।
1: श्रोताओं, क्या आप जानना चाहेंगे कि पेड़ों की उत्पत्ति कैसे हुई? तो चलिए आपको बताते हैं।
2: पेड़ों की उत्पत्ति पृथ्वी के इतिहास की सबसे अद्भुत घटनाओं में से एक है। कहते हैं लगभग 4 अरब वर्ष पहले पृथ्वी पर पेड़ नहीं थे, केवल सूक्ष्म जीव थे। कालांतर में समुद्रों में शैवाल जैसे जीव विकसित हुए जो तैरते थे और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते थे।
1: धीरे धीरे ये शैवाल जैसे जीव समुद्र से निकलकर भूमि पर आए। इन्हीं से प्रथम स्थलीय पौधों का विकास हुआ।
2: प्रश्न ये है कि इन पौधों ने क्यों बढ़ना शुरू किया? इसका कारण ये था कि जीने के लिए वे अधिक सूर्य का प्रकाश पा सकें और दूसरे पौधों से प्रतिस्पर्धा कर सकें। इसी क्रम में ये पौधे बढ़ते बढ़ते पेड़ बन गए। ध्यान दें तो इस प्रक्रिया में विकासवाद का सिद्धांत काम करता है, यानी सफलतम ही टिका रहता है।
1: तो श्रोताओ, ये थी पेड़ों की उत्पत्ति की वैज्ञानिक कथा। अब जरा ध्यान दें, गर्मी का मौसम है, राह चलते चलते जब बहुत गर्मी लगती है तो आप किसी पेड़ की छाया में शरण लेते हैं
2: जी।
1: क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ठीक उस समय जब आप उसकी छाया का आनंद ले रहे होते हैं, उस समय वो पेड़ क्या क्या कर रहा होता है?
2: ध्यान से सुनिए मित्रों, उस समय वो हवा को ठंडा कर रहा होता है, क्योंकि वो वाष्पोत्सर्जन द्वारा एक प्रकार से प्राकृतिक AC की तरह काम कर रहा होता है।
1: श्रोताओ, ठीक उस समय वो हमें ऑक्सीजन दे रहा होता है और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को अवशोषित कर रहा होता है जो हमारे लिए हानिकारक है।
2: उस समय वो शोर को कम कर रहा होता है, क्योंकि पत्तियां और शाखाएं प्रदूषित वायु को ही नहीं शोर को भी अवशोषित करती हैं। तभी तो कहते हैं पेड़ों के नीचे या जंगलों में एक शांति का आभास होता है।
1: श्रोताओ, एक बात और, ठीक उस समय वो पेड़ वर्षा और जल संरक्षण में योगदान दे रहा होता है, जिससे भविष्य में हमें भूजल और वर्षा का जल लगातार मिलता रहे।
2: उस समय वो हजारों कीटों, कवकों, पक्षियों और जीवों को आश्रय देकर प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में मदद कर रहा होता है।
1: सचमुच श्रोताओ, एक पेड़ हमारे और दूसरों के लिए मौन रहकर भी इतनी सेवा कर रहा होता है। वह बेशक मौन है, लेकिन मानो कहता है, मैं तुम्हारे लिए हवा को शुद्ध कर रहा हूँ, धरती को ठंडा करके जलवायु परिवर्तन की गति को यथासंभव रोक रहा हूँ,
2: स्वयं धूप सहकर तुम्हें छाया दे रहा हूँ, वर्षा लाने में सहायता कर रहा हूँ, मिट्टी के कटाव को रोक रहा हूँ। बदले में मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मुझे और अन्य पेड़ों को जीवित रहने दो। हम सभी पेड़ धरती के फेफड़े हैं।
1: जी हाँ श्रोताओ, अब जब किसी पेड़ को देखें तो इन बातों को जरूर स्मरण कीजिएगा। पेड़ वास्तव में हमारे लिए प्रकृति के मौन लेकिन सबसे बहुमूल्य उपहार हैं।
2: तो ये थी पेड़ों के बारे में हमारी रोचक जानकारी इस सप्ताह की श्रृंखला में। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है,
1: जब आप किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो उस समय वो क्या क्या कर रहा होता है? कोई 2 या 3 कारण बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: जब आप किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो वो उस समय क्या

0: क्या कर रहा होता है, कोई दो या तीन कारण बताइए।
1: 8800-440-559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है, और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और आइए अब सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, जो एक गीत के रूप में देश को समर्पित है। शीर्षक है प्यारा भारत।
0: ये कक्षा 3 की उर्दू की पाठ्य पुस्तक सितार की एक नज्म पर आधारित है। श्रोताओं, ये खूबसूरत नज्म आपको ले जाएगी भारत के गगनचुंबी पर्वतों, कलकल करती नदियों, लहलहाती फसलों के मैदानों, घाटियों और फलों के बगीचों में।
1: तो आइए करते हैं भारत भ्रमण इस नज्म के साथ। शीर्षक है भारत प्यारा।

0: प्यारा भारत।
1: अभी आप सुन रहे थे गीत भारत प्यारा,
2: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मौर्य कालीन पाटलिपुत्र।
1: इस कार्यक्रम में मौर्य साम्राज्य के महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के बारे में विस्तार से बताया गया है। विशेषकर ये उल्लेख किया गया है कि उनके शासनकाल में जनतांत्रिक मूल्य कितने ऊंचे थे, खुफिया व्यवस्था कैसी थी और चीन के यात्रियों ने उनकी कीर्ति की कैसी प्रशंसा की।

मेरा नाम है पाटलिपुत्र। अब लोग मुझे बिहार प्रदेश की राजधानी पटना के नाम से जानते हैं। मेरा इतिहास बहुत पुराना है। इस बात को 2000 वर्ष से भी अधिक बीत चुके हैं जब एक छोटा सा गांव था मैं। नाम था पाटली। यहां वहां कुछ खेत, कुछ झोपड़ियां, पास में कल कल करती गंगा की निर्मल धारा। एक घाट था गंगा पार जाने के लिए। वहां एक दो नौकाएं खड़ी रहती। उसी घाट से महात्मा बुद्ध ने नदी पार की थी वैशाली जाने के लिए।

इसके बाद बिंबिसार ने पास ही में नई राजधानी राजगृह का निर्माण करवाया।

0: राजा बिंबिसार के बाद मगध के सिंहासन पर बैठा अजात शत्रु। महात्मा बुद्ध के सम्मान में अजात शत्रु ने घोषणा करवाई,
1: सुने सुने सुने सभी ग्रामवासी सुने, सम्राट अजात शत्रु ने महात्मा बुद्ध के सम्मान में ये घोषणा की है कि आज से पाटली दुर्ग का मुख्य द्वार गौतम द्वार और गंगा नदी का घाट गौतम घाट कहलाएगा।

महात्मा बुद्ध ने पाटली के विषय में भविष्यवाणी की थी कि आने वाले समय में पाटली एक प्रमुख नगर और व्यापार का बड़ा केंद्र बन जाएगा। जब बुद्ध पाटलीग्राम आए थे तो वे 79 वर्ष के थे। इसके एक वर्ष बाद ही कुशीनगर में उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया।

0: अजात शत्रु ने वैशाली को जीत लिया। उसके बाद पाटली दुर्ग का महत्व और भी बढ़ गया।
1: अजात शत्रु के बाद राजा बना उसका पुत्र उदाई भद्र। उदाई भद्र अपने पिता अजात शत्रु की तरह विजेता तो न था, पर उसे नए नए राजमहल बनवाने का शौक था। उदाई भद्र ने ही मुझे मगध की राजधानी बनाया।

0: वो 16 वर्षों तक मगध का राजा बना रहा।
1: समय बदला, मगध का सिंहासन महापद्म नंद के पास चला गया। इसी ने नंद वंश चलाया था।
0: पर मैं खुश नहीं था। मैं एक बड़ा नगर जरूर बन गया था। मेरा नाम दूर दूर तक मशहूर हो गया था, लेकिन मगध की जनता दुखी थी। महापद्म नंद के अत्याचार बढ़ते ही जा रहे थे।

0: भागो भागो जाओगे
1: अरे भागो रे अरे सिपाही आ गए
0: अरे अरे भागो जाओगे भागो भागो
1: छुप जाओ छुप जाओ
0: अरे मैंने कुछ नहीं किया
2: महापद्म नंद के बाद मगध का राजा बना धन नंद।

बड़ी सेना, अपार धन संपत्ति थी उसके पास, मगर था वो बहुत ही घमंडी। धननंद ने एक बहुत बड़ी भूल कर दी जो उसके पतन का कारण बनी। उसने तक्षशिला के प्रसिद्ध आचार्य कौटिल्य का भरे दरबार में अपमान कर दिया। अपमानित कौटिल्य ने प्रतिज्ञा की

0: अत्याचारी धननंद, मैं कौटिल्य आज प्रतिज्ञा करता हूं कि तेरा सर्वनाश करूंगा, सर्वनाश।
1: और अपनी इस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए कौटिल्य ने चंद्रगुप्त को चुना। मौर्य कुल का वो वीर युवक अपना देश छोड़कर भटक रहा था। कौटिल्य ने उसे तक्षशिला में शिक्षा दी।
2: और उधर भारत से बहुत दूर मैसिडोनिया में साहसी सिकंदर अपने पिता फिलिप के बाद राजा बना था। समय था ईसा से 336 वर्ष पूर्व। सिकंदर का सपना था विश्व विजेता बनने का। उसकी आंधी सारी दुनिया पर छा जाने के लिए उमड़ने लगी।

सिकंदर बढ़ता गया, उसकी आंधी बढ़ती गई। 11 वर्षों में हर तरफ अपनी जीत के डंके बजाता हुआ सिकंदर भारत की सीमा पर आ खड़ा हुआ। छोटे छोटे राज्यों में बटा था तब का भारत। लोग वीर थे लेकिन आपस में लड़ते रहते थे। अभिसार के राजकुमार आम्भी ने सिकंदर का स्वागत किया, लेकिन राजा पुरु ने सिकंदर का डटकर मुकाबला किया।

पोरू की पराजय हुई। सिकंदर जीत तो गया, परंतु अब उसके सैनिक थक गए थे। उनका मनोबल गिरता जा रहा था। उन्हें कदम कदम पर कड़ी टक्कर मिल रही थी। आगे बढ़ने की हिम्मत खत्म हो रही थी।

0: गजब हो गया। सेना आगे बढ़ने से मना कर रही है वीर सिकंदर।
1: क्या आगे बढ़ने से मना कर रही है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या मैसिडोनिया का विश्व विजयी बनने का सपना चूर चूर हो जाएगा?
2: वीर सिकंदर, आप स्वयं सैनिकों से बात क्यों नहीं करते?
1: मैं ऐसा ही करूंगा। जाओ, सारे सैनिकों को एक जगह इकट्ठा करो। ये सिकंदर का आदेश है।
3: जी सम्राट, ऐसा ही होगा।
2: ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा।
4: सिकंदर आ गए, सिकंदर आ गए।
1: मेरे वीर सैनिकों, क्या मैंने ठीक सुना है कि मैसिडोनिया की बहादुर सेना ने अब आगे बढ़ने से इनकार कर दिया है और वो वापस लौटना

0: चाहती है। मैं पूछता हूं ऐसा क्यों, जिस काम के लिए हमने दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा, जिस काम में हमने अपने बहादुर साथियों की जान की बाजी तक लगा दी, आज उसी काम से तुम सब भागना चाहते हो। याद है तुम्हें, हमारी आंधी के सामने बड़े बड़े सम्राट तक उखड़ गए और आज चारों ओर सिकंदर का डंका बज रहा है। चुप क्यों हो, मुझे जवाब चाहिए। क्या हमारी तलवारों की धार खत्म हो गई है? क्या हमारी भुजाएं खोखली हो गई है? ये व्यास नदी देख रहे हो ना, इस नदी को पार करते ही
1: हम वापस लौटना चाहते हैं।
0: सुनो मेरे वीरों, व्यास नदी को पार करते ही हमें दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिलेगा।
2: हमें कुछ नहीं चाहिए, हम
3: लड़ सकते हैं।
4: दुनिया चलो,
3: चलो
5: सबर करो साथियों, जब यहां तक आ ही गए हैं तो आगे क्यों ना बढ़ा जाए। अगर मैसिडोनिया वापस चले भी गए तो लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? हम सम्राट की बात नहीं डाल सकते।
0: शाबाश मेरे वीरों, मुझे तुमसे यही आशा थी।

0: तुम सब सैनिकों के घेरे में हो। इस निर्जन खंडहर में आधी रात को क्या षड्यंत्र हो रहा था हम जान चुके हैं।
1: महाराज चंद्रगुप्त आप?
0: हाँ
2: महाराज, देखिए आचार्य कौटिल्य भी आ रहे हैं।
0: आचार्य प्रणाम, आप इस वक्त यहाँ?
3: आश्चर्य न करो चंद्र, मगध को असंख्य नेत्रों वाली गुप्तचर व्यवस्था चाहिए, मैं सावधान हूँ।
0: धन्य हो आचार्य, मौर्य साम्राज्य को आपकी बहुत आवश्यकता है।
4: धन्य हो आचार्य,
5: धन्य हो,
4: धन्य हो
5: आचार्य,
4: धन्य हो।
6: मगध सुखी था, चंद्रगुप्त प्रजा की भलाई करने वाला न्यायप्रिय शासक था, मगर एक बार फिर संकट सिकंदर के सेनापति निकेटर सेल्यूकस के रूप में बढ़ा आ रहा था।

0: सेल्यूकस भारत को जीतने का सपना लेकर आ रहा था, लेकिन अब भारत बदल चुका था। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को बुरी तरह पराजित किया।
1: बेचारा सेल्यूकस भारत को जीतने आया था, पर उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। मेगस्थनीज सेल्यूकस का राजदूत बनकर आया था। वो 4 वर्ष तक दरबार में रहा,

0: समय बदला। चंद्रगुप्त के शासन के 25 वर्ष बाद बिंदुसार राजा बना और फिर बारी आई उसके मझले बेटे अशोक मौर्य की। अशोक बहुत वीर था। उसने उज्जैनी और तक्षशिला के विद्रोह को सफलतापूर्वक शांत कर दिया और फिर हुआ कलिंग युद्ध।
1: ये क्या कर डाला मैंने, इतना रक्तपात सिर्फ विजय प्राप्त करने के लिए? नहीं नहीं,

0: था कि ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अशोक मौर्य प्रतिज्ञा करता हूं, कभी युद्ध नहीं करूंगा। अब कभी युद्ध नहीं करूंगा। हाँ, अब कभी युद्ध नहीं करूंगा।
1: कलिंग ने अशोक का जीवन बदल डाला। उसकी रुचि अहिंसा में, बौद्ध धर्म में हो गई।

उसने बौद्ध विहार बनवाए, शिलालेख खुदवाए। अगर अशोक का स्तंभ लेख न होता तो हम कभी न जान पाते कि बुद्ध का जन्म कहां हुआ था। तभी श्रीलंका के राजा तिस्स का मैत्री संदेश आया तो अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। इसी तरह बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के अलावा एशिया के और हिस्सों में भी हुआ। अशोक के बाद मौर्य वंश सशक्त नेतृत्व के अभाव में बिखरता चला गया। सम्राट आए, सम्राट गए, किसी को ऐश्वर्य मिला, किसी की सत्ता छीनी, पर मैं वहीं का वहीं खड़ा हूं। समय के बहाव को देखते हुए और भारत की गोद में अपना स्थान बनाए हुए,

0: मौर्यकालीन पाटलिपुत्र अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और श्रोताओं इसी कार्यक्रम के साथ अब हम अपने कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग
3: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है।
4: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
3: लीजिए अब सुनिए सुगम संगीत। आज के कार्यक्रम में कलाकार हैं लियाकत हुसैन।

सुगम संगीत में आज आपने लियाकत हुसैन की गाई गजलें सुनी। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है, लीजिए अब सुनिए लोक संगीत। आज हम आपको उषा व्यास के गाए मालवी लोकगीत सुनवा रहे हैं।

0: अभी आप लोक संगीत का आनंद ले रहे थे। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। 7 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के लिए आयोजित स्वागत समारोह में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत नजर आई। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रस्तुतियों में पंजाब और तमिलनाडु की संस्कृतियों, कर्नाटक और हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत के संगम तथा वंदे मातरम की भावपूर्ण प्रस्तुति का प्रदर्शन किया गया। श्री मोदी ने प्रवासी भारतीयों को पीढ़ियों और महाद्वीपों में भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने और भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच अटूट संबंधों को मजबूत करने के लिए बधाई दी। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने ऑस्ट्रेलिया से तमिलनाडु की अमूल्य धरोहरों की वापसी पर

0: प्रसन्नता व्यक्त की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्री राधाकृष्णन ने सांस्कृतिक धरोहरों को देश में वापस लाने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की। वर्ष 2014 से अब तक 600 से अधिक कलाकृतियां स्वदेश आ चुकी हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की प्रगति की समीक्षा के लिए आज मिशन संचालन समूह की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बताया गया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में लगभग 94 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते बनाए गए हैं और 105 करोड़ स्वास्थ्य रिकॉर्ड जोड़े गए हैं। श्री नड्डा ने कहा कि मिशन के अंतर्गत एक मजबूत डिजिटल स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग तथा वाणिज्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में अंतर विभागीय सहयोग बेहतर बनाने, संस्थागत क्षमता मजबूत करने तथा उत्पादकता और सेवा वितरण को विकसित करने पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने प्रशासनिक ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से एकीकृत, कुशल और भविष्य के लिए तैयार की गई पहलों की समीक्षा की। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने आज संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने कहा कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। रेलवे ने उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली कवच कार्यान्वयन के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार करना है। इस परियोजना का लक्ष्य घनी आबादी और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली का विस्तार करना है। रेलवे ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक इंजन के लिए अतिरिक्त प्राथमिक रखरखाव केंद्र बनाने के लिए 175 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। सर्वोच्च न्यायालय अयोध्या राम मंदिर में कथित दान चोरी की निष्पक्ष जांच की मांग वाली कई याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा। इससे पहले अयोध्या की एक अदालत ने इस मामले में 8 आरोपियों में से 3 को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम सहित पूर्वोत्तर भागों में अगले 2 दिन मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। महिला क्रिकेट में इंग्लैंड ने भारत के साथ लंदन के लॉर्ड्स मैदान में एकमात्र टेस्ट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 3 विकेट पर 164 रन बना लिए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में आज रात 12:30 बजे स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। इससे पहले आज फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।

आइए श्रोताओं, अब आपको हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले शेष कार्यक्रम और कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। 7:20 पर खेती गृहस्थी कार्यक्रम होगा। आज के कार्यक्रम में शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों हेतु एग्री वोल्टाइक प्रणाली विषय पर डॉक्टर दीपक हरी रानाडे जानकारी देंगे। कार्यक्रम में लोकगीत और मंडी के भाव भी होंगे। रात्रि 8:00 सुर्खियों में कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले किया जाएगा। दिल ने फिर याद किया कार्यक्रम आप सुनेंगे 8:15 से। 9:15 का समय होगा चित्रगीत कार्यक्रम का और फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन हम आपके लिए लेकर आएंगे रात्रि 9:30 से। शास्त्रीय संगीत में रात्रि 10:30 कल्याणी कानड़े का गाया राग बागेश्री सुना जा सकता है। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी।

हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले शेष कार्यक्रमों की। अब कल के कार्यक्रमों के बारे में बता दें, कल सुबह 6 बजे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना होगा। चिंतन आप सुनेंगे 6:30 पर। खेती की बातें में कल सुबह 6:35 पर बरसात के पानी का संरक्षण कैसे करें इस विषय पर जानकारी दी जाएगी। श्री रामचरितमानस गान का एक प्रसंग आप सुनेंगे 6:40 पर। सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनहरे पल होगा सुबह 7:20 पर। 8:30 का समय फिल्म संगीत का होगा। प्रादेशिक लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम कल सुबह 9 बजे आप हमारे केंद्र से सुनेंगे। 10:05 का समय होगा फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन का। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रमों की श्रृंखला में कल दिन में 11 बजे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने सुना जा सकता है। दोपहर की सभा में फिल्म संगीत, दोपहर 2 बजे और 2:30 पर सुनवाया जाएगा। 12:30 का समय होगा संग्रहालय से कार्यक्रम का। 1 बजे से आप महिला कार्यक्रम सुनेंगे। 1:30 का समय होगा लोक संगीत का और 1:45 पर आप सुगम संगीत सुनेंगे। आइए श्रोताओं, अब आपको सांधिकालीन सभा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। कल शाम 5 बजे युवाणी कार्यक्रम होगा जिसमें कल हेलो फ्रेंड्स क्रम सुना जा सकता है। 5:45 का समय होगा फिल्म संगीत का। 6 बजे से आप सुनेंगे विशेष कार्यक्रम विकसित होता भारत। कल के कार्यक्रम में स्मार्ट स्कूल विकास योजना के अंतर्गत भेंटवार्ता सुनवाई जाएगी। CM राइज सांदीपनी स्कूलों का उद्देश्य छात्रों का वैश्विक समुदाय के लिए तैयार करना। इस विषय पर वाइस प्रिंसिपल विपिन जैन से संयोगिता की बातचीत आप कार्यक्रम में सुनेंगे। 6:30 पर सुगम संगीत होगा जिसमें कलाकार होंगी वाणी जयराम। माया देवी पटेल और साथियों के गाय लोकगीत लोक संगीत में शाम 6:45 से सुने जा सकते हैं। कल शाम 7:20 पर खेती गृहस्थी कार्यक्रम में प्रगतिशील कृषक भेरूलाल बागतरिया से सोयाबीन उत्पादन पर चर्चा सुनी जा सकती है। रात्रि 8 बजे कल भी आप सुर्खियों में कार्यक्रम सुनेंगे। 8:15 का समय होगा दिल ने फिर याद किया का। 9:15 पर चित्रगीत कार्यक्रम सुनवाया जाएगा। रात्रि 9:30 साहित्य पत्रिका साहित्य भारती हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे और रात्रि 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। 7:10 होने वाले हैं। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा ऐतिहासिक, 4 दशक बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का ऑकलैंड दौरा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत की उपस्थिति में किया 5,017 करोड़ रुपए की उज्जैन

0: लोगों ने तिरंगा लहराते हुए किया ओरा मोदी के नारे लगाए। इस यात्रा में व्यापार, निवेश, शिक्षा और प्रौद्योगिकी सहयोग पर चर्चा होने की उम्मीद है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन कल बिहार के गया जी का दौरा करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत की उपस्थिति में उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड फोरलेन मार्ग का भूमि पूजन किया। ये कार्यक्रम उज्जैन जिले के नागदा में आयोजित हुआ। लगभग 99 किलोमीटर लंबी ये परियोजना 5,017 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी। इससे उज्जैन को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से सीधे जुड़ाव मिलेगा। सिंहस्थ 2028 के दौरान श्रद्धालुओं को इसका खास लाभ होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने केंद्रीय विद्यालय नागदा और जन सेवा पहली नेटवर्क का भी शुभारंभ किया।
1: एक साथ दो बड़ी बड़ी सौगातें, सेंट्रल स्कूल की भी और 5,000 करोड़ के नए मार्ग की भी। ये बात सही है कि इस मार्ग के बनने के लिए, इस मार्ग के बनने के बाद बहुत सारे प्रकार से इस पूरे क्षेत्र का नया इतिहास बनेगा। नागदा के अंदर बाबा की कृपा से सच में ये 100 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड हाईवे जो बन रहा है, जिसके आधार पर पूरा क्षेत्र अलग प्रकार से होगा।
0: ग्रीनफील्ड फोरलेन मार्ग का भूमि पूजन करने से पहले मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भोपाल में प्रदेश स्तरीय अतिथि विद्वान सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अतिथि विद्वान हमारे परिवार के सदस्य हैं। उनके हित में सरकार ने उच्च स्तरीय समिति गठित की है। समिति की अनुशंसाएं मिलते ही आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। अतिथि विद्वानों को सहायक प्राध्यापक भर्ती में 25% आरक्षण और आयु सीमा में छूट दी गई है। साथ ही मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नशा मुक्त मध्यप्रदेश बनाने का आह्वान किया है। इसी क्रम में 15 से 30 जुलाई तक नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कल इंदौर में मध्य प्रदेश युवा कॉन्क्लेव 2026 का शुभारंभ करेंगे। इस आयोजन में प्रदेश भर से करीब 5,000 युवा हिस्सा लेंगे। कॉन्क्लेव में शिक्षा, खेल, कृषि और स्वास्थ्य सहित 10 प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा होगी। युवाओं द्वारा तैयार सुझावों से मध्य प्रदेश युवा संकल्प 2026 दस्तावेज बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री इस अवसर पर 4 नई राज्य स्तरीय युवा पुरस्कार श्रेणियों की भी घोषणा करेंगे। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। भारतीय रेल ने सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया है। उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर कवच प्रणाली लागू करने के लिए 206 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। ये स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली घनी आबादी वाले मार्गों पर लागू होगी। कवच प्रणाली सिग्नल उल्लंघन और ट्रेनों की टक्कर जैसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बनाई गई है। ये प्रणाली आवश्यकता पड़ने पर स्वचालित रूप से ब्रेक भी लगाती है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भिंड के अटेर चंबल पुल परियोजना को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। पत्र में पुल के शेष कार्य के लिए लंबित वन विभाग NOC जल्द जारी करने का आग्रह किया है। श्री सिंधिया ने कहा है कि पुल बनने से दोनों राज्यों के बीच आवागमन सुगम होगा। इससे व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को भी नई गति मिलेगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने संविदा कर्मचारियों के हित में बड़ी पहल की है। अब कर्मचारियों के निधन पर उनके आश्रितों को ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा। 8 जुलाई को पहली बार एक दिवंगत कर्मचारी के आश्रितों को ये राशि दी गई। अपर मिशन संचालक दिशा प्रणय नागवंशी ने बताया कि ये व्यवस्था 26 अगस्त 2025 से लागू है। 1 सितंबर 2025 के बाद सेवा पूरी करने वाले पात्र कर्मचारी इसके दायरे में आएंगे। मिशन कर्मचारियों को अनुग्रह राशि और अनुकंपा नियुक्ति जैसे लाभ भी दे रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने यूजर नेम फीचर को लागू करने के संबंध में सरकार को अपना जवाब सौंप दिया है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि मेटा के स्वामित्व वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जवाब कल रात प्राप्त हुआ था और वर्तमान में इसकी जांच की जा रही है। इसी महीने की 1 तारीख को सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर को लागू करने के संबंध में मेटा को नोटिस जारी किया था। सूत्रों ने बताया कि मंत्रालय ने मेटा को इस फीचर पर विस्तृत स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया था। मंत्रालय ने मेटा को यह भी निर्देश दिया दिया था कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक

यूजरनेम फीचर को लागू न किया जाए। प्रदेश की दो महिला मुक्केबाजों को बड़ी उपलब्धि मिली है। अंजलि सिंह और माही लामा का चयन कॉमनवेल्थ बॉक्सिंग कैंप के लिए हुआ है। ये शिविर 10 से 24 जुलाई तक ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित होगा। दोनों खिलाड़ी कल स्कॉटलैंड के लिए रवाना हुई। खेल मंत्री विश्वास सारंग ने दोनों को शुभकामनाएं दी हैं। केंद्र सरकार ने दवाओं के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 12% से अधिक एथिल अल्कोहल युक्त दवाओं की बिक्री पर नई शर्त लगाई है। अब ऐसी दवाएं बिना डॉक्टर के पर्चे के नहीं बेची जा सकेंगी। ये दवाएं ओवर द काउंटर श्रेणी से बाहर कर दी गई हैं। फार्मासिस्टों को अब केवल वैध प्रिस्क्रिप्शन पर ही इन्हें उपलब्ध कराना होगा। आज विश्व नेत्रदान दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन लोगों को नेत्रदान के प्रति जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। नेत्रदान में मृत्यु के बाद कार्निया जरूरतमंद मरीजों के लिए दान किया जाता है। एक व्यक्ति के नेत्रदान से दो लोगों को दृष्टि मिल सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार ये प्रक्रिया चेहरे की बनावट को प्रभावित नहीं करती। भारत में मांग के मुकाबले दान किए गए कार्निया की संख्या अब भी काफी कम है। श्री अमरनाथ यात्रा के लिए आज 8,796 तीर्थयात्रियों का एक और जत्था जम्मू से घाटी के लिए रवाना हुआ। अब तक 1.60 लाख से अधिक श्रद्धालु पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन कर चुके हैं। अमरनाथ यात्रा 2026 का समापन 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। पश्चिम रेलवे की रतलाम मंडल ने एक अभिनव पहल करते हुए रेलवे हायर सेकेंडरी स्कूल रतलाम में स्थापित 30 किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र का पुनर्स्थापन कर उसे सोलर कॉर्पोरेट के रूप में विकसित किया है। कटनी में वर्षा ऋतु के दौरान जल जमाव से राहत उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। धार जिले में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए नो हेलमेट नो पेट्रोल आदेश जारी किया गया है। सभी पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देशित किया गया है कि वे बिना हेलमेट वाले चालकों को पेट्रोल ना दें। खंडवा पुलिस अधीक्षक ने जिला कंट्रोल रूम में न्यायालयों में पदस्थ कोर्ट मुहररों की मासिक बैठक ली। नर्मदापुरम जिले में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और वैज्ञानिक पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए पशुपालन और डेयरी विभाग 13 से 18 जुलाई तक दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान का तीसरा चरण चलाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

कार्यक्रम का सुनने वाला सभी किसान भाई बहन के कवा उनकी सुनीता बहन की घनी घनी राम राम भाई बिछावा अपना बिना मौसम की आली आली जाजम ने शुरू करा अपनो कार्यक्रम जिको नाव छे खेती ने गृहस्थी। भाई खेती की बात करा तो दो चीज चाहिए, एक पानी न माटी, दुई को साथ हुई जाए तो पौबारा अपनी बात अगर आवत की माटी भी साथ में रही। पर कभी कभी अपना यहाँ फसल अच्छी हो ना अपना पड़ोसी का यहाँ नहीं हुई पौती है या पड़ोसी का अच्छी हो अपना यहाँ नहीं हुई पौती। एक कारण छे माटी की तबीयत, अगर माटी की तबीयत अच्छी मजे की रहेगा तो फसल भी मजे की रहेगा, और अगर माटी की तबीयत अच्छी नहीं रही तो फसल पर फर्क पड़ेगा। कहने को मतलब यो छे कि माटी को स्वास्थ्य

स्वास्थ्य को ध्यान रखनुज और एकालेनज अपनी भारत सरकार ने 19 फरवरी का दिन 2015 से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना लगाई। यह श्रीगंगानगर राजस्थान से शुरू हुई थी और सतत चली रही और इन योजना को बहुत सा किसान भाई लाभ ले रहा है। अच्छो खासो इन्हीं योजना का तहत 12 मापदंड न पचास हो देखा मन मुख्य जो एनपीके छे ओकी तो लेवाज सही नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटाश साथ एक ही साथ में सूक्ष्म पोषक तत्व नक्की भी जसो अपनो की जिंक हुयो आयरन हुयो कापर हुयो मैग्नीज हुयो बोरान हुयो एक ही अपन लेवाज जांच कराने की छे कि नहीं हो कि साथ में माटी को पीएच भी पतो चली जाए क्योंकि अपन का मालूम छे क्षारीय माटी हो खारी माटी हो ओ का पर भी बहुत कुछ निर्भर करे अपनी फसल। तो भाई हम यो कहवांगा कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड से जुड़ो जो हर 2 साल में आपका करानुज अन अपनी माटी की कसी हालत छे हाल फिलहाल में एक ही जानकारी लो ने का हिसाब से जो सुझाव देगा उन हिसाब से आप उका उर्वरक डालो खाद डालो तो ज़्यादा नाकने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि अपन को समझ नहीं पड़ती कि तो डाला तो तुम अगर यो कर लेगा तो घणो अच्छो रहेगा। तो हम योज कहवांगा कि तुम इन योजना से जुड़ो अन साथ में सुनो यो प्यारो सो लोकगीत जख गायलो छे सुंदर लाल मालवी ने उनकी मंडली ने सुनो यो प्यारो सो गीत।

0: वाह, अभी अपन ने प्यारो सो लोकगीत सुनियो, घणो आनंद आयो। एंड अगर सब अच्छो हो तो यूज कहवांगा कि पूरो जीवन भर रंगीलो रहे, फागुन में रहे अपनो। और कदी कदी का यूज कि अपना जीवन में सही जज कि उष नहीं चाहिए जज, कई करा खेती अच्छी नहीं पनपी पौती हैं, क्योंकि अपन मौसम आधारित खेती कराएं। और मौसम आधारित खेती करना पर आर्थिक लाभ भी हो, हानि भी हो, लेकिन ऐसी कोई पद्धति ना अपना ही लेवा जेका से हमक पूरी तरीका से खेती को लाभ भी हो, खेती से जुड़ी ना अलग कोई काम भी हो सक। असोचेक शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र नम एग्री वोल्टाइक जो नाम छे और प्रणाली छे, ओके खेती को तरीको छे। अनवा खेती काई छे, क्यों नहीं एक आप अपन भेटवार्ता सुनी लेवा। अपन का जानकारी दे रहे छे डॉक्टर दीपक हरी रानाडे, अने इनका से बात कर रहे छे भाई राजेश। सुना ने अपन ये एग्री वोल्टाइक प्रणाली काई कवाय।
1: किसान भाइयों राम राम। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में एग्री वोल्टाइक प्रणाली के बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे कार्यक्रम में उद्यानिकी महाविद्यालय मंदसौर के डीन डॉक्टर दीपक हरी रानाडे साहब हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं। आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है, नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि एग्री वोल्टाइक प्रणाली क्या है और इसका वर्तमान समय में क्या महत्व है।
2: जी, इसमें भारत के शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र कृषि की दृष्टि से अत्यंत चुनौतीपूर्ण है। यहाँ अल्प वर्षा, उच्च तापमान, सीमित जल संसाधन तथा कम उपजाऊ भूमि के कारण किसानों को फसल उत्पादन में अस्थिरता और आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं के समाधान हेतु एग्रो वोल्टाइक प्रणाली एक उभरती हुई तकनीक के रूप में सामने आई है, जो कृषि और सौर ऊर्जा उत्पादन को एकीकृत करती है। इस प्रणाली में कृषि भूमि पर सौर पैनलों को इस तरह स्थापित किया जाता है कि फसलें और सौर ऊर्जा दोनों का उत्पादन एक साथ किया जा सके। सौर पैनलों की छाया से भूमि की नमी बनी रहती है तथा वाष्पीकरण कम होता है, जिससे जल संरक्षण में सहायता मिलती है। किसान अपनी आवश्यकताओं के लिए बिजली उत्पन्न कर सकते हैं और अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में बेचकर अतिरिक्त आय भी अर्जित कर सकते हैं। इस प्रकार एग्री वोल्टाइक प्रणाली भूमि उपयोग की दक्षता बढ़ाने, सूक्ष्म जलवायु में सुधार करने तथा किसानों को दोहरा लाभ प्रदान करने वाली एक प्रभावशाली तकनीक है। यह टिकाऊ कृषि, ऊर्जा आत्मनिर्भरता और ग्रामीण विकास को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि एग्री वोल्टाइक प्रणाली में अधिकतम उत्पादकता प्राप्त करने के लिए ऐसी फसलों का चयन आवश्यक होता है जिनकी ऊंचाई अपेक्षाकृत कम हो, जो आंशिक छायांकन को सहन करने में सक्षम हो तथा जिनकी प्रकाश आवश्यकता कम हो। इसके साथ ही ऊष्मा एवं सूखे के प्रति सहनशील फसलें इस प्रणाली के लिए अधिक उपयुक्त मानी जाती है।
1: जी डॉक्टर साहब, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एग्री वोल्टेक प्रणाली जो है इसके बारे में और विशेष जानकारी क्या प्रदान करें।
2: जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भविष्य में भारत सहित कई देशों में कृषि और नवीनीकरणीय ऊर्जा के बीच कृषि संसाधनों को लेकर प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। ऐसे में एग्री वोल्टाइक प्रणाली, जिसे कृषि वोल्टिक प्रणाली अथवा सौर खेती भी कहा जाता है, एक उभरती हुई तकनीक है जिसके माध्यम से किसान अपनी फसलों के उत्पादन के साथ साथ बिजली का उत्पादन भी कर सकते हैं। इस प्रणाली में फोटोवोल्टाइक तकनीक का उपयोग करते हुए कृषि योग्य भूमि पर सौर पैनल स्थापित किए जाते हैं, जिससे एक ही भूमि से दोहरा लाभ प्राप्त किया जा सकता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस तकनीक की अवधारणा पहली बार वर्ष 1981 में एडॉल्फ गोल्ड्सबर्गर और आर्मिन जॉर्सो द्वारा प्रस्तुत की गई थी। वर्ष 2004 में जापान में इसका

0: प्रोटोटाइप विकसित किया गया था और विभिन्न परीक्षणों के बाद 2022 में पूर्वी अफ्रीका में इसे व्यवहारिक रूप से लागू किया गया है। वर्तमान में भारत, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी देशों में इस तकनीक का सफलतापूर्वक उपयोग किया जा रहा है। हालांकि भारत में यह तकनीक अभी अपने प्रारंभिक चरण में है, फिर भी भविष्य में इसके व्यापक विस्तार की संभावनाएं अत्यंत प्रबल है।
1: जी, ऊर्जा संरक्षण की बात करें तो इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है
0: जी।
1: और ऊर्जा संरक्षण में खास करके हम ग्रामीण अंचल किसान भाइयों के लिए बात करें तो वर्तमान युग में ये प्रणाली प्रासंगिक काफी है।
0: जी जी।
1: और एग्री वोल्टिक प्रणाली के बारे में हमारे भारतवर्ष में क्या संभावनाएं हैं?
0: ये देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें कई सरकारी योजनाएं तथा प्रोत्साहन भारत सरकार की तरफ से दिया जा रहा है
1: जी।
0: मार्च 2019 में प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, जिसको हम पीएम कुसुम कहते हैं, योजना भारत के कृषि क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहित करने की एक प्रमुख एवं महत्वाकांक्षी पहल है। इस योजना के अंतर्गत 0.5 से 2 मेगावाट क्षमता वाले ग्राउंड माउंटेड ग्रिड संयोजित सौर विद्युत संयंत्रों की स्थापना व्यक्तिगत किसानों, किसान उत्पादक संगठनों जिसको हम एफपीओ कहते हैं, तथा सहकारी संस्थाओं द्वारा स्थानीय विद्युत वितरण कंपनियों के सहयोग से किया जा रहा है। योजना की वित्तीय संरचना के अनुसार कुल परियोजना लागत का लगभग 60% अनुदान केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है, 30% राशि बैंक ऋण के रूप में उपलब्ध होती है तथा शेष 10% अंशदान किसान अथवा परियोजना स्वामी द्वारा किया जाता है। इससे न केवल डीजल पर निर्भरता कम होती है बल्कि अतिरिक्त विद्युत उत्पादन के माध्यम से किसानों की आय में भी वृद्धि होती है। यदि पीएम कुसुम जैसी योजनाओं के दायरे का विस्तार एग्री वोल्टाइक परियोजना तक किया जाए तो विशेष रूप से लघु एवं सीमांत किसानों के बीच, जो कि हमारे यहाँ बहुतायत से पाए जाते हैं, इस प्रणाली के व्यापक प्रसार की संभावनाएं बढ़ गई है। और इसी प्रकार मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस क्षेत्र में सार्वजनिक निजी भागीदारी भी कई कंपनियों द्वारा की जा रही है। इसमें एग्री वोल्टाइक प्रणालियों के प्रभावी विस्तार एवं क्रियान्वयन में सरकारी एजेंसियां, निजी कंपनियां तथा अनुसंधान एवं शैक्षणिक संस्थानों के बीच सार्वजनिक निजी भागीदारी की महत्वपूर्ण भूमिका हो गई है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस पर बड़ा अनुसंधान एवं नवाचार भी किया जा रहा है। एग्रो वोल्टाइक प्रणालियों की कार्य क्षमता एवं स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए सतत अनुसंधान एवं नवाचार अत्यंत आवश्यक है। अर्ध पारदर्शी अथवा झुकाव समायोज्य सौर पैनल की जैसे उन्नत डिजाइनों के विकास से फसलों तक पहुंचने वाले प्रकाश के बेहतर वितरण तथा ऊर्जा उत्पादन की दक्षता में सुधार किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पवन जनित धूल के जमाव जैसी चुनौतियों से निपटने हेतु धूल प्रतिरोधी सौर पैनलों के विकास पर भी अनुसंधान को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और दी जा रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा कहा जाता है कि जो हमारे घर में भी हम सौर पैनल का उपयोग करते हैं उस पर धूल जम जाती है, अगर उसको सही समय पर साफ ना किया जाए तो उससे ऊर्जा उत्पादन में कमी आती है। पर इस प्रकार का प्रयास किया जा रहा है कि इस प्रकार के धूल के कणों से सौर पैनलों पर और ज्यादा विपरीत प्रभाव ना पड़े, तो इस पर भी अनुसंधान और नवाचार किया जा रहा है
1: जी। एग्री वोल्टाइक प्रणाली के लाभ क्या क्या हैं?
0: जी हाँ, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहला लाभ तो है भूमि संसाधनों का दोहरा उपयोग। जैसा कि आप जानते हैं, पारंपरिक खेती में भूमि का उपयोग केवल फसलों के उत्पादन तक सीमित रहता है, जबकि एग्री वोल्टाइक प्रणाली में एक ही भूमि पर फसल उत्पादन के साथ साथ सौर ऊर्जा उत्पादन भी संभव होता है। इससे सीमित भूमि संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जाता है तथा भूमि की समग्र उत्पादकता में वृद्धि होती है। जैसा आपने देखा कि अतिरिक्त आय हम प्राप्त कर सकते हैं और इसमें उत्पादकता में भी सुधार देखा गया है। सौर पैनलों से प्राप्त आंशिक छाया के कारण पौधों पर तीव्र धूप और अधिक तापमान का प्रभाव कम पड़ता है। इससे कई फसलों में बेहतर अंकुरण, पुष्पण एवं फलन की प्रक्रिया को प्रोत्साहन मिलता है तथा गर्मी और लू से होने वाली नुकसान में भी कमी आती है। इसी प्रकार मैं आपको बताना चाहूँगा कि जलवायु सहनशील खेती भी इसके माध्यम से, इस प्रणाली के माध्यम से की जा रही है। एग्रो वोल्टेज फोटोवोल्टेक प्रणाली फसलों को तापमान, वर्षा और नमी की अनिश्चितताओं से आंशिक सुरक्षा प्रदान करती है। विशेष रूप से शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में यह प्रणाली किसानों के लिए जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से अनुकूलन का एक प्रभावी साधन सिद्ध हो सकती है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके कारण हमारी ऊर्जा आत्मनिर्भरता भी बढ़ रही है। जैसे कि खेतों में स्थापित सौर पैनलों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर बिजली उत्पादन संभव होता है।

0: जिससे किसानों की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इसके अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में बेचकर, जो अतिरिक्त बिजली किसानों को मिलती है वो उसको ग्रिड में बेचकर किसान अतिरिक्त आय भी अर्जित कर सकते हैं। इस प्रकार यह प्रणाली ग्रामीण क्षेत्रों को ऊर्जा आत्मनिर्भरण में सहायक बना रही है। इससे ऊर्जा में भी आत्मनिर्भरता आ रही है और सबसे बड़ी एक इसका उपयोग है, इसमें पर्यावरण संरक्षण भी होता है जो कि आजकल बहुत जरूरी है। सौर ऊर्जा के उपयोग से जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम होती है जिससे प्रदूषण तथा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी आती है। खेती और स्वच्छ ऊर्जा के इस समन्वयन से पर्यावरण संतुलन बनाने में महत्वपूर्ण सहायता मिलती है।
1: डॉक्टर साहब, एग्री वोल्टाइक प्रणाली का प्रचलित समेकित कृषि प्रणाली के साथ जो है सामंजस्य कैसे बनाया जा सकता है?
0: जी, मैं आपको इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर सिस्टम, जिसको आपने कहा समेकित कृषि प्रणाली के साथ इसका सामंजस्य कैसा होता है, उसके बारे में बताऊंगा। समेकित कृषि प्रणाली, जिसको हम IFS भी कहते हैं, के सिद्धांतों के अनुरूप एग्री वोल्टाइक प्रणाली एक ही भूमि इकाई पर फसल उत्पादन एवं सौर ऊर्जा उत्पादन का प्रभावी समन्वयन सुनिश्चित करती है, जिससे संसाधनों के उपयोग की दक्षता बढ़ती है। यह प्रणाली सूक्ष्म जलवायु को संतुलित करने, जल उपयोग दक्षता में सुधार करने तथा जलवायु की चरम परिस्थितियों से फसलों को आंशिक सुरक्षा प्रदान करने में सहायक होती है। इसके अतिरिक्त फसल एवं विद्युत उत्पादन से प्राप्त दोहरे आय स्रोत कृषि जोखिमों को कम करते हुए किसानों को आर्थिक स्थिरता प्रदान करते हैं तथा बाहरी ऊर्जा आदानों पर निर्भरता घटाते हैं। इस प्रकार कृषि सौर प्रणाली IFS की सहनशीलता, दीर्घकालिक स्थिरता तथा संसाधन संरक्षण को बढ़ावा देने के साथ साथ सतत विकास लक्ष्यों, विशेष रूप से खाद्य सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु कार्रवाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
1: जी डॉक्टर साहब, इसके अलावा जो है संयुक्त राष्ट्र के सतत 21 लक्ष्यों की प्राप्ति में एग्री वोल्टेक प्रणाली की क्या भूमिका होगी?
0: जी, देखा आपने कि पूरे विश्व में ये प्रयास किए जा रहे हैं कि सौर ऊर्जा का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए,
1: और हमारी सरकार का भी जो
0: बिल्कुल है, पूरे भारतवर्ष तो है ही, पर इसमें पूरा संयुक्त राष्ट्र लगा हुआ है कि सभी देश का उपयोग करें। तो आप जैसा जानते हैं कि एग्रो वोल्टाइक प्रणाली एवं एक अभिनव तथा बहुउद्देशीय दृष्टिकोण से रूप से संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में महत्वपूर्ण योगदान देती है। यह प्रणाली फसल उत्पादन के साथ सौर ऊर्जा उत्पादन को एकीकृत कर किसानों की आय में वृद्धि करती है, जिससे गरीबी उन्मूलन तथा खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने में सहायता मिलती है। इसके साथ ही नवीकरणीय एवं स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देकर यह प्रणाली जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता को कम करती है और सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा के लक्ष्य की प्राप्ति में योगदान देती है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा उपलब्धता बढ़ने से रोजगार के अवसरों का सृजन होता है, जिससे सम्मानजनक कार्य और आर्थिक विकास को भी प्रोत्साहन मिलता है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि भूमि के द्वैत उपयोग, कार्बन उत्सर्जन में कमी तथा जलवायु सहनशीलता में वृद्धि के माध्यम से यह प्रणाली उत्तरदायी उपयोग एवं उत्पादन तथा जलवायु कार्रवाई को समर्थन प्रदान करती है। इसके साथ ही सतत भूमि उपयोग एवं जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देकर यह स्थलीय परिस्थिति तंत्र को संरक्षण में भी सहायक सिद्ध होती है। विभिन्न हितधारकों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करते हुए यह प्रणाली लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए साझेदारी को भी सशक्त बना रही है। इस प्रकार एग्री वोल्टाइक प्रणाली सतत कृषि, स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण के समन्वय के माध्यम से समग्र सतत विकास की दिशा में एक प्रभावी और व्यवहारिक समाधान के रूप में उभर रही है।
1: डॉक्टर साहब, अंत में चलते चलते हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एग्री वोल्टिक प्रणाली को पूर्णतः लागू करने में क्या क्या चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों का सामना करते हुए हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं?
0: बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ी चुनौती है इसकी उच्च प्रारंभिक लागत। एग्रीवोल्टिक प्रणाली की प्रमुख चुनौतियों में इसकी उच्च प्रारंभिक पूंजीगत लागत शामिल है, जिसमें सौर अनल संरचनात्मक ढांचा, विद्युत उपकरण, बैटरी भंडारण तथा स्थापना पर पर्याप्त निवेश की आवश्यकता होती है। इसलिए छोटे किसानों को यह इसको अपनाना थोड़ा कठिन हो जाता है। दूसरी बात अगर मैं करूँ तो तकनीकी जटिलता भी इसमें होती है, क्योंकि सौर पैनलों का झुकाव कोण, ऊंचाई और उसके बीच की दूरी का निर्धारण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, जिसके आधार पर ऊर्जा का उत्पादन होता है, और ये दोनों कारक ऊर्जा उत्पादन और फसल वृद्धि को प्रभावित करते हैं। यदि पैनल बहुत नीचे लगाए जाए तो कृषि यंत्रों के संचालन में कठिनाई होती है और अधिक ऊंचाई पर स्थापना से लागत बढ़ जाती है, इस प्रकार ये इसमें तकनीकी जटिलता होती
1: और
0: है।
1: जमीन भी तो ज्यादा घेरता होगा,
0: जमीन भी ज्यादा घेरता
1: उसके होगा। नीचे क्यों, कृषि संभव है?
0: संभव है, इसमें अब इतनी ऊंचाई पर लगाई जाती है जिससे संभव हो सकता है। ये आपने देखा होगा कि ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं कि पौधों को भी थोड़ी छाया मिलती रहे और उनके बीच में भी कुछ पैदावार ली जा सके। और इसी प्रकार आपने देखा होगा कि भारत में छोटे और बंटवारी वाले जोत अधिक होती है तो इन पर भी इनको अपनाना थोड़ा कठिन हो जाता है। और इसी प्रकार सामाजिक जागरूकता और स्वीकृति की भी कमी हमारे किसानों के बीच पाई गई है। कई किसान इसे केवल ऊर्जा उत्पादन से जुड़ी परियोजना के रूप में देखते हैं और इसे फसल उत्पादन के साथ साथ समन्वित तकनीक के रूप में अपनाने में संकोच करते हैं, तो ये भी एक बाधा है। और इसी प्रकार दीर्घकालिक स्थायित्व और पुनर्निवेश, क्योंकि सौर पैनल की आयु लगभग 20 से 25 साल होती है तो इसके पश्चात इसको आपको फिर से सुधारना पड़ेगा, फिर से व्यवस्थित ढंग से लगाना पड़ेगा, तो ये एक बाधा मानते हैं किसान भाई। और इसके प्रकार पर्यावरण और परिस्थिति चिंताएं भी हैं, जैसे बड़े पैमाने पर सौर पैनलों की स्थापना से स्थानीय जैव विविधता पर प्रभाव पड़ने की आवश्यकता होती है, आशंका बनी रहती है। पैनलों से उत्पादन छायांकन के कारण भूमि पर उगने वाले कुछ पौधों तथा कीटों के प्राकृतिक आवासों में परिवर्तन हो सकता है और यदि संतुलित प्रबंधन ना किया जाए तो यह एक चुनौती बन जाती है। पर अगर देखें हम कुल मिलाकर तो एग्री वोल्टाइक प्रणाली एक उन्नत एवं नवोन्वेषी तकनीक है जो एक ही भूमि इकाई पर खाद्य उत्पादन तथा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का प्रभावी एकीकरण करती है। इससे किसानों को आर्थिक लाभ के साथ साथ संसाधनों के समन्वित उपयोग के अतिरिक्त लाभ प्राप्त होते हैं। यह प्रणाली विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है जहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है, औद्योगिक विकास तीव्र है तथा नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार के साथ साथ कृषि भूमि के संरक्षण की आवश्यकता भी बढ़ रही है। तो अब आप देख सकते हैं कि कुल मिलाकर अगर हम कहें कि सौर पैनलों के कारण उत्पन्न छायांकन जो छाया पड़ती है सूक्ष्म जलवायु को भी प्रभावित करता है जिससे सौर विकिरण जल संतुलन तथा फसल वृद्धि पर प्रभाव पड़ सकता है। इस कारण कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जिनको दूर किया जा रहा है और इनका समाधान भी ऐसा निकाला जा रहा है वैज्ञानिक आधार पर कि किसान ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपनाए और इस प्रणाली का बहुत अच्छा लाभ उठा सके।
1: बिल्कुल आपने सही कहा। तो डॉक्टर साहब आज आप हमारे कार्यक्रम में भाग लिए और शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों हेतु एग्री वोल्टेक प्रणाली के बारे में हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी समझाइश दी, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: तो अभी अपन ने सुनियो शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र नकाले एग्री वोल्टाइक प्रणाली जो खेती की छे ओका पर डॉक्टर दीपक हरी रानाडे से भाई राजेश की बातचीत थी। आना भाई इन्हीं बातचीत का बाद मन अरु कर रोज की दड़ बादल न को एक लोकगीत तो अरु हुई जाए गायलो छे मनसी भोंडिया न मंडली न सुना जिनको प्यारो सुलोक।

वाह, अभी प्यारो सो लोकगीत सुनियो, मनसी भूंडिया ने मंदिर को गायेलो, दल बादड़ी को पानी कुन तो भरे। भई इनी बादड़ी का पानी खपण का अवेरनूज सहेजी न धरनूज, आन अपना जो रीता कुआ बावड़ी जो बाप दादा नन परदादा नन अपना लेन बनाड़ी थी, खोदाड़ी थी, जो रीति हुई गई उनको वापस से भरनूज। आन छत को पानी छत में रखनूज, गांव को पानी गांव में, न खेत को पानी खेत में। पानी की बूंद अवेरांगा तो उंधाड़ा में याज काम आवेगा, और भूजल स्तर जो अपनो कम हुई गयल छे वो अंदर जाएगा, दर उतरेगा तो भूजल स्तर भी अपनो बढ़ेगा और आने वाली पीढ़ी को भी पानी मिलेगा। तो अपन ख एक एक जो बूंद छे अपना पास आई ओख अवेरी न टोपी न सहेजी ने रखनूज। भाई गीत तो घणो अच्छो सुनियो, और हम योज कहवांगा कि भाई अपना ताल तलैया भरेली रहे, और जहाँ ताल तलैया अपन का जीवन को पानी देच, सातज में अपन का आर्थिक आधार भी बनी सकज। और वो छे आज हम खासे कालीन बात कराज कि आज मत्स्य पालक दिवस छे, 10 जुलाई का दिन मनावन। और

0: सभी मत्स्य पालक भाई ने शुभ कामना भी देवा अने साथ में सुनाने पड़िया जिनका से पन फोन पर बात करी थी ये छे डॉक्टर सुशांत पुणेकर जी, ये सहायक प्राध्यापक प्राणी शास्त्र विभाग इंदौर से छे, ये हमारे साथ फोन पर जुड़िया और इन सभी मत्स्य पालक भाई ने शुभ कामना दी और अपना बात कही सुना जन किया बात।
1: नमस्कार सभी मत्स्य किसान भाइयों, मछुआरा समुदाय के सभी सदस्यों को और मत्स्य पालन के क्षेत्र में जुड़े हुए सभी व्यवसायियों को मेरा नमस्कार। आज बड़ा शुभ दिन है कि 10 जुलाई को हम राष्ट्रीय मत्स्य पालन दिवस के रूप में इस दिवस को आयोजित करते हैं। इस दिवस को हर्ष खुशी के साथ में हमारे मत्स्य किसान भाई इस तारीख में जुड़ते हैं। राष्ट्रीय मत्स्य पालन दिवस का महत्व इस बात पर है कि इस दिन हमारे मत्स्य पालन के क्षेत्र में बहुत बड़ी तकनीकी वैज्ञानिक तकनीकी का विकास हुआ। वो वैज्ञानिक तकनीक थी इंड्यूस ब्रीडिंग, प्रेरित प्रजनन की तकनीक, जिसे माननीय और आदरणीय डॉक्टर हीरालाल चौधरी साहब ने एवं अनी कुल्ली साहब ने इस तकनीक को डेवलप किया। यह तकनीक ऐसी तकनीक हुई जिससे कि हमारे इस मत्स्य उद्योग में एक क्रांति आ गई जिसे हरित क्रांति के नाम से हम जानते हैं। यह मत्स्य पालक दिवस हमारे मत्स्य पालकों के लिए, चूंकि जुलाई का महंत है, 10 जुलाई का समय है, इस समय हमारे सभी मत्स्य पालक जानते हैं कि उनके आसपास के क्षेत्रों में उनके जो मत्स्य पालन के तालाब हैं, पोखर हैं, जलाशय हैं, नहरें हैं, इसमें अब पानी का जो है भराव दिखाई देने लगा है, अर्थात मानसून आ चुका है। और इस मानसून आने से जो इस व्यवसाय पानी से जुड़े हुए व्यवसाय में जुड़े हुए हमारे जो मछली पालक हैं उनके लिए बड़ी खुशहाली का दिवस है और खुशहाली के साथ साथ उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धता है कि आज के दिन से वो मत्स्य पालन की आगामी वर्ष की कार्यवाही को प्रारंभ करते हैं। अर्थात उनके लिए एक दिवाली का अवसर है हमारे मत्स्य किसान भाइयों के लिए कि वे आज से अपने मत्स्य तालाब के पानी के भराव का काम के साथ साथ मछलियों के, हमारे कई किसान भाई मछलियों के बीज का विसर्जन करेंगे, मछली के तालाब का सुधार कार्य करेंगे और मछली के नए साल के नए उत्पादन की तरफ बढ़ेंगे। इतना महत्वपूर्ण दिवस मत्स्य किसान भाइयों के लिए आज का दिवस है जिसको हम 10 जुलाई को आयोजित करते हैं और उससे उत्साह के रूप में मनाते हैं। इस दिवस में हम सभी मत्स्य किसान भाई ये अपने क्षेत्र में मछली के उत्पादन में, देश के उत्पादन में अपना सहयोग प्रदान करें, नई नई तकनीकों का इस्तेमाल करें और अधिक से अधिक कम जल क्षेत्र में अच्छी प्रजातियों का संग्रहण करके उत्पादन बढ़ाएं और अपना जीवन का एक नया चरण शुरू करें। अर्थात जैसा कि हम जानते हैं कि दिवाली के बाद से हम नए वही खाता खोलते हैं, उसी तरह से हम सभी मत्स्य किसान भाइयों और मत्स्य कार्य में जुड़े हुए सभी व्यवसायियों को हम अनुरोध करते हैं कि आज 10 जुलाई से वे भी अपने इस नए सीजन में मछलियों के व्यवसाय से जुड़े जो भी उनके वही लेखा खाता है, बजट है, उसका लेखा जोखा आज से प्रारंभ करें और पुराने जो लेखा जोखा उन्होंने जो भी गत वर्षों में इसमें आमदनी प्राप्त की है उसका लेखा जोखा समाप्त करके और उसमें हुई आमदनी का आकलन करें और नए वर्ष में बड़े उत्साह के साथ इस मछली के उत्पादन के क्षेत्र में अपना सहयोग प्रदान करें। मछली, आप जानते हैं कि मछली एक ऐसा भोज्य पदार्थ है जो कि बहुत ही पौष्टिक है और पोषक तत्वों से भरपूर है, अर्थात इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक है, ओमेगा 3 फैटिक एसिड है। इस तरह के आहार यदि हम अपने देश के लोगों को उपलब्ध कराते हैं तो बहुत सारी हम बीमारियों से निदान पा सकते हैं, बहुत सारी हम अपने शरीर में ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं। इस तरह के भोज्य पदार्थ को लोगों तक या इसके कंज्यूमर करने वालों तक हम पहुंचाए तो
0: अभी अपन ने सुनी डॉक्टर सुशांत पुणेकर जी, सहायक प्राध्यापक प्राणी शास्त्र विभाग इंदौर से उन्हें बधाई भी दी और जानकारी भी दी। आज राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस छे और हमको सब न का मालूम छे कि भारत की जो ब्लू इकोनॉमी कहवा नीली जो कुछ छे आर्थिक जो मदद करे वो कारण बहुत अच्छो रहेगा। तो हम अपना जो भी छे मत्स्य पालक भाई छे उनको यूज करवांगा कि सतत जिम्मेदारी पूर्ण तरीका कपड़े

मछली पालन करा, इन ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा और समुद्र पर या नदी पर जो आधारित खाद्य छे उनका न प और अच्छो विकास करा। और असी जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ने छे क्रेडिट कार्ड छे किसान क्रेडिट कार्ड सरी की योजना ने छे उनका सो लाभ लेना न न मत्स्य पालन का आगे बढ़ावा आन अच्छो से अच्छो भाव भी ले। भाई खेती किसानी तो कर सही, और भाव की बात करी तो मंडी ने का भाव मारा पास आई गए वो हूँ आपको बता दूँ। तो ये छे गेहूँ की आवक रही 1640, भाव रहो 2000 से लेना 3090 अन मॉडल भाव रहो 2546। मिर्ची को भाव रहो 6910 से लगे ना 12890। तिल्ली को एक कुंटल आवक रहो 11405 जिकी रही। मूंग 44 कुंटल आवक रही 3280 से लगे ना 7001 की आवक बठेली छे। और राजमा 16 रहा 3350 से लेने ना 8655 रहा। डॉलर चना 3213 कुंटल आवक रही और 3000 से लेने ना 9125 एकी आवक बठेल छे। तो भाई ये तो हमने मंडी ना का भाव बताया न, हम चलते चलते आपसे योज कवांगा कि सूरज की धूप अन माटी से खिलतो रहे जीवन, पानी में तेरे मछली न महकतो रहे उपमन। भाई घड़ी इशारो करे कि अब समय पूरो हुयो, सभी किसान भाई बहन से लेवा विदा, जाजम का अवेरा न कवा राम राम।

श्रोताओं, कल के कार्यक्रम की जानकारी में सुधार करते हुए हम आपको बताना चाहते हैं कि कल के खेती गृहस्थी कार्यक्रम में पशुपालक पशुओं का रखरखाव बारिश के मौसम में कैसे करें, इस विषय पर लखनदास बैरागी जी से की गई बातचीत हम आपको सुनवाएंगे। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है, आप खेती गृहस्थी कार्यक्रम सुन रहे थे। थोड़ी देर में सुर्खियों में कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत के रणनीतिक संबंधों को मिलती नई मजबूती पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत गुरजीत सिंह, कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं पत्रकार टीना झा।
2: नमस्कार, सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूँ टीना झा। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऑकलैंड पहुंचे हैं। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों बाद न्यूजीलैंड की पहली यात्रा है। इस ऐतिहासिक अवसर पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने स्वयं एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। ऑकलैंड का प्रतिष्ठित स्काई टावर भी भारत और न्यूजीलैंड की मित्रता के रंगों में जगमगा था। वहीं भारतीय समुदाय में भी इस यात्रा को लेकर खास उत्साह देखने को मिल रहा है। लेकिन ये यात्रा सिर्फ प्रतीकों तक सीमित नहीं है। व्यापार, रक्षा, शिक्षा, खेल, प्रौद्योगिकी और लोगों के बीच संपर्क जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की दिशा में इसे एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि इस यात्रा का रणनीतिक महत्व क्या है, भारत की इंडो पैसिफिक नीति में न्यूजीलैंड की क्या भूमिका है और ये यात्रा दोनों देशों के संबंधों को किस नई दिशा में ले जा सकती है। इन्हीं सभी पहलुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ राजनयिक और भारत के पूर्व राजदूत श्री गुरजीत सिंह जी। अम्बेसडर, आकाशवाणी में आपका स्वागत है।
3: धन्यवाद टीना।
2: अम्बेसडर, प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा 40 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की यात्रा है। जिस तरह से एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री का स्वागत हुआ, स्काई टावर को जिस तरह से रोशन किया गया है या फिर जिस तरह से भारतीय समुदाय का उत्साह

0: देखने को मिल रहा है, इन सब के अपने प्रतीकात्मक मायने हैं, लेकिन आपकी नजर में क्या ये यात्रा भारत न्यूजीलैंड संबंधों में एक नए दौर की शुरुआत कर सकती है?
1: निश्चित है कि ये एक नया दौर शुरू हो रहा है। चाहे ये भारत के प्रधानमंत्री की 40 साल के बाद एक यात्रा है, तो ये प्राइम मिनिस्टर लुक्सॉन के साथ भी उनकी पहली मुलाकात ईस्ट एशिया समिट के साइडलाइंस पे लाओस में हुई थी। तो हमने पूरी कोशिश की है कि न्यूजीलैंड के साथ अपना संबंध बनाए, चाहे कि एक बहुत बड़ी विजिट ऐसी नहीं हो। तो उनके प्रधानमंत्री भी पिछले साल आए थे, उनके विदेश मंत्री भी आए थे, और उन दोनों का आना बड़ा जरूरी था, क्योंकि हालांकि वो दोनों एक ही सरकार में हैं, उनकी पार्टियां अलग हैं, और हमारे साथ जो FTA हो रहा है उनके ऊपर उनका नजरिया अलग है। तो हमने न्यूजीलैंड के हर कोने की जो एक सोच है उसके साथ संबंध बनाए हैं। आज जब प्रधानमंत्री मोदी हम न्यूजीलैंड गए हैं तो वो विपक्ष के नेताओं से भी मिलेंगे। तो ये न्यूजीलैंड एक छोटा देश है, वो ना तो क्वाड का मेंबर है और ना ही इंडो पैसिफिक में इतना एक्टिव है, लेकिन अब वो भी भारत को एक स्ट्रेटेजिक नजरिए से देख रहा है और भारत उसका पूरे रूप से सम्मान से उसका जवाब दे रहा है।
0: बिल्कुल, तो इस बारे में क्या आउटकम रहेगा, दोनों प्रधानमंत्री जब वार्ता करेंगे इस पे हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन अम्बेसडर, आज जब इंडो पैसिफिक वैश्विक रणनीति का केंद्र बन चुका है, ऐसे में क्या भारत और न्यूजीलैंड रीजनल सिक्योरिटी और रूल्स बेस्ड ऑर्डर को और मजबूत करने में साथ मिलकर किस तरह की भूमिका निभा सकते हैं?
1: और न्यूजीलैंड ईस्ट एशिया समिट के दोनों सदस्य हैं और दोनों ही आसियान के डायलॉग पार्टनर हैं, और हम और दोनों ही आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस में भाग लेते हैं, आसियान रीजनल फोरम में भाग लेते हैं। तो जो ये अब रणनीति की बात कर रही हैं, ये इन संस्थाओं में जो बातचीत होती है उसमें भारत और न्यूजीलैंड का साझा प्यार वहां पर आ चुका है, तो उसमें हमें कोई शंका नहीं है। लेकिन अब क्योंकि चीन का दबाव बढ़ रहा है उस क्षेत्र में, खासकर पैसिफिक आइलैंड्स के ऊपर, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ न्यूजीलैंड भी अपना हाथ उठाकर एक कोशिश कर रहा है कि फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक बनाया जाए और वहां पर किसी बड़ी शक्ति का प्रभाव पूरी तरह से नहीं फैलने दे।
0: अब बात करते हैं व्यापार और अर्थव्यवस्था की। एम्बेसडर, आपने जिक्र किया कि FTA का जो फॉर्मल साइनिंग है वो हुआ था अभी कुछ महीनों पहले, हालांकि इससे पहले ये कहा जाता था कि भारत न्यूजीलैंड संबंधों में व्यापार अपनी पूरी क्षमता फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाया है। FTA के बाद वो कौन से क्षेत्र हैं दोनों देशों के लिए जिसमें सबसे अधिक संभावनाएं निकलकर सामने आई हैं, किन क्षेत्रों को सबसे ज्यादा लाभ हुआ है FTA के बाद?
1: न्यूजीलैंड अपनी ट्रेड APEC का मेंबर है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कम्युनिटी, वो RCEP जिसमें से भारत ने एग्जिट कर लिया था उसका भी मेंबर है, और कॉम्प्रीहेंसिव पार्टनरशिप फॉर द ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप उसका भी वो मेंबर है, उसका इनफैक्ट सेक्रेटेरिएट वही चलाते हैं। तो ये बड़ी बड़ी जो अग्रीमेंट्स हैं जिनमें भारत नहीं है उसमें सब में न्यूजीलैंड है, क्योंकि उस न्यूजीलैंड को अपने व्यापार के लिए बड़ी मार्केट्स की एक सर्च रहती है, हमेशा खोज रहती है। तो भारत के पास भी वो इसी वजह से आया कि हमें भी भारत का जो बड़ा मार्केट है उसकी खोज है। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि जब RCEP की निगोशिएशन होती थी तो न्यूजीलैंड बहुत भारत को तंग करता था, क्योंकि उसकी एकमात्र रणनीति थी कि हमारे दूध और दूध के पदार्थ भारत की मार्केट में जरूर आए
0: जी।
1: अब हमारा जो FTA उनके साथ हुआ है इसमें भारत ने अपनी जो अपनी हमारी सोच है उसकी रक्षा की है, और इसमें दूध एग्रीकल्चर ऐसी जो चीजें हैं उनको हमने नहीं आने दिया है। लेकिन क्योंकि भारत की स्ट्रेटेजिक वैल्यू बड़ी हाई है, न्यूजीलैंड ने FTA साइन किया है और भारत के 100% गुड्स को वहां आने की अनुमति दे दी है। हमने अपनी तरफ से भी काफी ढील उनको दी है और तकरीबन 90% जो न्यूजीलैंड के एक्सपोर्ट ऑलरेडी भारत को होता था उसको फायदा होगा FTA से। लेकिन जो ये बड़ी चीजें होती हैं, दूध मिल्क पाउडर चीज, इन चीजों को हमने अभी अपनी अनुमति नहीं दी है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ चीजों में समझौते की तरह हम आगे बढ़े, जैसे कि एक एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी प्रोग्राम जिसमें एप्पल

0: कीवीज और जो उनकी एक खास शहद होता हनी होती है मारुकारी, उसके लिए भारत में कैसे उनको उसका उत्पाद किया जाए उसके लिए एक पार्टनरशिप बनाई जाए। दूसरा सबसे बड़ा जो मैं समझता हूं कि भारत की ओर से जो लोगों की मोबिलिटी है, मतलब वहां जाकर न्यूजीलैंड में पढ़ सकते हैं और वहां काम भी कर सकते हैं, इसको एफटीए के अंडर हमें और अनुमति मिलेगी। और फाइनली $20 बिलियन का एफडीआई निवेश न्यूजीलैंड अगले 15 साल में भारत में करेगा। तो ये होता है एक कॉम्पोजिट एफटीए जिसमें निवेश भी है, व्यापार भी है, मोबिलिटी भी है और सर्विसेज भी है। और न्यूजीलैंड का जो निवेश भारत में है वो ज्यादातर आईटी में है, लॉजिस्टिक्स में है, ऐसी सर्विसेज में है। तो ये उनकी क्षमताएं हैं, तो ये इस तरह से उनको फायदा होगा।
1: नई संभावनाएं हालांकि तलाश रहा है न्यूजीलैंड भी, क्योंकि जिस तरह से भारत आज दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया है, कहीं ना कहीं ये संभावनाएं भी न्यूजीलैंड को नजर आ रही हैं। और जो क्लाइम डाउन एक तरह से कह सकते हैं उनकी पुरानी पॉलिसी में, वो भी हमने देखा है। आपने पीपल कनेक्ट की बात कही एम्बेसडर, तो उससे जुड़ता एक सवाल है कि हमने देखा है कि प्रधानमंत्री मोदी की हर विदेश यात्रा में वो ये इंश्योर करते हैं कि भारतीय समुदाय से वो संवाद जरूर करें, और न्यूजीलैंड में भी देख रहे हैं हम कि भारतीय समुदाय लगातार प्रभावशाली होता जा रहा है। क्या ये समुदाय हम कह सकते हैं कि इंडिया न्यूजीलैंड के कॉन्टेक्स्ट में भी एक नेचुरल ब्रिज या फिर एक इकोनॉमिक और एक स्ट्रेटेजिक ब्रिज, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया के बारे में कहा जाता है कि जो इंडियन डायस्पोरा ऑस्ट्रेलिया में है, दे आर नो लॉन्गर जस्ट अ कल्चरल और एन इमोशनल ब्रिज, दे आर एज मच एन इकोनॉमिक एंड अ स्ट्रेटेजिक ब्रिज, क्या न्यूजीलैंड के केस में ये कहा जा सकता है कि भारतीय समुदाय के लोग जो वहां रह रहे हैं वो भी इस रिश्ते को मजबूत करने में काफी अहम भूमिका निभा रहे हैं?
0: क्योंकि वहां पर तकरीबन 3 लाख भारतीय मूल के लोग हैं, जिसमें से तकरीबन 70,000 भारतीय पासपोर्ट होल्डर हैं। तो ज्यादातर लोग तो न्यूजीलैंड के नागरिक हैं। न्यूजीलैंड ने कुछ साल पहले से एक प्रोग्राम अडॉप्ट किया था कि भारत जैसे देशों से जो यंग प्रोफेशनल्स होते हैं, जिन एरिया में उनको जरूरत थी, ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हुआ, डॉक्टर हुआ, हेल्थ वर्कर हुआ, तो कंप्यूटर प्रोफेशनल हुआ, ये उन्होंने इन प्रोफेशनल्स को टारगेट करके माइग्रेशन की। तो ज्यादातर माइग्रेंट्स जो उधर हैं हमारे, वो सब प्रोफेशनल्स हैं। तो ये हमारी कम्युनिटी को एक अच्छा औदा और अच्छी तस्वीर बना के देता है। अब वो हमेशा प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा का इंतजार कर, आज मैंने देखा था कि कई लोग भारतीय मूल के कह रहे थे हमारा तो जीवन सफल हो गया, क्योंकि हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि इस छोटे से देश में प्रधानमंत्री मोदी आएंगे। अभी आज पहुंच गए हैं, तो जो ये मीटिंग होगी उसमें हाउसफुल जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी मीटिंग एक भारतीय मूल के प्रधानमंत्री के लिए आज तक नहीं हुई है। तो ये एक नया कीर्तिमान आज देखा जाएगा।
1: बिल्कुल, उस तरह की एक्साइटमेंट प्रधानमंत्री मोदी के वहां पहुंचने से पहले भी देखी गई है। बल्कि कल जब मेलबर्न में भी प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के लोगों को एड्रेस कर रहे थे तो काफी उत्साह था। एम्बेसडर, ऑस्ट्रेलिया का जो विजिट रहा प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड से पहले 2 दिवसीय यात्रा, उसमें भी कई इंपॉर्टेंट आउटकम्स, कई ठोस परिणाम सामने आए। अगर दोनों यात्राओं को भारत की व्यापक इंडो पैसिफिक रणनीति के संदर्भ में देखें तो ये कितना महत्वपूर्ण है और इसकी टाइमलीनेस कितनी इंपॉर्टेंट है, एक डिप्लोमेटिक संदर्भ में अगर आप हमारे श्रोताओं को समझा सके।
0: नॉर्मली न्यूजीलैंड को एक ऑस्ट्रेलिया का करीबी दोस्त माना जाता है कि जो ऑस्ट्रेलिया नीति अपनाएगा न्यूजीलैंड भी वो अपनाएगा, लेकिन इंडो पैसिफिक पे, क्वाड पे और चीन के ऊपर न्यूजीलैंड ने अलग कदम उठाए ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया तो क्वाड का मेंबर है, इंडो पैसिफिक में एक्टिव है, न्यूजीलैंड ने उसने इतने कदम नहीं बढ़ाए, इसलिए दोनों विजिट्स को एकमात्र रूप से देखना मैं समझता हूं थोड़ी विचित्रता आती है। अब ऑस्ट्रेलिया के साथ सबसे गहरी बात दो है, एक यूरेनियम और एक क्रिटिकल मिनरल्स, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास ये चीजें बड़ी मात्रा में है। तो सिविलियन न्यूक्लियर एग्रीमेंट, जो यूरेनियम हमको मिलेगा जिससे हम अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट चला पाएंगे और फॉसिल फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंस कम कर पाएंगे, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। क्रिटिकल मिनरल्स, तो वो क्वाड क्रिटिकल मिनरल इनिशिएटिव और पैक सिलिका का भाग है ऑस्ट्रेलिया। फिर डिफेंस और मैरिटाइम सिक्योरिटी का जो हमारा एक संधि हुई है, उसमें इंडियन कोस्ट गार्ड और ऑस्ट्रेलिया का मैरिटाइम बॉर्डर कमांड, ये भी दोनों आपस में अब तालमेल

0: आई हुई है। तो उन्होंने कई चीजें इस बारी भारत को लौटाई और इसका बड़ा अच्छा एक इम्पैक्ट होता है। न्यूजीलैंड के पास यूरेनियम नहीं है, क्रिटिकल मिनरल नहीं है, उनके पास शीप है, दूध है, आईटी की क्षमता है, तो वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि हम बड़ा वादा कर दें एफडीआई का, उसका पूरा करें, तो उससे तो फायदा होगा ही। दूसरा मैरीटाइम सिक्योरिटी, जो आसियान और ईएएस में भी बात होती है, न्यूजीलैंड उसको भी दोहरा रहा है। ये विजिट, जैसे मैंने कहा, एक नया दौर शुरू करेगी भारत और न्यूजीलैंड में।
1: बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री मोदी की तीन देशों की यात्रा बिल्कुल यही स्पष्ट कर रही है। सबसे पहले शुरुआत उन्होंने इंडोनेशिया से की, फिर वो ऑस्ट्रेलिया गए और अब वो न्यूजीलैंड गए हैं दो दिनों के लिए। ये स्पष्ट है कि भारत का इंडो पैसिफिक दृष्टिकोण अब और अधिक व्यापक हो गया है और अधिक सक्रिय है, और इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तीनों देशों के साथ सहयोग को नई दिशा देने की ये पहल आने वाले समय में क्षेत्रीय स्थिरता, आर्थिक साझेदारी और साझा समृद्धि को और ज्यादा मजबूती दे सकती है। इसी उद्देश्य के साथ प्रधानमंत्री इन तीनों देशों की यात्रा पर गए हैं। अम्बेसडर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत के रणनीतिक संबंधों को मिलती नई मजबूती पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत गुरजीत सिंह, कार्यक्रम का संचालन कर रही थी पत्रकार टीना झा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalk@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: सुर्खियों में
4: अभी आपने ये कार्यक्रम सुना।
5: आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। लीजिए श्रोताओं, अब सुनिए कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया।

0: बता दूं?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर
1: यहीं है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

श्रोताओं, दुनिया में रोज न जाने कितने लोग एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन उनमें कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं जो उम्र भर दिल में महकती रहती हैं। पहली बार किसी को देखना, पहली बार उससे बात करना, और फिर उसी मुलाकात का यादों की सबसे खूबसूरत तस्वीर बन जाना, यही तो मोहब्बत का पहला रंग है।

पहली मुलाकात कितनी अजीब होती है ना। मन में ढेर सारे सवाल, होंठों पर हल्की सी मुस्कान और दिल की धड़कन जैसे किसी नई धुन पर चलने लगती है। पहली मुलाकात में अक्सर बातें कम होती हैं और आंखें ज़्यादा बोलती हैं। कई बार दो लोग कुछ मिनट ही साथ रहते हैं, लेकिन वो कुछ मिनट वर्षों तक याद रहते हैं।

पहली मुलाकात के क्षण भी अजीब होते हैं। नजरें मिलाई भी नहीं जाती और देखे बगैर दिल मानता भी नहीं। कभी कॉलेज के गलियारे में, कभी किसी पारिवारिक समारोह में, तो कभी यूं ही सफर के दौरान। कौन जानता है कि कौन सी मुलाकात आगे चलकर जीवन की सबसे प्यारी कहानी बन जाएगी।

श्रोतों, फिल्मों ने हमें पहली मुलाकात के अनगिनत रंग दिखाए हैं। कभी बारिश में टकराती निगाहें, कभी हवा में उड़ता दुपट्टा, कभी हाथों से गिरी हुई किताबें। लेकिन असली जिंदगी में मुलाकातें सादगी भरी होती हैं। वहाँ कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं होता, फिर भी दिलों में एक खास गुदगुदाहट तो होती ही है।

पहली मुलाकात की, पहली मुस्कान की और उन धड़कनों की जो किसी खास के आने से बदल जाती हैं। लेकिन मोहब्बत की कहानी यही नहीं रुकती। पहली मुलाकात के बाद शुरू होता है इंतज़ार, इकरार और फिर दिल की अनकही बातों का सफ़र। इस सफ़र की बातें फिर कभी। आज के दिल ने फिर याद किया कार्यक्रम को समाप्त करने की शालिनी को अनुमति दीजिए।

0: अभी आप दिल ने फिर याद किया कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। थोड़ी देर में हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और भारतीय समुदाय ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात की। व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और रक्षा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा हुई। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। उत्तरी रेलवे के 680 किलोमीटर मार्ग पर सुरक्षा और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए कवच के कार्यान्वयन को स्वीकृति दी गई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से। और विंबलडन टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने

0: श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत समारोह में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने और भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच अटूट संबंधों को मजबूत करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि संगीत में लोगों को एकजुट करने की अनूठी क्षमता होती है और आज की प्रस्तुति ने भारत न्यूजीलैंड की मित्रता की गर्मजोशी और गहराई को खूबसूरती से प्रतिबिंबित किया है। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआनपोई साइवेई ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने का बड़ा अवसर मिला है।
1: फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी।
2: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावना है। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
1: And then we can sell to further markets as well.
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए।
3: यात्रा की शुरुआत भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच से हुई, जहां कारोबार जगत के प्रमुखों ने वर्ष 2022 के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से द्विपक्षीय व्यापार में 55% की वृद्धि का स्वागत किया। इस गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि ये बहुसांस्कृतिक शक्ति ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता एंगस टेलर से भी मुलाकात की। श्री टेलर ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया का सच्चा मित्र बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम निर्यात जैसी पहलों का समर्थन किया। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान भव्य स्वागत और आतिथ्य के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार और वहां की जनता के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने ऑस्ट्रेलिया से तमिलनाडु की अमूल्य धरोहरों की वापसी पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्री राधाकृष्णन ने सांस्कृतिक धरोहरों को देश में वापस लाने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की। वर्ष 2014 से अब तक 600 से अधिक कलाकृतियां स्वदेश आ चुकी हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं की चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा एआई क्षेत्रों पर केंद्रित रही। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा से दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी के विश्वास और मजबूती का पता चलता है। ओमान के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और ओमान के बीच सदियों पुराने समुद्री संबंध दोनों देशों के लोगों को सदियों से जोड़ते रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुर्गन ने आज संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। रेलवे ने उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार करना है। इस परियोजना का लक्ष्य घनी आबादी और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली का विस्तार करना है। इस बीच रेलवे ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक इंजन के लिए अतिरिक्त प्राथमिक रखरखाव केंद्र बनाने के लिए 175 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। प्राथमिक केंद्र में इंजन की सुरक्षा जांच, मरम्मत और देखभाल

0: की जाती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश के बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि 2026-27 के अंतर्गत 611 करोड़ रुपए से अधिक की 17 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने निरंतर समर्थन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। कौशल विकास, उद्यमिता और शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने पीएम सेतु पहल के अंतर्गत सूरत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई समूह के लिए 240 करोड़ रुपए की निवेश योजना का अनावरण किया है। इस पहल में आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया को समूह का प्रमुख उद्योग भागीदार नामित किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य 25,000 से अधिक युवाओं को आधुनिक उद्योग प्रशिक्षण, शिक्षुता और नए रोजगार के अवसर प्रदान करना है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की प्रगति की समीक्षा के लिए आज मिशन संचालन समूह की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बताया गया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में लगभग 94 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता बनाए गए हैं और 105 करोड़ स्वास्थ्य रिकॉर्ड जोड़े गए हैं। श्री नड्डा ने कहा कि मिशन के अंतर्गत एक मजबूत डिजिटल स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग तथा वाणिज्य विभाग के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। बैठक में अंतर विभागीय सहयोग बेहतर बनाने, संस्थागत क्षमता मजबूत करने तथा उत्पादकता और सेवा वितरण को विकसित करने पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने प्रशासनिक ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से एकीकृत, कुशल और भविष्य के लिए तैयार की गई पहलों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय अयोध्या राम मंदिर में कथित दान चोरी की निष्पक्ष जांच की मांग वाली कई याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा। इससे पहले अयोध्या की एक अदालत ने इस मामले में 8 आरोपियों में से 3 को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले महीने इस मामले में विशेष जांच समिति का गठन किया था। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी ने मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है। बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजलपुर विधानसभा सीटों पर मतदान 30 जुलाई को होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिन के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तथा सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाके, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 16 जुलाई तक भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का भी पूर्वानुमान जारी किया है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आज दिन भर आसमान में बादल छाए रहे और उमस भरा मौसम बना रहा। ईशानी यादव के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज राष्ट्रीय राजधानी के दिल्ली हाट में मेघालय अनानास महोत्सव का उद्घाटन किया। श्री सिंधिया ने कहा कि ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल के विजन पर आधारित है।
2: Fourth edition of the Pineapple Festival has been remarkable.
3: पाइनएप्पल फेस्टिवल का चौथा संस्करण बेहद सफल और ऐतिहासिक रहा है। आज यहाँ का अनानास दुनिया के कई देशों तक पहुँच चुका है। अब हमारा लक्ष्य प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित करना है ताकि अनानास से जुड़े उत्पादों में वैल्यू एडिशन बढ़ाया जा सके। इस मेले में भी ऐसे कई उत्पाद देखने को मिले हैं। इससे हमारे जैविक किसानों को अधिक लाभ मिलेगा और उनके उत्पाद भारत से बाहर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक और बेहतर तरीके से पहुँच सकेंगे।
2: ऑफ आर ऑर्गेनिक फार्मर्स टू बी एबल टू ग्रो बियॉन्ड द शोर्स ऑफ इंडिया टू फार रीचिंग इंटरनेशनल।
0: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
4: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 828 अंक चढ़कर 77,559 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 244 अंक की बढ़त के साथ 24,207 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा

0: बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में 6 पैसे मजबूत होकर 95.32 रुपए पर बंद हुआ।
1: नीति आयोग ने टाटा मोटर्स फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य आकांक्षी प्रखंडों में एकीकृत ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है। ये सहयोग ग्राम संस्थाओं को मजबूत करने, सरकारी योजनाओं तक पहुंच में सुधार करने, शिक्षा और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को उन्नत करने पर केंद्रित है। इसमें कृषि आजीविका, स्वास्थ्य और पोषण को बढ़ावा देना भी शामिल है। वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद सफलतापूर्वक संपन्न कर भारतीय दल आज नई दिल्ली वापस आ गया। वेनेजुएला में हाल में आए भूकंपों में मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान शुरू किया गया था। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की सहायता, समर्थन और एकजुटता के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया। आकाशवाणी समाचार के पूर्व निदेशक और भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी सेबेस्टियन रॉबर्ट का आज नई दिल्ली में निधन हो गया। वे 80 वर्ष के थे। उन्होंने देश विदेश में आकाशवाणी समाचार के लिए महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर किया। उन्होंने रक्षा और विदेश मामलों के क्षेत्र में एक कुशल संवाददाता के रूप में अपनी पहचान बनाई। महिला क्रिकेट में इंग्लैंड ने भारत के साथ लंदन के लॉर्ड्स मैदान में एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 6 विकेट पर 232 रन बना लिए थे। ये पहला मौका है जब लॉर्ड्स मैदान पर महिला टेस्ट मैच खेला जा रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में आज रात 12:30 बजे स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। इससे पहले आज फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ने पुरुष सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने सेमीफाइनल में ब्रिटेन के आर्थर फेरी को 7-6, 6-2, 6-4 से हराया। एक अन्य सेमीफाइनल में इटली के यानिक सिनर का मुकाबला सर्बिया की नोवाक जोकोविच से हो रहा है। कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला जत्था आज उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के लिपुलेक दर्रे से चीन में पहुंच गया। इस जत्थे में 52 सदस्य हैं। चीन में प्रवेश करने के बाद समूह आगामी दिनों में पवित्र कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की यात्रा से पहले निर्धारित शिविरों में विश्राम करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और भारतीय समुदाय ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात की। व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और रक्षा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा हुई। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुर्गन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। उत्तरी रेलवे के 680 किलोमीटर मार्ग पर सुरक्षा और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए कवच के कार्यान्वयन को स्वीकृति दी गई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। और विंबलडन टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi arrives in Auckland on final leg of his 3-nation tour, receives warm welcome from his New Zealand counterpart Christopher Luxon and Indian community. External Affairs Minister S. Jayashankar meets his Omani counterpart Badr bin Hamad Al Busaidi in Muscat, discusses issues of cooperation in trade, investments, connectivity, maritime, technology and defence. Ministers of State for Parliamentary Affairs Arjun Ram Meghwal and Dr. L. Murugan review preparations for upcoming monsoon session. Railway approves Kavach deployment on 680 route kilometres of Northern Railway to enhance safety and operational efficiency. In football, Spain to face Belgium in the second quarter-final of FIFA World Cup tonight. And in Wimbledon tennis, Alexander Zverev of Germany storms into the men's singles final, beating British wildcard Arthur Ferry. Prime Minister Narendra Modi received a warm and enthusiastic welcome upon his arrival in Auckland, marking the start of his historic two-day visit to New Zealand. This is the first by an Indian Prime Minister in nearly four decades. After arriving in Auckland today, Prime Minister Modi was received at the airport by New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. The Indian community gathered in large numbers to greet him. The atmosphere was filled with excitement as people waved the Indian tricolour and chanted Kia Ora Modi to welcome him. Mr. Modi witnessed a vibrant celebration of India's rich cultural heritage during the community welcome in Auckland this evening. In a series of social media posts, the Prime Minister said that the performances showcased the cultures of Punjab, Tamil Nadu, a fusion of Carnatic and Hindustani classical music, and a stirring rendition of Vande Mataram. Mr. Modi complimented the diaspora for keeping India's cultural heritage vibrant across generations and continents and for strengthening the enduring people-to-people bonds between India and New Zealand. The Prime Minister also expressed delight to witness a performance by the Nad Vocal Ensemble.

किशोर कुमार का गाया हुआ ये बुढ़ा मिल गया फिल्म का गीत था। गीत को लिखा मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत आर डी बर्मन का। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म अभिनेत्री का गीत। इस गीत को लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने आवाज दी है। एक बार फिर ये गीत मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ है और इसे संगीत से सवारा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

और लीजिए श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर का गाया अनामिका फिल्म का गीत, गीत मजरू सुल्तानपुरी का, संगीत आर डी बर्मन का।

लता मंगेशकर को आपने सुना। फिल्म का नाम था मंजिल। गीत योगेश ने लिखा था और संगीत आरडी बर्मन का था। गीत की फरमाइश आप सबकी। बक्सी से दयाराम जाटव, चैन सिंह आरोल, नानू राम कांसोटिया, नंद किशोर कांसोटिया और दीपक कांसोटिया। बेरड़ी से राजेश कुमार सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी ढोमने, चंचल, अर्जुन गवनेकर, धीरज सवासोरे। बेरड़ी से ही हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक, प्राची और तनु करमरकर। मोहाली से सन्नी, बब्बल मल्होत्रा और ओम प्रकाश मल्होत्रा। अनंत चिखले, ओम प्रकाश परिहार, अशोक सोनी, मुकेश पांचाल, रोनू छोटू, मोहन परिवार परिहार, पंकज राठौर, विनायक राठौर, महेंद्र शर्मा, मुकेश। आपका खत हमारे पास देवास से आया। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मितलेश और तारनी ठाकुर, सूरज, ज्योति, रियांश और गुड़िया ठाकुर। भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और ज्ञानवेंद्र कुमार वर्मा। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, अस्मा सालिया, शोएब खान, पोतरा मुस्तफा खान, राउफ भाई, शहीद भाई।

मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले का गाया हुआ हमजोली फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गीत आनंद बख्शी का लिखा हुआ था। गीत की फरमाइश आप सबने भेजी। राजपुर से घीसू दिलवारे, लक्ष्मी माधुरी, सोनाली भगवान, पुष्पा, नेहा, एकता, अस्मिता, सौरभ और कुणाल दिलवारे। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर।

राही महराज जहां आपका खत हमारे पास आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से आया। लकड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद साकिब पवार, मोइन छोटू पवार, ग्राम दीवाल से शंकरलाल गंगराड़े, वनीता गंगराड़े, छोटू, रोशनी, अजय और कृष्णा देवी गंगराड़े। सिंघाड़ तलाई खंडवा से राधेश्याम यादव, श्रीमती प्रभा यादव, भारती यादव, शालिनी यादव और कामेश यादव। रोडकेश्वर श्रोता संघ छत्रपति साहू नगर हिंगोली महाराष्ट्र से रामचंद्र इंगोले, सिद्धांत टिक्कू, रमाबाई, सुरेंद्र इंगोले, मयूरी, सुरभि, मंजुषा और गौतम इंगोले। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका और रॉबिन। और लेवा खेल मोहल्ला चांदूर बिस्वा से नारायण भाव खड़से, ललिता खड़से, परी खड़से, गणेश, कार्तिक भाव खड़से, स्वाति चौधरी और प्रयाग चौधरी।

मुकेश की आवाज में फिल्म सफर का गीत आपने सुना। गीत इंदिवर का लिखा हुआ था, संगीत कल्याण जी आनंद जी का। फरमाइश आप सबने भेजी। सुदामा नगर इंदौर से अनिल भंडारे, उषा भंडारे, समता चित्रा और निशा। कवर कॉलोनी बड़वा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति शिवानी और मीनू राज श्रीमाली।

औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश। गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस तपस्या और करिश्मा कामले। बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन से विनोद मुणत, नेहा जैन, दीपक, मयंक मुणत, चेतन नाहटा, दीक्षा कुश मुणत और दिलीप सिंह पवार। डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन।

किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म मिली का गीत आप सुन रहे थे। गीत योगेश का लिखा हुआ था और इस गीत का संगीत तैयार किया एसटी बर्मन ने। गीत की फरमाइश आप सबने भेजी। नावदाखेड़ी ज़िला देवास से प्रेम नारायण जाट, संजय जाट, पवन सिंह, माही सार्थक और आदित्य जाट। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार, हैप्पी राय। नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय। करनाल से सुधीर, नूतन और मीनाक्षी तिवारी। महाराष्ट्र बीड शहर से प्रकाश पगारिया।

पराग पगारिया, प्रदीप पगारिया और केशव पटेल। देवास से मुरारीलाल वर्मा, मनीष वर्मा, सुभाष गोड़िया, नवीन वर्मा, मीनू वर्मा। राजाराम नगर देवास से राजेश अग्रवाल, शांति महाजन, नागपाल फोटो वाले। मोहसिनपुरा देवास से जमील खान, रवि डामोर, बबीता डामोर और संदीप दुर्गा। जरूर वरुड़ महाराष्ट्र से बाबा साहब वाड़ोदे, मीनाक्षी चरपे, रजनी कनीरे और चंद्रप्रभा वाड़ोदे। महसूल सीतामणि बिहार से अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अकरम, बहू रूबीना वसीम, आरिज वसीम, नवासा अरहान बाबू, हमजा बाबू, मुजम्मिल बाबू, हुमेरा नाज, सुमेरा नाज, अबीहा नाज, शाहीन नाज, नूरी नाजिया, नूरी नाज, बच्चू शेख और चीना शेख। मुजफ्फरपुर से मोहम्मद फैजल शेख और नुजहत जहां नाज। समस्तीपुर से मोहम्मद शहनवाज परवेज, मुसर्रत जहां नाज। नांदखेड़ जिला वाशिम से अशोक चुमले, दिनेश चुमले, रुपेश चुमले, लीलाबाई चैताली और प्रीति चांदने। अंबेडकर नगर अकोला से प्रकाश खेड़कर, मीराताई खेड़कर, आरती संतोष, पूजा और समस्त खेड़कर परिवार।

लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर को आपने सुना। फिल्म थी प्यासा सावन। संतोष आनंद का लिखा हुआ गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। फरमाइश आप सबने भेजी, शिवपुरम कॉलोनी खंडवा से वीएस महोबिया, कमला महोबिया, विजय, कविता, संजय, नंदिनी, विशाल, विवेक, सोनू, मोनू, डॉली, देवराज महोबिया और भयू दादा। मोहाली से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक और प्रतीक मल्होत्रा। कालका से शुभचंद्र बजाज, राहिल बजाज और बिट्टा बजाज। अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल, रेखा देवी श्रीवास्तव। हिंगड़ी से जगदीश धाकड़ नायमा, श्रीमती रंजूबाई धाकड़, युवराज धाकड़ और शिवांगी धाकड़। संस्कृति नगर इंदौर से बबलू केशरी, छाया केशरी, हर्ष मिदाक्षी, सोमतीबाई केशरी। पोफली जिला यवतमाल से जयराम सिंगनकर, दिशांत कुमार सिंगनकर, वंदना धुले, अर्पिता और समस्त सिंगनकर परिवार। राजनगर मधुबनी से राजकुमार गुप्ता, विनीता गुप्ता, रविराज, गौरव कुमार, कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, मास्टर रुद्र गुप्ता, एम के गुप्ता। छपरा दालदरी बाजार से संजय गुप्ता, संजीत गुप्ता, सर्वजीत गुप्ता एवं सुधांशु गुप्ता। सीतामढ़ी महावीर स्थान से प्रभात गुप्ता, अरविंद गुप्ता, मंटू, निक्की। फुलवार शरीफ पटना से अविनाश चंद्र, ज्योति और जाह्नवी और पीहू। साथ में इचलकरंजी महाराष्ट्र से वसंत जी हजारे, प्रमोद हजारे, महेश, आदित्य,

और मिंताश हजारे और ग्राम मुडेला, जौनपुर से चंद्रा कुमारी, चांदनी कुमारी, आकाश, कन्हैयालाल, रीता देवी और परिवार के सदस्य।

इसे लता मंगेशकर और मुकेश ने आवाज़ दी थी। संतोष आनंद का लिखा हुआ गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। मालीपुरा बिजलपुर से इसे सुनना चाहा था मोहनलाल चौहान, ललिता चौहान, प्रियंका, पंकज, सोनू, नितिन, राहुल, गुंजन, मुस्कान, अदव्या, अंकित, सलोनी, लड्डू, कान्हा, ऋषि और हेमंत ने। मोहत ज़िला बुरहानपुर से मुशर्रफ खान तड़वी, जरीना तड़वी, मुबारक, परवेज, बिटिया रोजमीन, तैमूर और भैया तड़वी। बुलढाना महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकांक्षा और आकाश कुमार। चापाखेड़ा खाचरोद से प्रेमशंकर शर्मा, पूजा शर्मा, राधेश्याम, कुमकुम, मनोरमा, रामगोपाल शर्मा, लक्की, विवेक शर्मा और राजा प्रजापत। दिल्ली शहर मोरीगेट से कन्हैयालाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार। सोमनाथ जिला जालना से नामदेव भूतेकर, अभिषेक भूतेकर, कार्तिक, अश्विनी, वैष्णव जगदाले, हरसुल सावंगी। औरंगाबाद से वैभव गौरव लोखंडे, भावसिंहपुरा औरंगाबाद से मेघराज युवराज कोलते, रिधोरा देवी, रुद्र कोलकर, वालकुणी बदनापुर से। धर्मपुरी जिला धार से शेख फहीम मोहम्मद, मोहम्मद असलीम शेख, मुजफ्फर अयान, फैजान, सुमेरा, कशिश, साइमा, हसनैन और खुशी। शाजापुर से मनमोहन राजावत, राज मधु राजावत, राशि रक्षित, चित्रंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, ऋतिक, ऋचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत, ऋषभ और समस्त परिवार। राजापेट अमरावती से दिलीप, सुरेखा, सारंग, धनश्री और शुभम लकड़े। धानोरा विटाली से भगवान पाटिल, मंगेश पाटिल, सचिन, प्रेम, श्रिया, श्रुति। जलगांव से उषा काटे और संतोष काटे।

लता मंगेशकर के स्वर में प्रेम पर्वत फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गीत लिखा जानिसार अख्तर ने और संगीत जयदेव का था। कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवाएंगे दिल एक मंदिर का गीत। इस गीत को मोहम्मद रफ़ी ने गाया है, हसरत जयपुरी का लिखा हुआ गीत है और शंकर जयकिशन का संगीत। इन दोनों ही गीतों की मिली जुली फरमाइश हमें मिली है राजेंद्र नगर गंज बासोदा विदिशा से भागचंद साहू, राज, करिश्मा, प्रेमबाई साहू, अजय साहू, सनावत से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता और मुस्कान मालाकार, सनावत से ही कालू सिंह बड़ोले, सीताराम बड़ोले, हीरालाल बड़ोले, तेर सिंह डावर, साहिल हरिओम, विशाल, सुमन, रमा, कंचन और भावना, आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मैंडी, सौरभ, शाइना शर्मा और निबान शर्मा, सनावत से मोहम्मद सादिक, मोहम्मद शाकिर, मुश्ताक अहमद, बेबी मंतासा, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री, पालदाना का इंदौर से हसीना बी मंसूरी, अमीना बी और मोहम्मद रफ़ी मंसूरी, मंदसौर से भगत राम चौहान, कृष्णपाल, मयंक और प्रीति चौहान, सहारनपुर से सुरेश नारंग, आशु नारंग, पथिक और सोनाली, और हुकुमचंद कटारिया, पिंटू सेन, हरिनिवास खेड़े, दीपक सचिन कटारिया।

अभी आप मनभावन कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। शास्त्रीय संगीत में लीजिए अब सुनिए कल्याणी कानड़े का राग बागेश्री में ख्याल गायन। विलंबित रचना एक ताल और द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है। वॉयलिन पर संगत कर रहे हैं कमल कामले और तबले पर मनीष खरगोनकर।

शास्त्रीय संगीत में अभी आपने सुना कल्याणी कानड़े का राग बागीश्री में ख्याल गायन। वायलिन पर संगत कर रहे थे कमल कामले, तबले पर मनीष खरगोनकर। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत समारोह में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने और भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच अटूट संबंधों को मजबूत करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि संगीत में लोगों को एकजुट करने की अनूठी क्षमता होती है और आज की प्रस्तुति ने भारत न्यूजीलैंड की मित्रता की गर्मजोशी और गहराई को खूबसूरती से प्रतिबिंबित किया है। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में यह पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत के राजदूत मुआन पुई साईवेई ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने का बड़ा अवसर है।
1: फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी।
2: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी

0: और नवाचार को आगे बढ़ाएं तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
1: एंड देन वी कैन सेल टू फर्दर मार्केट्स एज वेल।
2: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। डॉ जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा एआई क्षेत्रों पर केंद्रित रही। डॉ जयशंकर ने कहा कि चर्चा से दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी के विश्वास और मजबूती का पता चलता है। ओमान के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और ओमान के बीच सदियों पुराने समुद्री संबंध दोनों देशों के लोगों को सदियों से जोड़ते रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता का सबसे बड़ा संरक्षक बना रहेगा। उन्होंने आज विशाखापत्तनम में नौ सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि बदलते वैश्विक सुरक्षा माहौल में भारतीय नौसेना देश के समुद्री हितों की प्रभावी ढंग से रक्षा कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत के 90% से अधिक व्यापार का परिवहन समुद्री मार्गों से होता है, इसलिए समुद्री सुरक्षा देश की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। रक्षा मंत्री ने कहा कि स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट महेंद्र गिरी का नौसेना में शामिल होना रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने आज संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। कोयला मंत्रालय ने आज वाणिज्य कोयला ब्लॉकों की नीलामी के 15वें चरण और 13वें और 14वें चरण के दूसरे प्रयास की बोलियां बोली। मंत्रालय के अनुसार नीलामी के लिए पेश किए गए 23 कोयला ब्लॉकों में से 8 के लिए कुल 21 बोलियां प्राप्त हुई हैं। मंत्रालय ने कहा कि इस नीलामी में 16 कंपनियों ने भाग लिया जो देश के वाणिज्य कोयला खनन में उद्योग जगत की मजबूती भागीदारी को दर्शाता है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात 12:30 बजे स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। इससे पहले आज फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani. The news read by Abhineet Shukla. Prime Minister Narendra Modi received a warm and enthusiastic welcome upon his arrival in Auckland, marking the start of his historic two-day visit to New Zealand. This is the first by an Indian Prime Minister in nearly 4 decades. After arriving in Auckland today, Prime Minister Modi was received at the airport by New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. The Indian community gathered in large numbers to greet him. The atmosphere was filled with excitement as people waved the Indian tricolour and chanted Kia ora Modi to welcome him. Mr. Modi witnessed a vibrant celebration of India's rich cultural heritage during the community welcome in Auckland this evening. During his visit, Prime Minister Narendra Modi and his New Zealand counterpart are expected to discuss ways to further strengthen cooperation in trade, investment, education, technology and people-to-people ties, reflecting the growing partnership between the two countries. Indian High Commissioner to New Zealand, Muan Poi Saioi, expressed hope that the visit will provide fresh momentum to bilateral ties. She also pointed to the India-New Zealand Free Trade Agreement signed in April this year, saying it would further expand cooperation in trade and commerce, maritime security, people-to-people ties, culture, tourism and counter-terrorism.
1: We will be building on the things that we've already worked on. So free trade agreement is signed, but it has to be ratified and we have to push it towards the unlocking the full potential of the free trade agreement. So there are some things about trade and commerce. There will be some things about tourism, culture, sports.